नमस्कार। FM 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आज रविवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 24वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 14 जून सन 2026। श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के ठीक 8:55 होने को है। हमारी आज की ये प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। अब एक नजर आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा में, कार्यक्रम विवरण में। अब से कुछ ही देर बाद यानी कि सुबह के 9 बजे आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। तत्पश्चात दिन के 1 बजे आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार और शाम को 6:30 पर होंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। भक्ति रचना रामचरितमानस गान का समय रहेगा सुबह के 9:10 पर और दैनिक भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुन सकेंगे सुबह 9:20 पर। जल की गुड़ तेल का समय रहेगा 9:40 पर। फिल्म संगीत के अंतर्गत गाने पुराने जमाने के आप सुनेंगे 10 बजे। गाने नए तराने नए फिल्म संगीत के अंतर्गत आप सुनेंगे सुबह के 10:30 पर। फिल्म संगीत में गाने नए तराने नए विविध भारती के कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन के 11 बजे से 1 बजे तक। तत्पश्चात 1:05 से शाम के 4:30 तक सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। खेती बाड़ी का समय रहेगा शाम के 4:30 पर और युवाणी कार्यक्रम आप सुन सकेंगे शाम के 5 बजे। बालवाड़ी कार्यक्रम का समय रहेगा शाम के 5:30 पर। हिंदी में समाचार आप सुन लेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से शाम के 6 बजे और रात्रि को 8:45 पर। मार्टी के स्वरीय कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम के 6:20 पर। फिल्म संगीत आप सुन सकेंगे शाम के 6:05 पर। राजस्थानी में प्रादेशिक समाचारों का समय रहेगा आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से शाम के 6:45 पर और शाम के 7 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत। केंद्र सरकार के 12 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में समाचार सेवा एकांश द्वारा विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला में आप सुनेंगे सशक्त भारत विषय पर एक कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। और आईसीसी विमेन T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत एडजस वेस्टर्न स्टेडियम बर्मिंघम में भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जा रहे क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल आप सुनेंगे शाम के 7:45 पर। श्रोताओं, ये तो थी कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। ये आकाशवाणी

0: नागौर का चिरमिचनल है। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा 2047 तक भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य गांवों के विकास से ही पूरा होगा। राज्य में बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट PTET 2026 आज और प्रदेश में मौसम के बदलाव से ज्यादातर स्थानों पर दिन और रात के तापमान में गिरावट, आज 5 संभागों में आंधी और बारिश की संभावना। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो देशों फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के शहर नीस पहुंच गए हैं। G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा श्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी भारतीय शिक्षण संस्थानों को वैश्विक निवेशकों और बाजार से जोड़ने वाले शिक्षा मंत्रालय के कार्यक्रम भारत इनोवेट्स का संयुक्त रूप से उद्घाटन करेंगे। नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। भारतीय समुदाय के लोगों ने भी श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीस में रह रहे प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत से मीलों दूर होने के बावजूद स्वदेश के साथ प्रवासियों के संबंध मजबूत बने हुए हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि 2047 तक भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य गांवों के विकास से ही पूरा होगा। उन्होंने कहा कि टिकाऊ कृषि, नवाचार और अनुसंधान से ही भारत विकसित बनेगा। श्री बिरला ने ये बात कल नई दिल्ली में कृषि विषय पर आयोजित एक सम्मेलन में कही। ये सम्मेलन 2 दिन तक चलेगा। श्री बिरला ने कहा कि कृषि के पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक तकनीक से जोड़कर भारत दुनिया भर में कृषि क्षेत्र में अग्रणी बन सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि कृषि देश की संस्कृति, सभ्यता और जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा है और विकसित भारत में भी इसका महत्व बना रहेगा। श्री बिरला ने शिक्षकों, वैज्ञानिकों, अनुसंधानकर्ताओं, नीति निर्माताओं और किसानों से आत्मनिर्भर कृषि मॉडल तैयार करने के लिए मिलकर काम करने की अपील भी की। असम के जोरहाट में वायुसेना विमान दुर्घटना में जान गंवाने वाले 5 जवानों में राजस्थान के अग्निवीर खेमाराम कुमावत भी शामिल हैं। उनका आज नागौर के पैतृक गांव पांचोता में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। खेमाराम साल 2022 में अग्निवीर के रूप में भारतीय वायुसेना में भर्ती हुए थे और देश सेवा का सपना पूरा कर रहे थे। उनके निधन से पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है। आज विश्व रक्तदाता दिवस है। इस वर्ष विश्व रक्तदाता दिवस की थीम मानवता की एक बूंद रक्तदान करें, जीवन बचाएं रखी गई है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में सामाजिक संगठनों की ओर से स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। सवाई माधोपुर में भी शिविर लगाया गया है जिसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आमजन को जागरूक कर रक्तदान के महत्व की जानकारी दी जा रही है। पाली CMHO ने बताया कि राजकीय बांगड़ चिकित्सालय में रक्तदान शिविर लगाया गया है जिसमें रक्तदाताओं के ब्लड ग्रुप की निशुल्क जांच भी की जा रही है। करौली से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगाए गए हैं जिनमें रक्तदाता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं।
2: हिंडौन उपखंड रक्तदान की मजबूत परंपरा के लिए पहचान बना चुका है। जहां प्रतिवर्ष 1000 यूनिट से अधिक रक्त का संग्रह किया जाता है, यहां से एकत्रित रक्त का उपयोग जयपुर, करौली सहित विभिन्न ब्लड बैंकों के माध्यम से जरूरतमंद मरीजों के उपचार में किया जाता है। सामाजिक संगठनों, युवाओं और स्वयंसेवी रक्तदाताओं की सक्रिय भागीदारी से जिले में रक्तदान के प्रति जागरूकता लगातार बढ़ी है। विश्व रक्तदाता दिवस पर जिला मुख्यालय स्थित जिला चिकित्सालय में रक्तदान शिविर आयोजित किया जा रहा है जहां अधिकाधिक लोगों से रक्तदान कर जीवन बचाने के इस महादान में सहभागी बनने की अपील की गई है। बांके बिहारी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली।
1: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में बीएड में प्रवेश के लिए प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट पीटीईटी 2026 आज आयोजित किया जा रहा है। सुबह 9 बजे से शुरू हुई ये परीक्षा दोपहर 12 बजे तक चलेगी। इस बार परीक्षा की नोडल एजेंसी वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय है। परीक्षा के मुख्य समन्वयक और वीएमओयू के कुलगुरु प्रोफेसर बीएल वर्मा ने बताया कि 1,26,600 परीक्षार्थियों ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था। उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्र पर बायोमेट्रिक अटेंडेंस के बाद ही एंट्री दी जा रही है। परीक्षा निगरानी के लिए जयपुर के क्षेत्रीय केंद्र में विशेष कमांड सेंटर बनाया गया है। परीक्षा के दौरान संवेदनशील केंद्रों की निगरानी एआई आधारित सॉफ्टवेयर से की जा रही है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग की ओर से 16 जून से 31 जुलाई तक स्टॉप डायरिया कैंपेन चलाया जाएगा। 5 वर्ष तक के बच्चों को दस्त रोग से सुरक्षित रखने और बाल मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से ये अभियान आयोजित किया जाएगा। हनुमानगढ़ के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि अस्पतालों में विशेष व्यवस्था की गई है और वहाँ ORS कॉर्नर बनाए गए हैं,
3: जिसमें इस बार की हमारी टीम है डायरिया की रोकथाम, सफाई और ORS से रखें अपना ध्यान। इस कैंपेन के दौरान हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी आशा ANM घर घर जाकर जागरूकता भी करेंगे, हाथ धोने की तकनीक, सफाई किस तरीके से रखें, और साथ में हमारा ORS और जिंक वितरित भी किया जाएगा। हमारे सभी संस्थानों पर ORS कॉर्नर बनाए जाएंगे। इसका मूल उद्देश्य है कि जो 5 साल तक के बच्चे हैं, जो डायरिया से जिनको कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, उनकी रोकथाम और डायरिया के लिए जागरूकता।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ईरान, अमेरिका और इजराइल संघर्ष के कारण दुनिया भर में ईंधन की कीमतों में इजाफा हुआ है। वे कल पंजाब के लुधियाना में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद केंद्र सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि देशवासियों पर कीमतों में बढ़ोतरी का अधिक प्रभाव नहीं पड़े।
4: प्रधानमंत्री जी ये नहीं चाहते थे कि बढ़ते दामों में हमारे आम नागरिक जो है, हमारे बहन भाई, उन पे बोझ बढ़े। और अभी हमने जब पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ाया तो कितना बढ़ा टोटल? पहले 3 रुपए कम हुआ था, उसको मैं एक तरफ छोड़ता हूँ, 7 रुपए और 60 पैसे। और हमने एक एनालिसिस किया विश्व भर में, जापान के अलावा भारत एक ऐसा देश है जहाँ सबसे कम प्राइस इंक्रीज हुई है पेट्रोल और डीजल की।
1: और अब मौसम। प्रदेश में मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी है, साथ ही प्री मानसून गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कल राज्य के कई जिलों में आंधी और बारिश दर्ज की गई। बारिश के कारण दिन और रात के तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग के अनुसार ज्यादातर स्थानों पर अधिकतम तापमान 35 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड हुआ है। दिन के पारे में सबसे अधिक 9.2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट पिलानी में दर्ज की गई। 40.8 डिग्री सेल्सियस के साथ जैसलमेर सबसे गर्म स्थान रहा। वहीं रात का पारा भी 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। सीकर में सबसे ठंडी रात दर्ज की गई, जहां पारा 7.7 डिग्री सेल्सियस लुढ़क कर 19.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। मौसम विभाग ने आज बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा और जोधपुर संभाग में आंधी और बारिश की संभावना व्यक्त की है। यहां 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और गरज के साथ तेज बरसात हो सकती है। ICC महिला T20 विश्व कप में आज भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान को 16 में से 13 मुकाबलों में हरा चुका है। टूर्नामेंट के मैच इंग्लैंड और वेल्स में खेले जा रहे हैं। फाइनल मैच अगले महीने की 5 तारीख को लॉर्ड्स में होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा 2047 तक भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य गांवों के विकास से ही पूरा होगा। राज्य में बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट PTET 2026 आज। और प्रदेश में मौसम के बदलाव से ज्यादातर स्थानों पर दिन और रात के तापमान में गिरावट, आज 5 संभागों में आंधी और बारिश की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

बहुओं समेत चारों पुत्रों को देखकर माताएं परम आनंद मग्न हैं। वेद सम्मत विधियों तथा कुल की रीति के अनुसार वे अर्घ्य पावड़े देती नव विवाहित जोड़ियों को परिछन के लिए महल में ले चली। माताओं द्वारा लोक रीतियां संपन्न हुई। सभी भाइयों ने देवताओं तथा पितरों का पूजन किया। देवगण यद्यपि अदृश्य हैं, फिर भी मानो अंतरिक्ष से आशीर्वाद दे रहे हैं और आनंदित माताएं उन आशीर्वचनों से अपने अपने आंचल भर ले रही हैं। जब गुरु तथा ब्राह्मणों समेत राजा दशरथ महल में पधारे तो रानियों ने आदर सहित सबके चरण धोए, उन्हें स्नान कराया गया और भली भांति पूजे जाकर उन्होंने भोजन किया। राजा ने गाधी पुत्र विश्वामित्र की विशेष रूप से पूजा करके अपने को धन्य माना।

संवेद स्वर में अभी आप सुन रहे थे भक्ति रचना रामचरितमानस गान। श्रोताओं, FM 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। लीजिए सुनिए दैनिक भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। ये है चित्रा सिंह के स्वर में भक्ति संगीत की पहली प्रस्तुति।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 0152-240-168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युववाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने।

आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से सुनिए फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश प्रत्येक गुरुवार और प्रत्येक शनिवार को रात 8 बजे। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक गुरुवार को दिन में 12 बजे से दिन के 1 बजे तक। हमारे फोन नंबर्स हैं 015-82-240-168। वैसे तो ये प्रोग्राम सभी श्रोताओं के लिए है, लेकिन हम स्थानीय नागौर जिले के श्रोताओं को प्राथमिकता देते हैं। तो हो जाइए तैयार अपनी फरमाइश हमें भेजने के लिए और कीजिए फोन हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है हेलो फरमाइश।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। श्रोताओं, आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विविधा में जल की गुड़ तेल।

0: गुड़ ले लो
1: शुद्ध गाने का ताजा तेल।
0: अरे वे तू चुपचाप रह।
1: मैं क्यों चुपचाप रहूं, मेरी भी दुकान है।
0: अरे काहे की दुकान है, कोई ग्राहक तो आ नहीं रहा।
1: तुम मैं क्या करूं, तेल वाला तेल तेल।
0: इस आदमी ने मेरे सामने दुकान खोली है, तब से मेरे ग्राहक आने बंद हो गए।
1: अरे मैंने क्या दुकान खोली है, मेरी तो पहले से दुकान थी। दुकान तो तूने खोली है बाद में।
0: अरे तो मुझे क्या पता था कि यहाँ दुकान खोलूंगा तो ग्राहक नहीं आएंगे।
1: मुझे भी क्या पता था जब से तू दुकान खोलेगा तो ग्राहक ही नहीं आएंगे। तेल वाला तेल तेल तेल तेल
0: गुड़ वाला गुड़।
2: वो ग्राहक आ रहा, देख
0: आ
2: रहा ग्राहक है ना।
0: अरे आओ आओ भाई साहब। नमस्कार। गुड़ ले जाओ भाई साहब, मीठा गुड़ गुड़ गुड़ ले जाओ।
3: मैं तो पीपल आता हूँ, साल भर चलता है।
1: भाई साहब तेल ले लो, शुद्ध घाणी का ताजा तेल।
3: मैं भैया मैं तो बोरी ले आता हूँ, साल भर चलता है।
1: अरे यार ये मेरे तेल की बोरी कैसे लाता है
0: यार, जैसे गुड़ का पीपल आता है।
1: अजीब अजीब लोग हैं, अब क्या करें। अरे तेल ले लो
0: यार।
1: क्या चुप रहा,
0: कोई नहीं आ रहा, क्या करें, टाइम पास कैसे होगा।
4: जय शिव शंकर।
0: अरे पंडित जी आ गए। पंडित जी
4: जय जय जय शिव शंकर।
0: पंडित जी राम राम।
4: जीते रहो भाई, जीते रहो।
0: पंडित जी गुड़ ले जाओ, गुड़ बहुत मीठा गुड़ है।
4: ला दे दे सर।
0: लो पंडित जी लो।
4: वाह बहुत मीठा है, वाह जय जय शंकर जय शिव शंकर।
1: पंडित जी महाराज तेल ले लो ना, शुद्ध घाणी का ताजा तेल।
4: शुद्ध घाणी का है क्या?
1: शुद्ध घाणी का
4: हजरा दिखाए एक दफे।
1: ये लो
4: तुम दे दे। ला भाई ला। अरे वाह जय शनि देवता, जय
1: शनि देवता।
0: अरे क्या हो रहा है,
1: अरे क्या नाटक है, कोई आता है तो पैसे नहीं देता और वैसे कोई आता ही नहीं है।
0: क्या करें यार, एक काम करते हैं यार। एक काम करना, अपना शेर शायरी करते हैं।
1: शेर शायरी?
0: हाँ।
1: इससे क्या ग्राहकी होगी क्या?
0: अरे क्या पता हो जाए यार,
1: शेर शायरी से ग्राहकी
0: हो जाएगी।
1: तो मेरे को बहुत अच्छे शेर आते हैं।
0: तेरे को आते हैं?
1: हाँ।
4: सुना गालिब
0: है ना, मिर्जा गालिब के?
1: हाँ।
0: सुना आया।
1: हाँ। बहुत जोरदार शेर है, देख
0: स्टार्ट करता हूँ मैं।
1: हाँ सुना। आज की रात,
0: हाँ
1: आज की रात आसमान में तारे कुछ ऐसे चमक रहे हैं।
0: आज की रात आसमान में तारे कुछ ऐसे चमक रहे हैं।
1: अरे ऐसे नहीं यार, बीच में मत बोल। आज की रात आसमान में तारे कुछ ऐसे चमक रहे हैं।
0: कैसे चमक रहे हैं?
1: जैसे कल चमक रहे थे। है ना, देख जोरदार।
0: बहुत बढ़िया है ना। ऐसा शेर तो मेरे को भी आते हैं।
1: आते क्या?
0: हाँ
1: सुना था।
0: सुनाऊं? सुन देख।
1: हाँ।
0: तन्हाई को चीरती हुई दूर से एक आवाज आई।
1: तन्हाई को चीरती हुई दूर से एक आवाज आई।
0: तन्हाई को चीरती हुई दूर से एक आवाज आई।
1: क्या?
0: केले ले लो, केले ले लो, केले ले लो।
1: अरे केले बेच रहा है ठेले वाला है, कहीं आवाज आई दूर से।
0: तन्हाई को चीर दी ना आवाज ने।
1: अरे क्या आवाज चीर दी, इससे बड़ा शेर मेरे पास है।
0: ओ तेरे पास शेर है।
1: सुनाओ। अरे देख वो ग्राहक आ रहा।
0: अरे कौन था
1: वो ग्राहक आ रहा?
0: भाई साहब राम राम।
5: राम राम।
0: गुड ले लो भाई साहब, गुड
5: गुड ले लो। गुड
0: हां,
5: कहां तक पढ़ा लिखा है?
0: मैं तो आठवीं फेल हूँ भाई साहब।
5: आठवीं फेल हूँ तभी गुड़ बेच रहा है। गुड़ी
1: भाई साहब, भाई साहब तेल ले लो।
5: तेल ले लो, ये देखो उधर गुड़ ले लो, इधर तेल ले लो। तू कहाँ तक पढ़ा लिखा है?
1: मैं आठवीं में तीन बार फेल।
5: आठवीं में तीन बार फेल तभी तेल बेच रहा है, तेली।
0: अरे भाई साहब आप कहाँ तक पढ़ लिए जो बताना जरा।
5: मैं तो बीए पास हूँ।
0: अच्छा बीए पास हूँ, क्या करते हो भाई साहब?
5: मेरी दुकान है, खुद की शॉप है, स्टेशन के सामने है।
0: काहे की है?
5: भीख मांगने की।
0: जी आदमी हट।
1: अरे क्या है जी, अरे इनसे लोग भाग आ रहे हैं यार।
0: यार तो टाइम ही पास नहीं हो रहा यार,
1: तो क्या करें अब
0: यार। ऐसा करना, एक शेर और सुना यार।
1: एक शेर और सुनाओ। मैं सुनाता हूँ है ना।
0: हाँ,
1: मैंने तुझे प्यार किया।
0: वाह
1: ध्यान से सुनना।
0: हाँ सुन रहा हूँ।
1: मैंने तुझे प्यार किया, तेरे बाप ने मुझे पीटा।
0: ओहो, मैंने तुझे प्यार किया और तेरे बाप ने मुझे पीटा।
1: हाँ मैंने तुझे प्यार किया, तेरे बाप ने मुझे पीटा।
0: वाह।
1: और साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू टेन थीटा।
0: वाह वाह वाह।
1: और तन की शक्ति मन की शक्ति।
0: तेरा गुड़ मीठा,
1: तेरा गुड़ मीठा, मीठा।
0: यार एक शेर और सुनाता
1: हूँ। सुना सुना।
0: मेरे को अभी भी याद है।
1: हाँ सुना।
0: बहुत बढ़िया शेर है।
1: सुना।
0: सुन कि चश्मा लगाता हूँ।
1: हाँ
0: चश्मा लगाता हूँ तो कोई लड़की देखती नहीं।
1: वाह वाह।
0: चश्मा लगाता हूँ तो कोई लड़की देखती नहीं।
1: हाँ।
0: और चश्मा हटाता हूँ तो दिखती नहीं।
1: तेरे को चश्मा लगाता है तब भी नहीं दिखती, लगाता है तब भी नहीं दिखती।
0: वो तो ग्राहक आया, ग्राहक आया, ग्राहक आ गया, ग्राहक आ गया। अब तो मेरा गुड़ मिटेगा ही, बिकेगा भाई बिकेगा। भाई साहब गुड़ लोगे क्या? गुड़ गुड़ ले रहा है। गुड़
4: गुड़।
6: क्यों ले लूं भाई तेरा गुड़?
0: अरे ले लो भाई साहब, गुड़ ले लो।
6: जा जा पढ़ाई कर, पढ़ाई
0: पढ़ाई। भाई साहब तेल तो ले लो।
6: तेल? हाँ। लो तेल ले लो। अरे भाई क्यों ले लूं तेरा तेल?
0: तो क्या,
6: अरे जाकर अपनी पढ़ाई कर, पढ़ाई
0: पढ़ाई कर, पढ़ाई कर। लगता है इसका बेटा फेल हो गया होगा, पढ़ाई पढ़ाई कर रहा है।
6: अजीब आदमी है यार। एक शेर और सुनाऊं मैं?
0: अरे सुना यार,
6: बहुत जोरदार
0: बढ़िया शेर
6: है ना, सुनाऊं?
0: हाँ सुना।
1: मैं तेरा चांद तो तू मेरी चकोरी।
0: वाह वाह।
1: मैं तेरा चांद तो तू मेरी चकोरी।
0: मैं तेरा चांद और तू मेरी चकोरी।
1: हाँ, और मैं तेरा समोसा तो तू मेरी
0: कचोरी। अरे वो हमारा पतला सा ग्राहक, ये तो गुड़ जरूर खाएगा, गुड़ खा के मोटा हो गए। आजा आजा आजा आजा आजा। अबे आना है? हाँ आ रहा ग्राहक, आ रहा। वो आ रहा तो लेगा ही गुड़। आओ भाई साहब, आओ आजा आजा। क्या चाहिए भाई साहब?
7: नमक दे दो। नमक?
0: नमक?
7: हाँ नमक।
0: नमक तो नहीं है भाई साहब हमारे पास, हमारे तो गुड़ की दुकान है। गुड़ ले जाओ, मीठा गुड़।
7: सब्जी के अंदर गुड़ नहीं डलता है? नहीं तो लपटा बन जाता है वो।
0: अच्छा
7: नमक ही डलता है? नमक चाहिए मुझे
0: तो। नमक हमारे यहाँ नहीं मिलता, गुड़ की दुकान है
7: तो मैं क्या करूँ? मेरे को तो नमक चाहिए ना।
0: अरे तो नमक नहीं है हमारे पास।
7: और तो आपने तो बुलाया, आवाज देके बैठा, इधर आओ इधर आओ।
0: अरे तो हम तो गुड़ बेचते हैं यार, गुड़ के लिए बुलाया।
7: तो गुड़ ही बेचते हो?
0: हाँ।
7: नमक नहीं बेचते?
0: अरे नहीं बेचते यार।
7: अच्छा एक काम करो फिर।
0: हाँ
7: साबुन दे दो। साबुन?
0: साबुन नहीं है यार, खाली गुड़ है मेरी दुकान में। गुड़ गुड़ गुड़।
7: साबुन भी नहीं है?
0: अरे नहीं है यार।
7: चलो दो किलो आटा दो।
0: फिर से कह दिया ना, नहीं है कुछ भी, खाली घोड़ा मेरे पास।
7: एक काम करो आप।
0: क्या है?
7: ताला लगा दो दुकान पे।
0: हाँ क्यों?
7: नमक नहीं, आटा नहीं है, बेसन नहीं है।
0: क्या आदमी है?
7: यहाँ पे कोई है क्या?
0: हाँ मैं हूँ ना। आओ भाई साहब आओ।
7: वो नमक दे दो भाई साहब।
0: नमक? अजी भाई साहब मेरी दुकान में तेल मिलता है।
7: तेल नहीं मिलता है?
0: हाँ तेल मिलता है।
7: कौन सा तेल देते हो आप?
0: वो शुद्ध घाणी का ताजा तेल।
7: ये घाणी क्या होती है?
0: वो होती है ना लकड़ी की, जिसमें कोलू घूमता है, तेल निकलता है फिर।
7: अच्छा तेल निकलता है? हाँ, नमक नहीं आता?
0: नमक नहीं निकलता भाई साहब, तेल ही निकलता है।
7: पर मेरे को तो भाई साहब नमक चाहिए था ना।
0: मेरी दुकान में नहीं है भाई साहब।
7: अच्छा नमक नहीं है तो साबुन दे दो।
0: अरे साबुन नहीं है यार, तेल है दुकान में सिर्फ। यानी लिख रखा है तेल ही।
7: अच्छा अच्छा। हाँ। नहीं मैं वो तो तेल से थोड़ी नहाऊंगा, मतलब साबुन से नहाता हूँ।
0: तो साबुन से नहाता है तो तेल मिलता है ना दुकान में, साबुन की दुकान में जा भैया यार।
7: अच्छा समझ गया।
0: हाँ।
7: साबुन नहीं है?
0: हाँ, नहीं।
7: लाओ फिर दो किलो आटा दे दो।
0: क्या दे दूँ?
7: आटा दे दो।
0: आटा दूँ?
7: हाँ
0: ये ले आटा।
7: कितने पैसे हुए?
0: अजीब अजीब लोग बाग आते हैं।
8: वही तो यार, परेशान कर दिया यार।
0: अब क्या करें यार?
8: कह रहे हैं गुड़ की दुकान है, नमक दे दो आटा दो। क्या करें यार, ग्राहक करनी पड़ेगी, इसमें तो बोनी भी नहीं हुई।
0: अरे लेकिन अब क्या करें?
8: और यार एक आइडिया है।
0: आइडिया?
8: हाँ।
0: क्या?
8: एक काम करते हैं।
0: हाँ
8: है ना, देख तू ऐसा कर।
0: हाँ।
8: तू मेरे पास है ना गुड़ खरीदने आ, उसके बाद मैं तेरे पास तेल खरीदने आऊंगा, कम से कम बोनी तो होगी यार।
0: मैं तेरे पास गुड़ खरीदने?
8: हाँ तू मेरे पास गुड़ खरीदने आ,
0: और फिर तू मेरे पास तेल खरीदने?
8: हाँ मैं तेरे पास तेल खरीदने आऊंगा।
0: हाँ यार ये आइडिया ठीक है यार,
8: बिल्कुल ठीक है ना।
0: आता हूँ ना, देख
8: आजा
0: मैं आता हूँ।
8: हाँ आजा।
0: आ जाओ
8: आ जाओ
0: आ जाओ
8: आ जाओ
0: आ जाओ
8: चुप आजा।
0: भाई साहब।
8: हाँ
0: एक लीटर गुड़ दे दो।
8: हैं? अबे गुड़ किलो में आता है, लीटर में नहीं आता
0: है?
8: लीटर में नहीं आता गुड़।
0: अच्छा किलो में आता है?
8: हाँ किलो में आता है। यूं बोल एक किलो गुड़ दे दो।
0: एक किलो गुड़ दे दो।
8: हाँ
0: मैं दोबारा आता हूँ।
8: हाँ दोबारा
0: दोबारा आ रहा हूँ, है ना।
8: हाँ
0: आ जाओ
8: आ जाओ। अबे आ जा
0: भाई साहब।
8: हाँ
0: एक किलो गुड़ दे दो।
8: हाँ।
0: बोतल में।
8: हाँ अबे तेरे से कितनी बार गया, गुड़ बोतल में आएगा क्या?
0: तो फिर काय में
8: गुड़ ठोस होता है यार, गुड़ थैली में देते हैं। तू यूं बोल एक किलो गुड़ दे दो केवल, बस बोतल बोतल मत बोल।
0: मेरे को नहीं आता है कुछ
8: भी यार। तू अजीब आदमी, तू देख मेरी दुकान में बैठ, मैं तेरे को बताता हूँ कि गुड़ कैसे मांगते हैं।
0: हाँ मैं तेरी दुकान में।
8: हाँ तू मेरी दुकान में।
0: हाँ तू आ,
8: है ना। मैं आऊँ?
0: तू आ
8: रहा हूँ मैं।
0: हाँ आ जा
8: ना।
0: हाँ
8: आ जाओ
0: आ जाओ
8: आ जाओ।
0: हाँ
8: भाई साहब।
0: हाँ
8: एक किलो गुड़ देना।
0: बोतल लाया है?
8: हाँ?

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विविधा में जल की गुड़तेल। श्रोताओं, आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है, लीजिए सुनिए चंद गजलें। ये है हरिहरन के सर में पहली पेशकश, उनसे जब जब मुलाकातें होती है।

अभी आप सुन रहे थे हरिहरन और गुलाम मलिक के स्वर में चंद गजलें। श्रोताओं, आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है, सुबह के 10 बजे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत में गाने पुराने जमाने के। ये है फिल्म संगीत की पहली पेशकश आशा भोंसले के स्वर में फिल्म मेरे सनम से। मजरू सुल्तानपुरी के बोलों को संगीतबद्ध किया है ओपी नय्यर ने।

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वरों में फिल्म देश परदेश का गीत। अमित खन्ना के बोलों को संगीतबद्ध किया है राजेश रोशन ने।

प्रत्येक सोमवार को रात्रि 8 बजे सुनिए सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम दिल से। इस कार्यक्रम में अपनी फरमाइश भेजने के लिए आपको लिखना है अपने पसंदीदा गीत के बोल, फिल्म का नाम, अपना नाम और अपने शहर या गांव का नाम, और भेज देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर 9649004762 पर। शाम 5 बजे तक प्राप्त आपकी फरमाइशों का प्रसारण किया जाएगा उसी रात 8 बजे आपके अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है दिल से।

लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार के मिले जुले स्वरों में फिल्म दूसरा आदमी का नगमा। मजरू सुल्तानपुरी के बोलों को संगीतबद्ध किया है राजेश रोशन ने।

0: सहायता टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: लीजिए सुनिए किशोर कुमार के स्वर में फिल्म दोस्त का नगमा।

लीजिए सुनिए मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार को फिल्म दोस्ताना में। आनंद बख्शी के बोलों को संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

FM बैंड 103.7 MHz पर श्रोताओं, आप सुन रहे हैं गाने पुराने जमाने के फिल्म संगीत में। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत की अगली और आखिरी पेशकश में लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर के गाए फिल्म दो दिलों की दास्तां के ये नगमे के साथ। अनजान के बोलों को संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर के मिले जुले स्वरों में फिल्म दो दिलों की दास्तां का नगमा। अनजान के बोलों को संगीतबद्ध किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और इसी के साथ गाने पुराने ज़माने के फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। श्रोताओं, FM 103.7 MHz पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर का चिरमिरी चैनल। लीजिए सुनिए गाने नए, तराने नए फिल्म संगीत में।

अभी आप सुन रहे थे तुलसी कुमार को फिल्म लुका छिपी में। हरमनजीत और साथियों के स्वर में लिखा था ये गीत और इसे संगीतबद्ध किया था तनिष्क बागची ने।

लीजिए सुनिए मीत ब्रदर्स और नेहा कक्कड़ के मिले जुले स्वरों में फिल्म जुड़वा 2 का ये गीत। सोनू सगू के शब्दों को संगीतबद्ध किया है मीत ब्रदर्स ने।

0: जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो।
1: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
0: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
1: तो फिर सही नंबर,
0: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
1: आपने तो बचा लिया दीदी।
0: काम से नहीं।
2: RBI कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

अभी आप सुन रहे थे नीरज श्रीधर, मीत ब्रदर्स और तुलसी कुमार के मिले जुले स्वरों में फिल्म जुनूनियत का गीत। शब्द रचना कुमार की थी, संगीत दिया था मीत ब्रदर्स ने।

लीजिए सुनिए मुस्तफ़ा जाहिद के स्वर में फिल्म रागिनी MMS का ये गीत। शब्द रचना कुमार की, संगीत दिया है प्रणय ने।

FM 103.7 MHz पर श्रोताओं, आप सुन रहे हैं गाने नए तराने नए फिल्म संगीत में। RJ महावीर के साथ फिल्म संगीत की अगली पेशकश इस ब्रेक के बाद।

श्रोताओं, प्रत्येक गुरुवार को युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत होता है ईमेल पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। अपनी फरमाइश भेजने के लिए हमें ईमेल कीजिए हमारी ईमेल आईडी youthexpressnagore@gmail.com पर। इसमें आप लिखिए अपनी पसंद की फिल्म का नाम, गाने के बोल, आपका नाम, आपके शहर या गांव का नाम और भेज दीजिए हमारे ईमेल आईडी पर youthexpressnagore@gmail.com पर। और सुनिए अपने पसंदीदा गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे अंकित तिवारी को फिल्म रॉय में। अवेंद्र कुमार उपाध्याय के बोलों को संगीतबद्ध किया था अंकित तिवारी ने ही। और इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। श्रोताओं, FM 103.7 MHz पर आप हैं, आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल के संग दिन के 11 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं देश की सुरीली धड़कन, विविध भारती मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित कार्यक्रम।
1: फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं है, फिल्में स्मृति भी हैं, फिल्में नॉस्टैल्जिया भी हैं। जब हम पुरानी फिल्मों को देखते हैं तो खो जाते हैं उस पुराने दौर में, मानो समय के स्केल पर कोई बटन दब गया हो और हम अतीत के किसी खांचे में लौट चले हों। ये है फिल्मों का जादू।

जैसे ही आपने इस गाने की झलक सुनी होगी, आपके जहन में कुछ ख्याल आए होंगे लता जी की आवाज के बारे में, संगीतकार मदन मोहन के बारे में और फिल्म मेरा साया के बारे में। जरा ठहरिए, हम अभी आपके साथ अतीत के इस कुहासे में थोड़ी देर और चहलकदमी करेंगे।

0: मुमकिन है कि इन दोनों गानों को सुनकर आप अंदाजा लगा रहे होंगे कि या तो बातें मदन मोहन की होने वाली हैं या फिर फिल्म निर्देशक राज खोसला की। अब सवाल ये है कि आपका क्या किया जाए अंदाजा सही लगाने के लिए।
1: मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए।
0: दरअसल 9 जून को होता है जाने माने निर्देशक राज खोसला की याद का दिन, इसलिए आज हम पूरे एक घंटे राज खोसला के जीवन और उनके सिनेमा की पड़ताल करेंगे। होंगे कुछ दिलचस्प किस्से।
2: है अपना दिल तो आवारा,
0: कितनी कमाल की बात है कि राज खोसला की एक फिल्म थी सन 1966 में आई मेरा साया।

जिस तरह से फिल्मी गाने बदलते वक्त के साथ प्रासंगिक बने रहते हैं और रूप बदल कर आते हैं, इसकी एक मिसाल ये है कि करण जौहर की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में ये गाना रूप बदल कर आया। राज खोसला मनोरंजन के दायरे वाले सिनेमा की बड़ी हस्ती हैं। एक निर्देशक के तौर पर उनकी खासियत को रेखांकित कर दें, फिर आगे की बातें की जाएं। राज खोसला ऐसे निर्देशक हैं जिन्हें सस्पेंस बड़ा प्रिय था, इसलिए तो उन्होंने सीआईडी, वो कौन थी, मेरा साया और अनीता जैसी फिल्में बनाई। उन्होंने डाकुओं की कहानी भी दमदार तरीके से पेश की, पर वो सामाजिक मुद्दों पर बात करते भी नजर आए। फिर चाहे दो रास्ते हो या फिर वो फिल्म जिसका नाम था को। पता है कि अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा के अभिनय वाली इस फिल्म के निर्देशक भी राज खोसला ही थे।

0: और ये सारी फिल्में उस जमाने की हैं जब एक तरफ राज कपूर सक्रिय थे, दूसरी तरफ देव आनंद, विजय आनंद, गुरुदत्त, बी आर चोपड़ा, महबूब खान, के आसिफ और बाकी तमाम दिग्गज निर्देशक। उनके बीच राज खोसला ने अगर बॉक्स ऑफिस पर लगातार राज किया तो इसका मतलब यह है कि इस निर्देशक को मनोरंजक सिनेमा की गहरी समझ थी। राज खोसला का जन्म 31 मई 1925 को पंजाब के राहौन में हुआ था। जब वो सिर्फ 3 साल के थे तब माता पिता मुंबई आ गए थे। जाहिर है कि उनकी पढ़ाई मुंबई में हुई।
1: दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान।
0: राज खोसला अंजुमने इस्लाम स्कूल के छात्र रहे। बाद में उन्होंने दाखिला लिया प्रसिद्ध एल्फिंस्टन कॉलेज में और यहाँ वो थिएटर से जुड़ गए। यहीं से उनका झुकाव सिनेमा की तरफ भी हुआ। कम लोग जानते हैं कि उन्होंने पंडित जगन्नाथ तिवारी से शास्त्रीय संगीत की तालीम भी ली थी। राज खोसला महान गायक कुंदनलाल सहगल के बड़े प्रशंसक थे और कभी कभी वो दोनों रियाज किया करते थे। बात यह थी कि माटुंगा में राज खोसला का घर था और केएल सहगल भी उसी के पास रहा करते थे। हर सुबह राज खोसला सहगल के पास जाकर रियाज करते, उन्हें गाते हुए सुनते। एक दफा केएल सहगल ने राज खोसला से कहा कि आप रेडियो या फिल्मों में क्यों नहीं आते। बस यहीं से राज खोसला ने गायकी का संघर्ष शुरू कर दिया। ये वो दौर था जब वो बतौर गायक आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से भी जुड़े। 1950 में आई बतौर संगीतकार मदन मोहन की पहली फिल्म आंखें, जिसके निर्देशक थे देवेंद्र कोयल। इस फिल्म में राज खोसला ने एक गाना भी गाया। इस गाने के रिकॉर्ड पर लिखा है कोरस लेड बाय राज खोसला और इस गाने के गीतकार हैं भगवान दत्त मिश्र। ये कहना सही होगा।

0: प्रगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 01582401168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युववाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने।
3: बाद 1952 में आई जाल, एक और क्राइम थ्रिलर फिल्म, कलाकार थे देव आनंद और गीता बाली। राज खोसला अब गुरुदत्त के असिस्टेंट डायरेक्टर तो थे ही, लेकिन वो फिल्म की कहानी और फिल्म के तकनीकी पक्षों में भी मदद किया करते थे। दिलचस्प बात यह है कि जाल फिल्म के एक गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान तय हो गया ये गाना राज खोसला गाएंगे, संगीतकार सचिन देव बर्मन के निर्देशन में। राज खोसला ने ये गाना गाया भी, पर गुरुदत्त को राज खोसला की गायकी और उनकी अदायगी पसंद नहीं आई। इसके बाद ये गाना हेमंत

सन 1954 में आई आर पार एक रोमांटिक क्राइम ड्रामा फिल्म थी। गुरुदत्त और श्यामा की मुख्य भूमिकाएं और असिस्टेंट डायरेक्टर अभी भी राज खोसला ही थे। राज खोसला ने अब तक गुरुदत्त से निर्देशन की तमाम बारीकियां सीख ली थीं और अब वो स्वतंत्र निर्देशन शुरू करने का ख्वाब दिख रहे थे। अगले बरस यानी सन 1955 में उनका ये सपना पूरा हुआ जब आई फिल्म मिलाप। कलाकार थे देव आनंद और गीता बाली। फिल्म उतनी नहीं चली।

0: जादूगर।
1: अगर आपको इस फिल्म की शुरुआत याद हो तो एक महिला नजर आती है, उसका चेहरा नहीं दिख रहा है, वो एक टेलीफोन डायल करती है और कहती है,
2: हेलो मैं हूँ, उसे किसी तरह रास्ते से हटा दो, हो सके तो रुपए से या समझे।
1: और फिल्म शुरू होने के एक मिनट के भीतर ही सस्पेंस कायम हो जाता है। सीआईडी इतनी जबरदस्त रही कि लोग अपनी सीटों से जमे रहे ये जानने के लिए कि इसका क्लाइमेक्स क्या है। इस फिल्म ने हंगामा मचा दिया। सीआईडी के बाद गुरुदत्त ने राजखोसला के सामने अपनी अगली फिल्म निर्देशित करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन राजखोसला अपना मन बना चुके थे। उन्होंने कहा कि देखिए गुरुदत्त जी, मैं एक छोटा पौधा हूं, आप जैसे बरगद के नीचे फल फूल नहीं पाऊंगा, इसलिए अब मैं आपके साथ फिल्में नहीं करूंगा।

0: कुछ तेरे दिल में फिफ्टी, कुछ मेरे दिल में फिफ्टी, जमाना है बुरा।
1: यहाँ से राज खोसला की अपनी धारा शुरू होती है। कमाल की बात यह है कि गुरुदत्त की निगहबानी में सिनेमा की तालीम लेने वाले राज खोसला का सिनेमा उनसे एकदम अलग है। गुरुदत्त की फिल्मों में जहां बहुत इंटेंसिटी होती थी, मुख्य किरदार की तकलीफ, उसका संघर्ष, उसकी जिंदगी का अंधेरा, उसकी कश्मकश, पर राज खोसला का सिनेमा इस सबसे अलग था। वो शुद्ध मनोरंजन के साए में ढला सिनेमा था। गुरुदत्त की बजाय राज खोसला ने देव आनंद के नवकेतन बैनर के साथ काम करना ज्यादा सही समझा। सन 1958, राज खोसला ने बनाई काला पानी।

इस फिल्म की कहानी राज खोसला के सहायक बप्पी सोनी ने लिखी थी, जो आगे चलकर बड़े निर्देशक बने। राज खोसला ने नाटकीयता और रोमांच को अपनी फिल्मों का आधार बनाया। उनकी फिल्मों में कई नाटकीय मोड़ होते थे, वो आपको चौंकाती थीं और किसी ऐसी दिशा में मुड़ जाती थीं जिसकी अमूमन दर्शक कल्पना नहीं करते। कालापानी असल में देव आनंद के साथ राज खोसला की एक के बाद एक आने वाली फिल्मों की अगली कड़ी बनी। हम यहां दोहरा दें कि राज खोसला की पहली दो फिल्मों मिलाप और CID दोनों के हीरो देव ही थे।

0: कालापानी के बाद सन 1958 में आई सोलवां साल, ये नवकेतन की फिल्म नहीं थी बल्कि इसके निर्माता थे चंद्रकांत देसाई। इस फिल्म में भी देवानंद और वहीदा रहमान थे। राज खोसला को सस्पेंस बिल्ड करने में मजा आता था, यही उनकी फिल्मों की खासियत रही है। सोलवां साल में भी आप यही सोचते रहते हैं कि अब की बार वहीदा रहमान इस मुसीबत से पार हो पाती हैं या नहीं, आगे क्या होगा। बहुत ही नाटकीय, शानदार, दिलचस्प फिल्म थी सोलवां साल। संगीतकार थे सचिन देव बर्मन। इस गाने में माउथ ऑर्गन उनके बेटे पंचम ने बजाया था, जो आज आरडी बर्मन कहलाते हैं। गाने मजरूह सुल्तानपुरी के थे।
1: हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया, यही ना समझा बहुत।

सन 1960 में एक बड़ी घटना हुई। राज खोसला ने निर्माता बनने का फैसला किया। इसमें उनका साथ निभाया उनके दो दोस्तों ने। एक थे सिनेमेटोग्राफर जाल मिस्त्री और दूसरे थे उनके अभिन्न मित्र देव आनंद। जाल मिस्त्री ने राज खोसला के साथ मिलकर बनाई बंबई का बाबू। यहां गौर करने वाली बात यह है कि जब राज ने बतौर सहायक निर्देश

शक काम शुरू किया तो भी उनके साथ देव आनंद थे। जब उन्होंने बतौर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पहली फिल्म बनाई मिलाप तो उसमें भी देव आनंद थे। जब उन्होंने बतौर इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर काम करना शुरू किया तो उसमें भी देव आनंद थे। इस फिल्म में देव की हीरोइन थी सुचित्रा सेन। हालांकि कहते हैं कि पहले इस फिल्म के लिए मधुबाला का चुनाव किया गया था। बहरहाल सुचित्रा सेन ने कम ही हिंदी फिल्मों में काम किया है और ये फिल्म उनके उत्कृष्ट अभिनय के लिए याद की जाती है। यहां कुछ दिलचस्प बातें आपको बता दें। फिल्म बंबई का बाबू ओ हेनरी की कहानी अ डबल डाइड डिसीवर से प्रेरित थी और इसे लिखा था जाने माने लेखक और निर्देशक राजेंद्र सिंह बेदी ने।

दिन थे जब जाने माने निर्माता शशधर मुखर्जी ने अपने बेटे जॉय मुखर्जी को अभिनय की दुनिया में उतारने का फैसला किया था और बनाई थी फिल्म लव इन शिमला, जो सन 1960 में प्रदर्शित हुई थी। इस फिल्म के जरिए एक नई अभिनेत्री साधना ने फिल्म संसार में अपना पहला कदम रखा था। शशधर मुखर्जी ने साधना के साथ 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट किया था और इस सिलसिले की दूसरी फिल्म के डायरेक्शन के लिए उन्होंने याद किया राज खोसला को, और इस तरह आई एक मुसाफिर एक हसीना, साल 1962।

मुसाफिर एक हसीना का भी परिदृश्य वही था जो राज खोसला की फिल्मों का आधार होता है, सस्पेंस, रोमांच, जासूसी, नाटकीयता। इस फिल्म ने धूम मचा दी थी।

साधना के रूप में राजखोसला को वो हीरोइन मिली जिसकी शायद उन्हें तलाश थी। राजखोसला हमेशा नई रोमांचक कहानियों की तलाश में रहते थे। बस इत्तेफाक से इत्तेफाक के सिरे जुड़ते चले गए और साधना के साथ राजखोसला ने एक फिल्म त्रयी बनाई, एक ट्रायोलॉजी। इसकी खासियत यह है कि इन तीनों फिल्मों की नायिका के साथ जुड़ा है रहस्य का कोहरा। सन 1964, वो कौन थी?

0: 1966 मेरा साया।
1: नैनू में बदरा छाए, बिजली से तुम के हाए।
0: सन 1967 अनीता।

वो कौन थी में साधना ने डबल रोल निभाया था, सफेद साड़ी में रहस्यमय साधना और उनका सस्पेंस। पूरी फिल्म आपको बांध कर रखती है, आपकी जिज्ञासा बढ़ती चली जाती है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। इस फिल्म के हीरो थे मनोज कुमार, संगीत मदन मोहन।

इस फिल्म का ये गाना जब रिकॉर्ड होना था तब लता जी का गला खराब था और वो गाना गाने की स्थिति में नहीं थी। ऐसे में मदन मोहन ने खुद ये गाना गाया था और शूटिंग के लिए भेज दिया गया था। बाद में इसे लता जी की आवाज में डब कर लिया गया था।

0: इस फिल्म के एक और गाने से जुड़ी एक दिलचस्प कहानी संगीतकार मदन मोहन के बेटे समीर कोहली की जुबानी।
1: अब आपने बात की लज्जा गले की, अभी देख लज्जा गले एक अचम्मा बन चुका है, इट्स अ मिरेकल। आज अगर आप YouTube पे जाएं तो YouTube पे 500 मिलियन से ज्यादा व्यूज, मुझे नहीं लगता कि किसी पुराने गाने के इतने व्यूज हैं।
0: बिल्कुल,
1: पर मनोज कुमार साहब से मेरी मुलाकात, वो हीरो थे इस फिल्म के, तो उन्होंने मुझे एक किस्सा बताया कि मदन जी को सिचुएशन दी गई, सिचुएशन के लिए राजा मेहरी अली खान साहब ने गाना लिखा, मदन जी ने कंपोज किया, मदन जी ने कुछ गिने चुने लोगों को ये ट्यून सुनाई, जिसमें से लता जी भी थी, सबको बहुत पसंद आई। अब बात आई राज खोसला साहब की, राज खोसला साहब का देखिए मदन जी से रिश्ता तब से है जब मदन जी ने अपनी जिंदगी की सबसे पहली फिल्म की थी जिसका नाम था आंखें,
0: आंखें देवेंद्र गोयल,
1: आंखें में उन्होंने एक गाना भी गाया था मदन जी के लिए
0: जी।
1: इसका रिकॉर्ड अवेलेबल है, एक कोरस सॉन्ग है, और ये बात हमेशा उनके बारे में बड़ी मशहूर कि उनको म्यूजिक की बड़ी समझ। तो मदन जी ने उनको बुलाया अपने म्यूजिक रूम में और कहा कि आप आइए, मैं आपको ट्यून सुनाना चाहता हूं आपकी सिचुएशन। अब वो आए, वो पता नहीं देखिए आर्टिस्ट पता नहीं कभी कौन से मूड में होता है, वो बैठे नीचे और जैसे ही मदन जी ने उनको ट्यून सुनाई, मदन आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड, मुझे तो बिल्कुल मजा नहीं आया, ये कह के वो चले गए। तो मदन जी ने एक सिटिंग बुलाई संडे के दिन, सिप्पी साहब बैठे हैं सामने, मनोज कुमार बैठे हैं, चार पांच म्यूजिशियन हैं, राजा साहब बैठे हैं। तो मनोज कुमार जी ने उनसे कहा कि फिर से सुन लें, एक रिक्वेस्ट, आपको पसंद नहीं आता दूसरी ट्यून्स। उन्होंने कहा ठीक है सुना। जैसे उन्होंने फिर से सुनी, मदन जी ने खुद गा के सुनाई, तो वो इधर उधर देखने लगे कि यार मेरा जूता कहाँ है। तो मनोज कुमार क्या कहता, दिल कर रहा है मैं अपना ये जूता उठा के अपने सर पे मारूं।
0: ओह गॉड,
1: मैंने इस ट्यून को मना कर दिया। मनोज कुमार जी ने बड़े फखर के साथ मुझे कहा था इस गाने को मैंने बचाया है, और आज ये गाना अल्टीमेट सॉन्ग
0: जी
1: माना जाता है।

0: साधना के साथ सस्पेंस वाली फिल्मों की कड़ी की दूसरी फिल्म थी मेरा साया। इस फिल्म में भी साधना डबल रोल में थी। आपको बता दें कि मेरा साया असल में राजा परांजपे की एक मराठी फिल्म पाथलक का रीमेक थी और ये मराठी फिल्म जयंत देवकुले के उपन्यास आशा परत येते पर आधारित थी।
1: मैं एक फिल्म बना रहा था मेरा साया। मदन मोहन उस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर थे। उन दिनों एक दिन पहले रिहर्सल हुआ करता था और वो भी सुबह 9 बजे। मैं और मदन मोहन बैठे हुए थे और लता का इंतजार हो रहा था। गाना हमारे सामने था लेकिन धुन नहीं बनी थी। जैसे ही लता आई तो उसने हमारी शक्लें देखी और फौरन समझ गई कि कोई बात है। तो उन्होंने कहा, मदन भैया क्या बात है? उन्होंने कुछ नहीं, ट्यून नहीं है, धुन नहीं है। तो जरा सा मुस्कुराई और फिर कहने लगी कि मुखड़ा क्या है, जरा सुनाओ। तो उन्होंने मुखड़ा सुनाया। एक आधा मिनट भी नहीं सोचा होगा लता ने और फौरन कहा कि मदन भैया इसे नंद राग में बना के देखो। और 2-3 मिनट में वो ट्यून बन गई और वो गाना बड़ा अजब और मेरे लिए बहुत बड़ी यादगार।
0: राज खोसला की ये वो फिल्में हैं जिनमें नाटकीयता है, सस्पेंस है, बेमिसाल संगीत है और है शानदार अभिनय।

कहते हैं कि इस गाने को उस जमाने में जानी मानी कोरियोग्राफर सरोज खान ने कोरियोग्राफ किया था। वो उन दिनों मास्टर सोहन लाल की असिस्टेंट हुआ करती थी। मीरा साया के सभी गाने लाजवाब थे।

कहते हैं कि ये फिल्म अल्फ्रेड हिचकॉक की मशहूर फिल्म वर्टिगो से प्रेरित थी। अनीता को वो कामयाबी नहीं मिली जो इस सीरीज की बाकी दो फिल्मों को मिली थी। इस फिल्म के संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: इस बीच सन 1966 में राजखोसला ने फिल्म बनाई दो बदन। अभिनेत्री आशा पारेख ने इससे पहले तीसरी मंजिल, प्यार का मौसम और कारवां जैसी हिट फिल्में की थी, लेकिन उनकी एक खास छवि थी। वो एक सजीली नायिका, एक ग्लैमर गर्ल के तौर पर देखी जाती थी। अभी तक उनकी कोई ऐसी फिल्म नहीं आई थी जो उनकी अभिनय क्षमता को साबित करे। ये काम राजखोसला ने किया।
1: जब

0: कितना अजीब इत्तेफाक है कि साधना के बाद आशा पारेख के साथ भी राज खोसला की 3 फिल्में आईं। पहली थी दो बदन, जिसने आशा पारेख को एक सशक्त अभिनेत्री के तौर पर स्थापित कर दिया। एक बार आशा पारेख ने कहा था, इंडस्ट्री में सभी को लगता था कि मैं सिर्फ एक ग्लैमर और डांसिंग गर्ल हूं, एक अच्छी अभिनेत्री नहीं। मुझे नहीं पता कि राज खोसला ने क्या सोचा था और उन्होंने मुझे दो बदन ऑफर की। लेकिन इस फिल्म के बाद आलोचकों का मुंह बंद हो गया और मुझे वो कॉन्फिडेंस मिला कि मैं भी ऐसे सीरियस रोल कर सकती हूँ।
1: नो,

इस फिल्म के लिए सिमी ग्रेवाल को फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। सन 1969 में राजखोसला लेकर आए फिल्म चिराग। इस फिल्म में आशा पारेख के साथ हीरो थे सुनील दत्त।

0: क्या है।
1: आशा पारेख के साथ राज खोसला ने 3 फिल्में की, दो बदन, चिराग और इस कड़ी की तीसरी और बेहद महत्वपूर्ण फिल्म थी।

ये फिल्म चंद्रकांत काकोडकर के एक मशहूर मराठी उपन्यास अशीतोषी प्रीत पर आधारित थी। चंद्रकांत काकोडकर लंबे समय से राज खोसला के साथ काम करते आ रहे थे। उन्होंने अनीता और दो बदन के डायलॉग भी लिखे थे। ये फिल्म राज खोसला की सस्पेंस फिल्मों से एकदम अलग थी। दो महिलाओं की कहानी, रिश्तों की उलझन, कश्मकश, आत्मसम्मान की कहानी। नाटकीय फिल्मों पर जो पकड़ राज खोसला की थी, वो उन्हें एक विलक्षण निर्देशक बना।

0: बेस्ट डायलॉग का पुरस्कार जीता डॉक्टर राही मासूम रजा ने इस फिल्म के लिए अभिनेत्री नूतन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। ये उनका 5वां फिल्म फेयर पुरस्कार था। यहां खास बात यह है कि 42 बरस की उम्र में नूतन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है क्योंकि इस उम्र तक अभिनेत्रियों का करियर ढलान पर पहुंच जाता है। राज खोसला की खासियत ये थी कि वो तरह तरह के विषयों पर फिल्में बनाते रहे। सन 1959 में उन्होंने बनाई दो रास्ते।
1: मुझे संगीत ने जिंदगी के हर मोड़ पर साथ दिया है। एक वक्त था कि मुझ पर बहुत कर्जे थे और एक गाने ने मुझे इन सब कर्जों से निकाल दिया। किस्सा ये था कि पिताजी सहगल के एक गाने को बहुत पसंद करते थे और अक्सर सुना करते थे। उस जमाने में ग्रामोफोन पर एक भोंपू हुआ करता था और एक कुत्ता सुना करता था। इसी गाने से मुतासिर होकर मैंने एक फिल्म बनाई दो रास्ते, और फिर संगीत ने मेरी मदद की और ये फिल्म गोल्डन जुबली हिट हुई। लीजिए वो गाना।

राजेश खन्ना और मुमताज की अभिनय वाली ये फिल्म खासी कामयाब रही। जब मुमताज बी ग्रेड की फिल्मों में काम कर रही थी, तब दो रास्ते के जरिए राज खोसला उन्हें मुख्य धारा की हीरोइन के तौर पर स्थापित कर पाए।

तक राज खोसला तकरीबन हर जॉनर की फिल्में बना चुके थे, बाकी थी डाकुओं की कहानी। उन्होंने एक शानदार ताना बाना बुना और 1971 में आई मेरा गांव मेरा देश।

विनोद खन्ना ने अपना करियर 1968 में सुनील दत्त की फिल्म मन का मीत से शुरू किया था। अमूमन वो खलनायक के रोल कर रहे थे। मेरा गांव मेरा देश में उन्होंने जब्बर सिंह की भूमिका की और उन्हें एक मुकम्मल पहचान मिली।

सन 2021 में जब इस फिल्म के 50 बरस पूरे हुए तो अभिनेता धर्मेंद्र ने सोशल मीडिया पर लिखा था, 50 साल 50 लम्हे बनकर गुजर गए, मेरे लिए ये फिल्म बहुत मायने रखती है।

देव आनंद के साथ राज खोसला का जो नाता था उसे राज लगातार निभाते रहे। सन 1973 में उन्होंने देव आनंद के लिए बनाई शरीफ बदमाश, इसकी हीरोइन थी हेमा मालिनी।

सन 1975 में राज खोसला लेकर आए फिल्म प्रेम कहानी। इसके कलाकार थे शशि कपूर, राजेश खन्ना, मुमताज और विनोद खन्ना।

दौर में राज खोसला की सबसे बड़ी फिल्म कही जा सकती है यश जौहर की दोस्ताना। इसके कलाकार थे अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, प्रेम चोपड़ा, अमरीश पुरी, हेलेन और प्राण। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था।

80 का दशक आते आते राज खोसला का करियर अपने आखिरी दौर तक पहुंच चुका था। उनकी हिट फिल्मों का जो जादू 70 के दशक तक कायम था वो अब बुझने लगा था। सन 1984 में उन्होंने धर्मेंद्र, सनी देओल, वहीदा रहमान और शर्मिला टैगोर को लेकर बनाई

राज खोसला के निर्देशन वाली आखिरी फिल्म थी सन 1989 में आई नकाब। कलाकार थे ऋषि कपूर और फरहा। इस फिल्म के लेखक थे डॉक्टर राही मासूम रजा। राज खोसला के करियर की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि 1972 में उन्होंने एक फिल्म प्रोड्यूस की, दो चोर, लेकिन इस अकेली फिल्म का निर्देशन उन्होंने खुद नहीं किया। इसके निर्देशक थे पद्मनाभ। धर्मेंद्र, तनुजा, शोभना समर्थ और जलाल आगा जैसे कलाकार, गीत मजरूह सुल्तानपुरी, संगीत आर डी बर्मन।

90 का दशक आते आते राज खोसला सिनेमा से दूर हो गए। एक लंबा करियर, एक से बढ़कर एक फिल्में, फिल्मों की कमाल की विविधता, कहीं सस्पेंस थ्रिलर तो कहीं सामाजिक फिल्में और कहीं डाकुओं वाली फिल्में। कलाकारों की पीढ़ियां, संगीतकारों की और लेखकों की पीढ़ियां बदलती चली गई थीं, पर राज खोसला का करियर जारी रहा था।

लेकिन हर सूरज को एक दिन ढलना होता है। 9 जून 1991, 66 बरस की उम्र में राजखोसला ने आखिरी सांस ली।

वो अपने पीछे छोड़ गए अपनी ढेर सारी मनोरंजक फिल्में। ये वो फिल्में हैं जो दर्शकों को बांध कर रखती हैं। ये हमारे लिए मनोरंजन का स्तंभ हैं। हम उन्हें विनम्र नमन करते हैं।

0: आप सुन रहे थे राजखोसला पर यह विशेष फीचर। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान। प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।
1: ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। नीस में प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों के स्वागत को अविस्मरणीय बताया। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री स्लोवाकिया जाएंगे और वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये स्लोवाकिया के लिए यात्रा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है, क्योंकि ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी। तो इसलिए हम सभी लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल राजनीतिक संबंध प्रगाढ़ होंगे, बल्कि आर्थिक, रक्षा और पीपल टू पीपल रिलेशंस को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
0: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। सरकार ने जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अलख एन शर्मा को श्रम सांख्यिकी पर बनी उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये समिति देश में रोजगार और श्रम बाजार से जुड़े आंकड़ों की समीक्षा करके अधिक सटीक, विस्तृत तथा समय पर उपलब्ध कराने के उपाय सुझाएगी। समिति भारत के बदलते श्रम बाजार का भी अध्ययन करेगी। प्रोफेसर शर्मा वर्तमान में मानव विकास संस्थान के निदेशक हैं। उन्हें रोजगार, श्रम, गरीबी और विकास से जुड़े विषयों पर 40 वर्षों से अधिक का अनुभव है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर मात्र 60 मिनट हो जाएगा। झारखंड में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। पुलिस ने बताया कि मृतकों में रांची के 2 और गढ़वा जिले के 2 लोग हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि समझौता होने के तुरंत बाद हॉर्मुज जल डमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने आशा व्यक्त की है कि वार्ता सफल रहेगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी है। कनाडा के वैंकूवर में फीफा विश्व कप में अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2-0 से हरा दिया। अमेरिका के न्यूजर्सी में ग्रुप सी के मैच में आज स्कॉटलैंड ने 28 वर्ष बाद हैती को 1-0 से हरा दिया है। इसी ग्रुप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील और मोरक्को के बीच मैच 1-1 से बराबरी पर रहा। ICC महिला T20 विश्व कप में आज भारत अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के साथ मैच से करेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान को 16 में से 13 मुकाबलों में हरा चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के फसल उत्सव राजा के अवसर पर देशवासियों, विशेष रूप से ओडिशा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये त्योहार प्रकृति और समाज के गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैकाल के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: राहुल देव बर्मन की बनाई तर्ज पर इसे गाया किशोर कुमार ने। मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे मेरे जीवन साथी, इस फिल्म का गीत आपने सुना।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
3: प्यार

0: सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
0: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं यादों की महफिल।

0: जी सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
0: हाँ, हर रोज दो सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा।

0: सोहनी महिवाल फिल्म का गीत आपने सुना, लता मंगेशकर का गाया, शकील बदायूनी के बोलों को सुरों में ढाला नौशाद ने। और इस गीत के पहले श्रोताओ, आपने मदन मोहन का सर्वाधिकीय गीत सुना, राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, दो आवाजें थी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की, फिल्म थी गेटवे ऑफ इंडिया।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: थे धन्य जवानियों अपनी, थी धन्य वो उनकी जवानी जो

0: वो यहीं पर
1: यहीं है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बच्चा मर जाओ।

अजनबी फिल्म का गीत आपने सुना, किशोर कुमार की आवाज थी, नगमा निगार आनंद बख्शी, मौसिकार राहुल देव बर्मन। मेरे हमदम मेरे दोस्त मोहम्मद रफी की आवाज, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, तर्ज है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।

0: जोर फिल्म का ये गीत आपने सुना मन्ना दी की आवाज में, हसरत जयपुरी के बोल थे शंकर, जय किशन की तर्ज थी। यही थी आज के कार्यक्रम यादों का सफर की आखिरी पेशकश।
1: अमर गीतों की रचयिता।
2: श्रोताओं, विविध भारती के कार्यक्रम जारी रहेंगे हिंदी समाचारों के बाद। FM 103.7 MHz पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, दिन के 1 बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के जिफर अजमेर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ नीस में भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक भारतीय स्टार्टअप, वैश्विक निवेशक, प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अग्रणी लोग और उद्यमी जुटेंगे। इस दौरान भारत के तेजी से बढ़ते नवाचार तंत्र को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रमुख क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा के लिए द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर और किफायती बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के जरिए गरीब और जरूरतमंद लोगों को इलाज की सुविधा मिल रही है, वहीं जन औषधि केंद्रों पर सस्ती दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्टेंट और घुटने के प्रत्यारोपण की कीमतें कम होने से मरीजों को लाभ हुआ है, साथ ही मेडिकल कॉलेजों और सीटों की संख्या बढ़ने से डॉक्टर बनने के अवसर भी बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि सरकार स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए आगे भी लगातार काम करती रहेगी। आज विश्व रक्तदाता दिवस है। सुरक्षित रक्त के महत्व के बारे में जागरूकता लाने और स्वैच्छिक रक्तदान के लिए प्रेरित करने

0: के उद्देश्य से प्रत्येक साल 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व रक्तदाता दिवस की थीम मानवता की एक बूंद रक्तदान करें जीवन बचाएं रखी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व रक्तदाता दिवस पर लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की है। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रक्तदान किसी व्यक्ति को नया जीवन देने का सर्वाधिक प्रभावी और पावन अवसर है। उन्होंने रक्तदान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर भी बल दिया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने भी लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान का आह्वान किया है। इधर प्रदेश के विभिन्न जिलों में सामाजिक संगठनों की ओर से रक्तदान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। प्रदेश में बीएड में प्रवेश के लिए प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट पीटीईटी 2026 आज आयोजित किया गया। सुबह 9 बजे से शुरू हुई ये परीक्षा दोपहर 12 बजे तक आयोजित हुई। परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर बायोमेट्रिक अटेंडेंस के बाद एंट्री दी गई। परीक्षा में कुल 1,26,600 परीक्षार्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। परीक्षा की निगरानी के लिए जयपुर में एक क्षेत्रीय केंद्र में विशेष कमांड सेंटर बनाया गया। वहीं संवेदनशील केंद्रों की निगरानी एआई आधारित सॉफ्टवेयर के मदद से की गई। जालौर जिले के एलाना गांव के पास बिशनगढ़ साइला रोड पर आज एक सड़क हादसे में एक महिला की मृत्यु हो गई और 5 अन्य लोग घायल हो गए। घायलों को जालौर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं दौसा के आगरा बाईपास कट पर आज तड़के उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से जयपुर आ रही रोडवेज आगे चल रहे ट्रेलर से टकरा गई। हादसे में 2 दर्जन यात्री घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। उधर उत्तर प्रदेश के कासगंज में हादसे में 3 लोगों की मृत्यु हो गई। ये दुर्घटना एक निजी बस के रोडवेज बस से टकरा जाने से हुई। हादसे में करीब 40 लोग घायल हो गए। घायलों को भरतपुर और अन्य स्थानों पर उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। बस में सवार ये सभी लोग भरतपुर के रहने वाले थे और सौरोंजी जा रहे थे। राज्य सरकार के शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग ने जयपुर के मानसरोवर में एक फर्म पर कार्रवाई करते हुए 1300 किलो खाद्य सामग्री सीज की है, जबकि 450 किलो एक्सपायरी आटा और दाल मौके पर ही नष्ट करवाया गया। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय डॉक्टर मनीष मित्तल ने बताया कि निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा नियमों में कई उल्लंघन पाए गए, जिसके चलते फर्म के खिलाफ नोटिस जारी कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जून को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर भेज सकते हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: FM 103.7 MHz पर श्रोताओं, यह है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल, जिनके 1:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए देश की सुरीली धड़कन, विविध भारती मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित कार्यक्रम।

0: जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो।
1: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
0: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
1: तो फिर सही नंबर
0: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
1: आपने तो बचा लिया दीदी।
0: काम से नहीं।
2: RBI कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से सुनिए फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश प्रत्येक गुरुवार और प्रत्येक शनिवार को रात 8 बजे। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक गुरुवार को दिन में 12 बजे से दिन के 1 बजे तक। हमारे फोन नंबर्स हैं 015-82-240-168। वैसे तो ये प्रोग्राम सभी श्रोताओं के लिए है, लेकिन हम स्थानीय नागौर जिले के श्रोताओं को प्राथमिकता देते हैं। तो हो जाइए तैयार अपनी फरमाइश हमें भेजने के लिए और कीजिए फोन हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है हेलो फरमाइश।
5: और बीते हुए रिश्तों की परछाइयां अंततः आईना एक ये एहसास कराता है कि सच्चा हमसफर कोई और नहीं बल्कि स्वयं दिल का दिल और अपनी पहचान है। उम्र के एक पड़ाव पर व्यक्ति जब स्वयं से प्रेम करना सीख लेता है तब उसे अपने भीतर ही संपूर्णता दिखाई देने लगती है। अब दर्पण केवल चेहरा ही नहीं दिखाता बल्कि मन के भावों और जीवन के अनुभवों का प्रतिबिंब भी बन जाता है। आईना वही रहता है, चेहरे बदल जाते हैं। तो देखते हैं आज कौन कौन से गीत हैं श्रोताओं। वैसे आईना तो आप भी देखते हैं खरीद भी हैं, क्या आपने कभी इसकी डिजाइन पर ध्यान दिया है या आपको जब आप इसे खरीदते हैं तो इसकी डिजाइन पर कितना ध्यान देते हैं, कितना आप सोचते हैं कि ये डिजाइन किस तरह से उसे और सुंदर बनाता है। तो आप हमें आईने की डिजाइन के बारे में और अपनी पसंद के बारे में जरूर लिखें। वैसे भारत में देखा जाए तो बहुत सारे किले ऐसे हैं, बहुत सारे महल ऐसे हैं जहां शीश महल भी हैं। तो ऐसी कोई बात अगर आपको याद आती है, आपने देखा है कहीं, तो आप हमें जरूर बताएं। वैसे शीशे के लॉकेट भी होते हैं और चश्मा भी।

माला सिन्हा और शम्मी कपूर पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे, और इस गीत की डिटेल आपको लिखनी है श्रोताओं कि गीतकार कौन है और संगीतकार कौन है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि दिल्ली के लाल किले के दीवान खास में स्थित शीश महल में देखे हैं, गाइड ने मशाल जलाकर चारों ओर दहकती आग देख दंग रह गए थे। जी हाँ श्रोताओं, बहुत सारे शीशे पहले महलों में लगाए जाते थे और बड़े बड़े जो कमरे होते थे उसमें लगाए जाते थे, वो इस वजह से कि जब एक छोटी सी मशाल भी जलाई जाए या मोमबत्ती भी रोशन की जाए तो उससे सारा महल रात में जगमगा उठे, तो इस वजह से शीशे लगाए जाते थे। वैसे शीशों पर बड़ी कारीगरी भी की जाती थी, आपने ताजमहल में भी देखा होगा। वैसे बहुत सारे तो अब हैं नहीं। एक और श्रोता ने लिखा है कि आईना एक ऐसी वस्तु है जिसमें पारा लगने के बाद अपना चेहरा दिखता है और पारा हटने के बाद पूरी दुनिया की हकीकत का असली चेहरा हमारे सामने रख देता है। जी हाँ, अगर पारा न चढ़ाया जाए इस पर तो इस पर शक्ल नामुमकिन है। और एक और श्रोता ने लिखा है कि कहिए आईना या फिर दर्पण पारदर्शिता के साथ आत्मनिरीक्षण करने का संदेश देता है, हमारे वास्तविक बाहरी रूप को दिखाते हुए हमें अंदर झांकने को भी बोलता है। इसलिए तो कहा जाता है कि दर्पण झूठ ना बोले, हम जैसा व्यवहार करेंगे वैसा ही वापस मिलेगा। बाहरी रूप संवारने के साथ साथ मन या दिल के अंदर रहे को विचार को संवार कर दूर करने की भी जरूरत है। जी हाँ श्रोताओं, वैसे एक बात भी है कि आईना जितना दिखाता है उससे ज्यादा कहीं कुछ छुपा भी लेता है, और तभी तो हमारी इबारत में दिल के बारे में भी लिखा है कि वो दिल है जिसे हम देख नहीं सकते लेकिन इसे महसूस कर सकते हैं, और इसी का असर हमारे चेहरे पर होता है। और हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि जब दुनिया के सामने मुस्कुराते मुस्कुराते थक कर इंसान अकेले में हार जाता है तो आईना वो दोस्त होता है जो उसके बहते हुए आंसुओं को बिना किसी शिकायत के कबूल करता है। दुनिया की नजरों में भले ही हम खुद को छुपा लें पर अपनी ही नजरों से नजरें मिलाना सिर्फ आईने के सामने मुमकिन है। एक और श्रोता लिखते हैं कि कांच को भी दर्पण में ढालने के लिए अपने आप को बदलना पड़ता है, जिस तरह कांच अपनी मूल पहचान पारदर्शिता को थोड़ा बदलकर दर्पण बनाता है और तभी वह खुद का असली रूप देख पाता है, उसी तरह इंसान को भी समझदार और परिपक्व बनने के लिए अपनी सोच और आदतों में बदलाव लाना पड़ता है। शीशे के परिधानों को लेकर आप कुछ लिखना चाहें तो जरूर लिख सकते हैं।

काजल फिल्म का ये गीत सुन रहे थे आप। आपको कलाकार बताने हैं इस गीत के, और अगले गीत में भी आपको कलाकार बताने हैं और फिल्म पहचाननी है, गीतकार बताना है। हमारी एक श्रोता ने लिखा है, हमारे ग्वालियर में हर साल व्यापार मेला लगता है। उसमें एक हॉल में कई प्रकार के शीशे लगे होते हैं, उनमें किसी में मोटे पतले या फिर अलग अलग तरह के मुंह बनकर सामने आते हैं, तो उसे देखकर बड़ी हंसी आती है। जी हाँ, ये तो है, लेकिन शीशे के परिधान भी होते हैं श्रोताओं। वो आपको कितने पसंद हैं और कहाँ से आप खरीदते हैं, जहाँ आपने जहाँ भी खरीदा होगा, जहाँ से भी खरीदा होगा, वो एक खास नगरी होगी। वैसे ग्लास सिटी ऑफ इंडिया यानी कांच नगरी किसे कहते हैं, और क्या आपने यहाँ कभी खरीदारी की है? एक और सवाल का जवाब आपको देना है कि एक गीत है जो 60 के दशक की एक मकबूल फिल्म का है, उसमें बहुत सारे शीशे दर्शाए गए हैं। आपको वो फिल्म, वो अभिनेत्री पहचाननी है। एक श्रोता हमारे लिखते हैं कि आज प्रसारित होने वाला सुरीला सफर कार्यक्रम में कुछ गीत नैनो में दर्पण है। दर्पण के इन्होंने बहुत सारे गीत लिखे हैं, लेकिन अगर आप टेक्स्ट को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें अलग अलग गीतों का जिक्र है श्रोताओं, और जरूर दर्पण के भी गीत हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत में हुस्न उफनती हसरतों उमंगों तरंगों का जिक्र है। जब इश्क की अरमान लिए दिल एक हम सफर हमराही और हमराज की चाहत रखता है, जो उसके दिल की भावनाओं को समझे और जीवन सफर का हम सफर बने। हुस्न और इश्क के ताने बाने में बुनी हुई तड़प दर्शाती खूबसूरत इबारत इश्क की इबारत है। संगीत में सफर की प्रेम गंगा में डुबकी लगाने के लिए हम श्रोतागण भी बेकरार हैं। तो जी हाँ, कार्यक्रम तो शुरू हो चुका है श्रोता। एक और श्रोता ने लिखा है कि दर्पण की बात देखकर हमें तो गीत गाता चल का गीत याद आ गया, जिसमें प्यारी सी सारिका जी गा रही हैं, मैं वही दर्पण वही। और एक और श्रोता लिखते हैं, आईना सिर्फ चेहरा देखने के काम नहीं आता, आईना हमें मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे छुपे दर्द का एहसास भी दिलाता है। आईना हर देखने वाले को सच ही दिखलाता है, देखने वाला आईने में क्या देखना चाहता है, जो रूप भी आईने के सामने आता है आईना भी उस रूप का सच दिखाता है। पर आईने की एक सच्चाई ये भी है दोस्तों, ये कब सच बतलाता है, जब देखो दायां तो बायां ये दिखलाता है।

जीवन के दिल के अलग अलग परिदृश्य हैं श्रोताओं, जो गीतों में ढलकर हमारे सामने आए हैं, और यही तो आईना दिखाना चाहता है। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है फिल्म के बारे में, जो हमने सवाल पूछा था मुगल आजम फिल्म का, वो गीत प्यार किया तो डरना क्या। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। और उसमें बहुत सारे शीशे जो हैं वो बेल्जियम ग्लास इस्तेमाल किए गए हैं। मधुबाला पर फिल्माया गया ये गीत है। और हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि भारत में उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद को कांच नगरी यानी ग्लास सिटी कहा जाता है। इसे चूड़ी नगरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये देश में कांच की चूड़ियों और कांच के अन्य सजावटी सामानों का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये शहर आगरा के पास स्थित है। जी हाँ, और भी शीशे को लेकर बहुत सारी जो हैं बातें हैं, और बहुत सारे शहर हैं श्रोताओं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी कलाकृतियां हैं जो भारत में प्रसिद्ध हैं और जो व्यापार में भी लाई जाती हैं, यानी जिनका जो है वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है। तो इस बारे में भी अगर आप जानते हैं तो आप ज़रूर लिखें। और शीशे के जो गहने होते हैं वो भी अलग होते हैं। कुछ एक मीनाकारी और कुंदन के तरह का बनाया जाता है जिसमें मीनाकारी होती है। तो ये पारंपरिक जो ज्वेलरी है जो है वो राजस्थान के एक शहर में बनाई जाती है। क्या इस शहर के बारे में आपको पता है, जहां कुंदन और मीनाकारी का काम होता है। एक हमारे श्रोता लिखती हैं कि शीशे की एक सुंदर नाजुक वस्तु यानी आईना दर्पण, जो किसी भी चीज का सटीक प्रतिबिंब दिखलाता है, सजना संवरना, खुद को स्मार्ट दिखना रखना, ये काम दर्पण की सहायता से आसान बन जाते हैं। मन का दर्पण सच्चाई का प्रतीक होता है, जो

आत्मबोध के साथ नकारात्मकता से बचाता है, आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। तो दर्पण जब घर में रखा जाता है तो बहुत सारी बातों का भी ध्यान रखा जाता है श्रोताओं, जैसा कि हमारी इन श्रोता ने लिखा है। तो क्या आप दर्पण को कहाँ रखना है इस बारे में भी ध्यान देते हैं तो जरूर बताइए। एक और श्रोता ने लिखा है कि आईना तो वही रहता है मगर चेहरा हर रोज बदल जाता है, कभी थका हुआ, कभी बिखरा हुआ, तो कभी संवरा हुआ। ये सच है कि आईना कभी झूठ नहीं बोलता लेकिन पूरा सच भी नहीं दिखा सकता। आईना चेहरे की झुर्रियां तो दिखा देगा पर चेहरे के पीछे की थकान नहीं मुस्कान तो दिखा देगा पर उसके पीछे छुपे दर्द को नहीं बता सकता। एक और श्रोता ने लिखा है वस्तुओं में एक आईना ही है जो जैसा है उसको वैसा ही स्वीकार करने की ग्रहणशीलता रखता है। पूरी निश्चलता के साथ आईने की जो सबसे बड़ी खूबी है जहां से जो मिला उसे उसी रूप में लौटा देता है, इसलिए तो कहते हैं कि आईना कभी झूठ नहीं बोलता। उम्र दर उम्र और बदलते वक्त के दो ही साक्षी होते हैं, पहला समय और दूसरा आईना। हम इस बात को कभी समझ नहीं पाते मगर सच यही है, आईना अपनी मौजूदगी में हमें खुद से मिलने की आजादी देता है। एक केवल उसी के पास साहस होता है तुमको तुमसे रूबरू कराने का। आईना हमारे जीवन रथ का सच्चा सारथी है।

अपना देश फिल्म का ये गीत था, मुमताज और राजेश खन्ना पर फिल्माया गया। किशोर कुमार, लता मंगेशकर की आवाजें थी, आनंद बख्शी के बोल थे। एक श्रोता लिखते हैं कि आज गद्यांश में ऐसी नाजुक चीज की बात है जो सभी का हम सफर भी है, और वो चीज जो हमें खुद से रूबरू कराती है, और ये है आईना जो कभी झूठ नहीं बोला करता। आपके प्रतिबिंब जैसा है, आपका प्रतिबिंब जैसा है वैसा ही उभरता है। वक्त के साथ बदलते चेहरे से लेकर हर उन बदलावों का गवाह होता है जो उसमें प्रतिबिंब होते हैं। और कुछ एक गीत भी इन्होंने लिखा है। एक और श्रोता ने लिखा है कि बहुत कमियां निकालते हैं हम दूसरों में, अक्सर आओ एक मुलाकात जरा आईने से भी कर लेते हैं। एक यही तो है जो जैसा है वैसा ही दिखाता है। सिर्फ आंतरिक भावनाओं को छोड़कर मैं जब भी अकेला होता हूँ तो आईने के सामने खड़ा होकर अपने आप को देखता हूं तो महसूस करता हूं कि कोई तो है मेरे साथ। और उसी समय रेडियो पर बजता गीत दिल को बेहद सुकून दे जाता है। आज की इबारत पढ़ने से पता चलता है कि बड़े ही रोमांटिक गीत सुनवाए जाएंगे कार्यक्रम में। और कुछ एक गीत भी इन्होंने बताए हैं जिसमें से कुछ एक गीत जो है वो मिलते भी हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि आज का सुरीला सफर आईने के साथ शुरू करना और आईने को लेकर ही पूरा करना है। मैं वही दर्पण, वही अपने आप को दिखाने के लिए लोग बाल काले करते हैं, चेहरे पर मालिश लगा लेते हैं, लेकिन जब वो आईना देखते हैं तो आईना असली सूरत और उम्र दिखाता है। कभी कभी हम इतने उदास होते हैं और आईने को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जिंदगी के आईने को तोड़ दो, इसमें अब कुछ नजर नहीं आता। ऐसे ही कुछ गीत पुष्प सुनकर आज सुरीला सफर कार्यक्रम पूरा करना है।

इस गीत को आपको पहचानना है श्रोताओं। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि रास्ता आईना मासूम चेहरा जुल्फ रंग महल हम सफर गजरा गजरा और बहुत सारे शब्द इन्होंने चुने हुए हैं। दर्पण भी है हुस्न भी है जरा ठहरो मोहब्बत दिलदार, तो ये सारे शब्द इन्होंने चुने हैं। एक और श्रोता ने लिखा है आईने में देखकर खुद को मुस्कुरा देते हैं वो उस और उस मुस्कान पर न जाने कितने दिल हार जाते हैं। तुम्हारी आंखों की चमक के आगे आईना भी फीका लगे, खुदा ने बड़ी फुर्सत से तुम्हारी सूरत बनाई है। तो इस तरह से इन्होंने अपनी इबारत को लिखना चाहा है। एक और श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत को ध्यान से पढ़ने पर ये मुख्य शब्द निकल कर आते हैं जिन पर गाने आधारित हो सकते हैं, आईना चेहरा जुल्फ हम सफर और बहुत सारे शब्द इन्होंने लिखे हैं। और एक और श्रोता लिखते हैं कि एक छोटी सी प्यारी सी बात, दर्पण में दिखने वाला अक्स तो कुछ पल साथ रहता है लेकिन अच्छे कर्मों का प्रतिबिंब लोगों के दिलों में बरसों तक चमकता रहता है। एक और श्रोता लिखते हैं आज की इबारत आत्म मंथन और प्रेम का सुंदर संगम लगती है, आईना केवल चेहरा नहीं दिखाता बल्कि दिल के भीतर छिपे एहसासों यादों इंतजार और मोहब्बत को भी सामने ले आता है। ऐसा लगता है जैसे आज का सुरीला सफर हमें अपने ही दिल से मिलने मुस्कुराने और जीवन के सबसे सच्चे हम सफर अपने आप को पहचानने की ओर ले जाएगा। जी हाँ श्रोता, और यही सब बातें जो हैं, कई बार हम जब आईने के सामने खड़े होते हैं तो हम अपने दिल से पूछते हैं और इन्हीं सब बातों का जिक्र आज गीतों के जरिए आपके सामने आया है। कभी कभी तो आईने के सामने खड़े होकर हम बातें भी करते हैं, कभी अपने आप से कुछ कहते हैं तो कभी अपने आप से लड़ भी पड़ते हैं।

वैजंती माला और दिलीप कुमार पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे लीडर फिल्म से शकील बदायूनी का लिखा नौशाद का संगीत था, जिसके पहले आपने सुना मेरे महबूब फिल्म का गीत जो साधना पर फिल्माया गया नौशाद की तर्ज थी। एक श्रोता लिखते हैं कि यदि आईने आईना में साफ दिखता नहीं है तो आईना साफ करने के साथ साथ एक बार अपने ऐनक के ग्लास को भी साफ कर देखें। हर बार गलती सामने वाले की नहीं होती, एक बार अपने अंदर भी झांक लें। एक श्रोता लिखते हैं कि आज प्रस्तुत गद्यमयी इबारत में आईने की बात है। आईना हर किसी के चेहरे की सच्चाई बयां किया करता है और इस दिल की भी उपमा चेहरे के समान ही है। एक चेहरे की हकीकत को यथा योग्य दिखाने वाले उस आईने को बाहरी आईने के समान अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता, लेकिन उस हृदय रूपी आईने के कृत्य उस आईने के मन दर्पण की अभिव्यक्ति करने में पूरी तरह समर्थ हुआ करते हैं। और ऐसे ही अभिव्यक्ति को जो है वो बता रही है ये इबारत। जी हाँ, और आईना बहुत सारी अभिव्यक्तियों को ध्यान में हमारे लाता है। श्रोताओं, ऐसे ही गीत आज हमने पिरोए हैं और अगला गीत भी बिल्कुल वैसा ही है। एक और श्रोता लिखती हैं कि दर्पण जीवन के विभिन्न रंग दिखाता है, मोहब्बत, प्रतीक्षा, रूठना, मनाना, अपने और बीते हुए रिश्तों की परछाइयां। अतः आईना एक एहसास कराता है कि सच्चा हम सफर कोई और नहीं बल्कि स्वयं दिल, स्वयं का दिल और अपनी पहचान है। और एक और श्रोता ने लिखा है कि आईना हकीकत बयां करता है, कुछ पाता नहीं, सामने लाता है आईना। कुछ गीत इन्होंने लिखा है, आईना वही रहता है जो वही रहता है, चेहरे बदल जाते हैं। वैसे कांच की बात अगर करें श्रोताओं, जिससे आईना बनता है तो इसके बहुत सारे आभूषण भी बनते हैं, फूलदान भी बनते हैं, और एक जमाना था जब खिलौने भी बहुत बना करते थे और हम सब खरीदा भी करते थे। कांच के खिलौनों की अगर कोई यादें हैं तो आप हमसे साझा कर सकते हैं। और बहुत सारे शीशे कई सारे ऐतिहासिक महलों में लगाए गए हैं, उनके बारे में अगर आपकी कोई जानकारी है तो आप हमें जरूर लिखें। और इस गीत को पहचाने अदाकार बताने हैं आपको। कई बार दर्पण देखते देखते देर भी हो जाती है, और ऐसा ही ये गीत है।

तनुजा और राजीव पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म थी नई उम्र की नई फसल, मुकेश की आवाज़ थी, नीरज के बोल थे, रोशन का संगीत था। शीश महल जो आमिर का किला है श्रोताओं, उसमें बड़ा ही खूबसूरत तरीके से, बड़ी खूबसूरत तरीके से इसे बनाया गया है। 1727 में जिसे राजा मान सिंह द्वारा बनवाया गया था। रानी महल में यहाँ आप देख सकते हैं कि तारों को देखने के लिए दीवारों और छतों पर हजारों दर्पण लगाए गए थे, जो एक दिए की अगर रोशनी की बात करें तो उससे भी जगमगा उठते थे। और अब ये गीत आप सुनिए और बताइए कि ऐसा लॉकेट आपके पास भी था क्या? इस लॉकेट में किसकी सूरत या शक्ल नजर आती है?

0: शालीमार फिल्म का ये गीत आपने सुना, ज़ीनत अमान और धर्मेंद्र भी इसमें नजर आते हैं। लॉकेट में जो एक टूटे शीशे में नजर आती है वो धर्मेंद्र की तस्वीर है। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि कांच का पेपर वेट बहुत सुंदर लगता है, कांच के दो तीन फ्लावर पॉट हैं हमारे घर में, कांच के और भी सुंदर डेकोरेटिव पीसेज हैं, पर बस डर लगता है कि टूट ना जाए। जहाँ टूटने का तो खतरा रहता है, ऐसा ही दिल भी है और जो शीशे का ही होता है। तो इस बारे में भी अगर आप कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। एक हमारे और श्रोता ने लिखा है कि कांच का बना हुआ पहले दो चिड़िया का सेट आया करता था, जिसमें वो बीच में रखे एक बर्तन में एक के बाद एक अपनी चोंच डुबोती थी, अब वो नहीं मिलता।
1: युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 01582-240-168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युववाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुनें।

अराउंड द वर्ल्ड फिल्म का ये गीत है, आपको कलाकार बताने हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि नवरात्रि, दीपावली और शादियों के दौरान शीशे के काम वाला कपड़ों की मांग बढ़ जाती है। गुजरात का प्रसिद्ध चनिया चोली और राजस्थान का घाघरा चोली बिना मिरर वर्क के अधूरे माने जाते हैं। आधुनिक समय में ये कला सिर्फ पारंपरिक परिधानों तक ही सीमित नहीं बल्कि पश्चिम पहनावे जैसे जैकेट, कुर्तियां, स्कर्ट, बैग और होम डेकोर के में भी इसका खूब इस्तेमाल होता है।

राज कपूर और राजश्री पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म थी अराउंड द वर्ल्ड, मुकेश और शारदा की आवाजें थी। इस गीत की डिटेल हमारे श्रोताओं ने ठीक लिखी है और यही है आज के सुरीला सफर कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। आप सभी की प्रतिक्रियाओं, आपके कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया।

श्रोताओं नमस्कार। आज की त्रिवेणी सांझ विषय पर आधारित है। दोस्तों, सांझ दिन और रात के मधुर मिलन का वो क्षण है जहाँ प्रकृति अपनी समस्त थकान उतारकर एक शांत, गंभीर और सौम्य रूप धारण कर लेती है। जब सूर्य अपनी सुनहरी किरणों को समेटते हुए क्षितिज की गोद में विश्राम लेने लगता है, तब आकाश के विस्तार पर लालिमा, केसरिया और धूसर रंगों की छटा बिखर जाती है। ये दृश्य केवल आंखों को ही नहीं, मन को भी एक अद्भुत शांति से भर देते हैं। सांझ का समय जीवन के उस पड़ाव का प्रतीक है जहां गति की तीव्रता मंद होकर आत्मचिंतन में परिवर्तित हो जाती है।

दोस्तों, दिन भर की आपाधापी, संघर्ष और कोलाहल के पश्चात ये सांझ की घड़ी ठहर कर स्वयं से मिलने का अवसर प्रदान करती है। पक्षियों का अपने घोंसलों की ओर लौटना, गायों का बछड़ों के पास आना रंभाना, मंदिरों की घंटियों का मधुर निनाद और आकाश में उभरती प्रथम तारा रश्मि, ये सभी दृश्य सांझ को एक आध्यात्मिक गरिमा प्रदान करते हैं। भारतीय संस्कृति में सांझ का विशेष महत्व रहा है। इसे संध्या वंदन का समय माना गया है, जब मनुष्य अपने दैनिक कर्मों से निवृत्त होकर ईश्वर का स्मरण करता है। ये समय आत्मा की

0: शुद्धि और मन की एकाग्रता का प्रतीक है।
1: कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन

दोस्तों, सांझ हमें सिखाती है कि हर अंत के भीतर एक नए आरंभ की संभावना छिपी होती है। जैसे दिन का अवसान रात्रि का द्वार खोलता है, वैसे ही जीवन में प्रत्येक संधि एक नई दिशा का संकेत देती है। साहित्य और काव्य में भी सांझ को विरह, प्रतीक्षा और स्मृति का भावपूर्ण रूप मिला है। प्रिय के वियोग में डूबी नायिका के लिए सांझ का धुंधलका उसके मन की व्याकुलता को और गहरा कर देता है। वहीं किसी साधक के लिए यही सांझ और ध्यान और समाधि का पावन क्षण बन जाती है। सांझ केवल दिन का एक भाग नहीं, बल्कि जीवन दर्शन का एक सजीव प्रतीक है, जो हमें संतुलन, शांति और आत्म अवलोकन का संदेश देती है।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थे धन्य जवानी अपनी, थी धन्य।

0: ये विविध भारती है, थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण की शुरुआत फ्रांस के नीस शहर से की। श्री मोदी अब से कुछ देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। झारखंड में कल से बिजली गिरने की घटनाओं में 7 लोगों की मौत। दक्षिण पश्चिम मॉनसून अगले 2-3 दिनों में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ेगा। 5,000 से अधिक भरतनाट्यम कलाकारों ने कोलंबो में सामूहिक प्रस्तुति देकर गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया। और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत आज शाम बर्मिंघम में पाकिस्तान के साथ अपना पहला मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस पहुंचे। यहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में भाग लिया। नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वागत को अविस्मरणीय बताया। श्री मोदी अब से कुछ ही देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ नीस में भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक भारतीय स्टार्टअप, वैश्विक निवेशक, प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अग्रणी लोग और उद्यमी जुटेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे।
2: कार्यक्रम में नवाचार, उद्यमिता और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद दोनों नेता भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित भोज के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के अगले चरण में स्लोवाकिया रवाना होंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज शाम स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में पारंपरिक स्लोवाक शैली में स्वागत किया जाएगा।
3: ब्रातिस्लावा पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पारंपरिक तरीके से ब्रेड और नमक देकर स्वागत किया जाएगा। स्लोवाक संस्कृति के अनुसार मेहमानों और खास लोगों का स्वागत ब्रेड और नमक के साथ किया जाता है। ब्रेड को खुशहाली जबकि नमक को अहमियत, दोस्ती और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। स्लोवाकिया के बच्चों का एक मशहूर लोक कला समूह प्रधानमंत्री के स्वागत में पारंपरिक स्लोवाक नृत्य प्रस्तुत करेगा। लुचनिका एंसेम्बल द्वारा वंदे मातरम की प्रस्तुति स्वागत समारोह का मुख्य आकर्षण होगी। स्मृति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं।

दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक बदलाव आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गडकरी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत करोड़ों लोगों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है। इस योजना का दायरा अब वरिष्ठ नागरिकों तक भी बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि जन औषधि केंद्रों के माध्यम से सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण उपलब्ध कराई जा रही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत आज दुनिया की कई सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार हुआ है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और अन्य डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के जरिए अधिक लोगों तक इलाज की सुविधा पहुंच रही है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक दैनिक समाचार पत्र को दिए साक्षात्कार में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर्नाटक को यूपीए सरकार के समय की तुलना में केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में 5 गुना अधिक धनराशि मिली है। बेंगलुरु में विकसित भारत संकल्प समावेश कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक को केंद्र से लगभग 4 लाख करोड़ रुपए कर हिस्सेदारी के रूप में मिले हैं। उन्होंने राज्य सरकार के इस आरोप को भी खारिज किया है कि कर्नाटक को केंद्र से पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल बिहार के गयाजी जिले के खिजरसराय में नए प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखेंगे। ये केंद्र दक्षिण बिहार और मगध क्षेत्र में 170 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य प्रतिवर्ष 7,000 युवाओं को प्रशिक्षण देना और रोजगार सेवाओं के माध्यम से प्रतिवर्ष 1,000 से अधिक उद्यमियों को सहायता प्रदान करना है। सरकार ने जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अलख एन शर्मा को श्रम सांख्यिकी पर बनी उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये समिति देश में रोजगार और श्रम बाजार से जुड़े आंकड़ों की समीक्षा करके अधिक सटीक, विस्तृत तथा समय पर उपलब्ध कराने के उपाय सुझाएगी। समिति भारत के बदलते श्रम बाजार का भी अध्ययन करेगी। प्रोफेसर शर्मा वर्तमान में मानव विकास संस्थान के निदेशक हैं। पश्चिम बंगाल में अपराध जांच विभाग सीआईडी तृणमूल कांग्रेस विधायकों के हस्ताक्षर जालसाजी मामले में पार्टी सांसद अभिषेक बंदोपाध्याय से पूछताछ कर रही है। अभिषेक आज कोलकाता में सीआईडी मुख्यालय भवानी पहुंचे। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर सीआईडी इस मामले की जांच कर रही है। आरोप है कि राज्य विधानसभा चुनाव के बाद विपक्ष के नेता के चयन के लिए अभिषेक बंदोपाध्याय ने तृणमूल कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों के हस्ताक्षरों में जालसाजी की। झारखंड में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। पुलिस ने बताया है कि मृतकों में 2 लोग रांची और 2 गढ़वा जिले के हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर मात्र 7 मिनट हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। आयुष मंत्रालय ने आज YouTube पर आयोजित एक लाइव योग सत्र के जरिए नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इस ऑनलाइन योग कार्यक्रम में 4 लाख 35

0: हजार से अधिक लोगों ने भाग लिया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि ये उपलब्धि दुनिया भर में योग की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाती है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम 21 जून को कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष योग दिवस की थीम है स्वस्थ आयु के लिए योग। श्रीलंका के कोलंबो में आज 5000 से अधिक कलाकारों ने भरतनाट्यम की सामूहिक प्रस्तुति देकर ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपलब्धि हासिल की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: कोलंबो के गोल्फेस ग्रीन में आज इतिहास रचा गया। 5000 से अधिक भरतनाट्यम कलाकारों ने एक साथ प्रस्तुति देकर दुनिया की सबसे बड़ी भरतनाट्यम नृत्य कक्षा का एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया। रंग, लय और परंपरा के अद्भुत संगम ने पूरे वातावरण को सांस्कृतिक उत्सव में बदल दिया। महीनों की तैयारी के बाद साकार हुए इस ऐतिहासिक आयोजन ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य की वैश्विक लोकप्रियता को नई ऊंचाई दी है। इस उपलब्धि के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने कलाकारों और आयोजकों का प्रतिनिधित्व करते हुए प्राप्त किया। भारत और श्रीलंका के सांस्कृतिक संबंधों को और सशक्त बनाने वाला ये आयोजन कला और विरासत की एक अविस्मरणीय मिसाल बन गया है। अहमद मोइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जारी विवाद को समाप्त करने के लिए एक समझौते पर आज हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसके बाद हॉर्मूज जल डमरू मध्य सभी देशों के लिए खुला रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह समझौता दोनों देशों के संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम होगा। उन्होंने दावा किया है कि ईरान अब परमाणु हथियार नहीं चाहता। हालांकि ईरान ने आज समझौते पर हस्ताक्षर होने की खबरों की पुष्टि नहीं की है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने कहा है कि अगर कोई समझौता होता भी है तो वो आगे की बातचीत के लिए केवल प्रारंभिक ढांचा होगा। इस बीच ईरान के कई शहरों में लोगों ने अमेरिका के साथ प्रस्तावित शांति समझौते के विरोध में प्रदर्शन किया। ओडिशा में 3 दिवसीय फसल उत्सव राजा आज पहली राजा उत्सव के साथ शुरू हुआ। ये महोत्सव मॉनसून और उड़िया महीने आषाढ़ के आगमन का प्रतीक है।
2: राज्य के सबसे पसंदीदा सांस्कृतिक त्योहार का नाम रजस्वला से आया है, जो इस मान्यता को दर्शाता है कि महिलाओं की तरह धरती भी आराम और नई ऊर्जा पाने के दौर से गुजरती है। उड़ीसा के हर घर में त्योहार के खास पकवाने जैसे पोड़ पीठा, अरीसा पीठा, चकोली पीठा और मसूर रजा पान की खुशबू फैली हुई है। रजा नारित्व और प्रकृति तथा जीवन को बनाए रखने वाली उसकी प्रक्रियाओं के प्रति उड़ीसा के गहरे सम्मान का एक अनोखा उत्सव है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर देशवासियों, विशेष रूप से ओडिशा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये त्योहार प्रकृति और समाज के गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया है। आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिमी राजस्थान में कल तक तेज आंधी तूफान की संभावना है। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज लू चलने का अनुमान है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व रक्तदाता दिवस पर लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की है। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रक्तदान किसी व्यक्ति को नया जीवन देने का सर्वाधिक प्रभावी और पावन अवसर है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत अपने पहले मैच में पाकिस्तान के साथ खेलेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान को 16 में से 13 मुकाबलों में हरा चुका है। और फीफा विश्व कप के ग्रुप डी के अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2-0 से हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के नेस्टोरी इरनकुंडा और कॉनर मेटकॉफ ने एक एक गोल दागा। अमेरिका के न्यूजर्सी में ग्रुप सी के मैच में आज स्कॉटलैंड ने 28 वर्ष बाद हैती को 1-0 से हरा दिया है। इसी ग्रुप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील और मोरक्को के बीच मैच 1-1 से बराबरी पर रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण की शुरुआत फ्रांस के नीस शहर से की। श्री मोदी अब से कुछ देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। झारखंड में कल से बिजली गिरने की घटनाओं में 7 लोगों की मौत। दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 2-3 दिनों में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा।

0: सचिन देव बर्मन की मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत आपने सुना, किशोर कुमार आशा भोसले का गाया, फिल्म थी तीन देवियां।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति, लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: थी धन्य वो उनकी जवानी जो

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मिले आपके अमूल्य सहयोग के लिए जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता है। आपके सहयोग से प्रदेश की सही और समग्र जानकारी संकलित हो रही है।
1: अब फरवरी 2027 में जनगणना के अगले चरण में भी आपके इसी सहयोग और सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा है। जनगणना 2027 बेहतर भविष्य की मजबूत नींव, जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: कजरा अखियां मलते मलते नैना मार गई रे।
1: राम और श्याम इस फिल्म का दो गाना था, मोहम्मद रफी आशा भोसले का गया, शकील बदायूनी के बोलों को सुरों में ढाला नौशाद ने, और यही थी सदाबहार नगमे कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

शुदा नमस्कार। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के ठीक 3:01 और 30 सेकंड हो रहे हैं और वक्त हो चला है कार्यक्रम मन चाहे गीत का। तो मन चाहे गीत कार्यक्रम में हम अपने सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज के कार्यक्रम को बिल्कुल ध्यान से सुनिए श्रोताओं, कहीं आपकी पसंद के गीत इसमें शामिल तो नहीं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

ब्लैकमेल, इस फिल्म में आपने सुना किशोर कुमार की आवाज राजेंद्र कृष्ण के बोल थे कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी और इस गीत को पसंद किया शाहू नगर यवतमल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल और चेतन मनवर, यहीं से रोशनी और बेबी प्रियांशी ने।

कमाल अमरोही की रचना थी गुलाम मोहम्मद की तर्ज, लता मंगेशकर की आवाज़ में पाकीज़ा फिल्म का ये गीत आपने सुना। इस गीत को पसंद किया अनिल इंदौर से, अनिल बामनिया, प्रमिला बामनिया, नंदनी मुस्कान, नीलम सावन, कृष्ण कुमार, ऋतिक कुणाल केतन और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने।

फिल्म मेला का ये गीत था मोहम्मद जफी और लता मंगेशकर का गाया। आर डी बर्मन की तर्ज थी, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे। जिला अहल्यानगर महाराष्ट्र से नंद कुमार अद्वंत, उर्मिला अद्वंत, निलेश मयूरी, कल्पेश और संगीता अद्वंत की ये फरमाइश थी और इसी गीत को पसंद किया। बेरखेड़ा उज्जैन से विनोद मुड़त, नेहा जैन, दीपक मयंक मुड़त और चेतन नाहटा ने।

कच्चे धागे फिल्म का ये गीत आपने सुना, लता मंगेशकर और हेमलता की आवाजें थी। अनजान का लिखा ये गीत था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। गांधीनगर चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार। घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र और पंचोलिया परिवार के सभी सदस्यों की ये फरमाइश।

आप सुन रहे थे मौसम फिल्म का गीत, लता मंगेशकर और भूपेंद्र का गाया, गुलजार के बोलते मदन मोहन का संगीत था। इस गीत को पसंद किया जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन, नजमा रियाज, शमरीन परवीन और मोहम्मद रिहान, और इसी गीत को सुनना चाहते थे जबलपुर से जिनेन्द्र जैन। और इस गीत के पहले श्रोताओं आपने कच्चे धागे फिल्म का गीत सुना था, आनंद बख्शी का लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी, लता मंगेशकर की आवाज थी। इस गीत के साथ ही आवाज का मन चाहे गीत कार्यक्रम संपन्न करने की संगीता श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: सुन रहे हैं विविध भारती।
1: नाट्य तरंग आज के इस कार्यक्रम में सुनिए नाटक अभिशप्त गांधार का दूसरा और अंतिम भाग। इसके लेखक हैं डॉक्टर शंकर शेष, निर्देशक सुदर्शन कुमार। तो आइए सुनते हैं नाटक अभिशप्त गांधार दूसरा और अंतिम भाग।

0: पांडव पांच गांव ही तो मांग रहे हैं महाराज, दुर्योधन से कहिए दे दे।
1: कह चुका हूँ।
0: तब?
1: नहीं मानता।
0: क्या कहता है?
1: उसका तर्क है, पांडवों ने अपनी धन संपदा राज्य सब कुछ द्यूत में हार दिया है। दासत्व से मुक्त होने के लिए पांडवों के लिए 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास की शर्त रखी गई थी। ये अवधि पूरी होने पर पांडव दासत्व से मुक्त होकर स्वतंत्र हो गए हैं। उन्हें उनका राज्य वापस लौटाया जाएगा ऐसी कोई शर्त नहीं थी। ऐसी स्थिति में उन्हें 5 गांव देने की बात कहां से उत्पन्न हो गई?
0: उसका तर्क अनुचित है क्या?
1: तर्क तो केवल तर्क ही है गांधारी, किंतु सत्य ये है कि कौरव और पांडव दोनों हैं तो एक ही वंश के, उनके बीच ईर्ष्या द्वेष वैमनस्य शोभा नहीं देते। यदि युद्ध हुआ तो जय पराजय किसी की भी हो, विनाश तो वंश का ही होगा।
0: तो फिर आप पांडवों को समझाइए कि वे भूमि के लिए हठ न करें।
1: कोई लाभ नहीं होगा।
0: क्यों?
1: उनकी ओर से समस्त निर्णय श्री कृष्ण लेते हैं।
0: वो क्या कहते हैं?
1: वो ही तो सारे विवाद के मूल में है। कहते हैं दूत में रखे गए पड़ों की कोई मान्यता नहीं, वो सब शकुनी का छल था।
0: छल? युधिष्ठिर ने स्वेच्छा से द्यूत क्रीड़ा में भाग लिया था। शकुनी की निपुणता और अपने दुर्भाग्य के कारण युधिष्ठिर पराजित हुआ, इसमें छल कहाँ है?
1: इस विवाद से कोई लाभ नहीं गांधारी, सर्वनाश से बचने का केवल एक उपाय है।
0: क्या?
1: दुर्योधन को समझा दो कि पांडवों को 5 गांव देकर उनसे मैत्री कर ली।
0: उस पर मेरा वश नहीं है, वो मेरी सुनता कहाँ है?
1: और इसके लिए कौन उत्तरदायी है? क्यों छुप क्यों हो गई? कुंती की क्यों सुनी जाती है? क्यों उसका प्रत्येक पुत्र उसके आदेश को वेदवाक्य मानता है?
0: फिर वही तुलना।
1: तुलना के अभिशाप से तुम बच नहीं सकती गांधारी। कुंती ने अपनी कटुता से मुक्ति पा ली, किंतु तुम?
0: कुंती के साथ मेरी तरह कोई छल नहीं
1: हुआ। क्यों नहीं हुआ था? कुंती जानती थी कि उसका होने वाला पति रोगी है। क्या उसके स्वप्न तुम्हारी तरह चूर चूर नहीं हुए? किंतु वे टूटी नहीं, उसने अपने दुख को जड़ता और संज्ञाहीनता का पर्याय नहीं बनने दिया। निराशा के मध्य भी उसने जीवन की एक सार्थक व्याख्या ढूंढी, जीवन को तुम्हारी तरह नकार नहीं दिया।
0: महाराज।
1: हाँ गांधारी, कुंती के बच्चे स्नेह और मातृत्व के प्रतीक हैं, तुम्हारे बच्चे घृणा और तिरस्कार की उपज हैं। यदि ये बच्चे द्रौपदी का वस्त्र नहीं खींचेंगे तो और कौन खींचेगा?
0: अभी कुछ नहीं बिगड़ा है महाराज, किसी प्रकार दुर्योधन को समझाइए, पांडव 5 गांव मांग रहे हैं, दे दे उन्हें।
1: दुर्योधन सुई की नोक बराबर भूमि भी पांडवों को नहीं देगा गांधारी।
0: इसका अभिप्राय ये हुआ कि युद्ध अवश्यंभावी है और युद्ध का अर्थ है विनाश, संपूर्ण विनाश।
1: यही विधि का विधान है तो इसे कौन रोक सकता है?
0: ईश्वर कल्याण करें।

0: आज युद्ध का प्रथम दिन है गांधारी, भयानक विनाशकारी युद्ध। संजय कहता है इस युद्ध में रक्त की नदियां बह जाएंगी, धरती वंध्या हो जाएगी।
1: विनाश को आमंत्रित करने का निर्णय हमारा तो नहीं,
0: किंतु हम इसके प्रभाव से अछूते भी नहीं रह सकते। जानता हूं ये निर्णय आत्मघाती है, परंतु विवश हूं गांधारी, कुछ कर नहीं सकता। लगता है संजय आ रहा है, युद्ध का समाचार होगा।
2: महाराज की जय हो।
0: क्या समाचार लाए हो संजय?
1: कोई आहत हुआ?
2: नहीं महारानी, आप चिंता क्यों करती हैं? कौरवों के साथ पितामह भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य जैसे महारथी हैं, उनकी सैन्य शक्ति भी पांडवों से अधिक है। आज तो युद्ध का पहला दिन था, दोनों दल बराबर रहे। सत्य तो यह है महारानी कि पांडव सेना आज पीछे हटी।
1: मेरे सब पुत्र तो सुरक्षित है ना संजय?
2: हाँ महारानी। राजन,
0: कहो संजय।
2: आज आपके 9 पुत्र मारे गए।
0: 9 पुत्र?
2: हाँ महाराज, जलसंध, सुषेण, उग्र, वीरबाहु, भीमरथ,

चित्रसेन उपचित्र सुचारु चित्राक्ष नंद और उपेंद्र मारे गए।

राज, दुर्मुख, दुर्जय, दुष्कर्ण, शत्रुंजय, बिंद। गांधारी, आपके पुत्रों की संख्या घटते घटते केवल दो रहती है।

0: संजय, मेरा दुर्योधन कहाँ है? जिससे पूछती हूँ वही चुप। कहाँ चला गया है मेरा बेटा?
1: जिस भीम ने आपके दूसरे पुत्रों का वध किया, उसने ही महाराज दुर्योधन का भी।
0: असंभव। दुर्योधन नहीं मारा जा सकता। मैंने उसे वज्र की देह दी है। संसार में ऐसे पुरुष का जन्म नहीं हुआ है जो दुर्योधन को मार सके। तुम असत्य बोल रहे हो संजय। कहो कि तुम असत्य बोल रहे हो।
1: नहीं महारानी, मैं सत्य बोल रहा हूं। भीम नहीं महाराज दुर्योधन की जंघा पर गदा से प्रहार करके उनके प्राण ली।
2: क्या?
0: जंघा पर प्रहार, नाभि के नीचे वार। संजय, यह अन्याय है, अधर्म है, पाप है।
2: निसंदेह ये विश्वासघात है, ये मर्यादा का उल्लंघन है।
0: संजय, सच सच बताना। सच बताने की तुमने प्रतिज्ञा की है। क्या मेरे पुत्र का वध षड्यंत्र के कारण नहीं हुआ? किसने किया ये षड्यंत्र?
1: देवी, महाराज दुर्योधन युद्ध से थककर एक सरोवर में विश्राम कर रहे थे। युधिष्ठिर और उनके भाई उन्हें खोजते हुए सरोवर तक पहुंचे। युधिष्ठिर ने उन्हें युद्ध के लिए ललकारा, कहा तुम पांचों पांडवों में से किसी एक को युद्ध के लिए चुन लो। यदि तुम विजयी हो गए तो तुम सारे राज्य के स्वामी हो जाओगे।
0: हाँ दुर्योधन, तूने भीम ही को क्यों चुना?
1: देवी, महाराज दुर्योधन ने अपने गदा कौशल से भीम को लगभग परास्त ही कर दिया था, परंतु
2: परंतु
1: कृष्ण ने अर्जुन को सांकेतिक भाषा में समझाया कि यदि भीम महाराज दुर्योधन की जंघा पर प्रहार करे तो विजयी हो जाएगा।
2: ये घोर नीति।
1: भीम ने कृष्ण का यह संकेत तुरंत भांप लिया और सिंह की भांति झपटकर जंघा पर प्रहार किया। महाराज दुर्योधन कटे वृक्ष के भांति भूमि पर गिर
0: पड़े। बस संजय, अब आगे कुछ मत कहो, एक शब्द भी नहीं। आज 100 पुत्रों की माता निसंतान हो गई। सब वेदनाएं सो गई। दुख की पराकाष्ठा ने मन को आवेगों से मुक्त कर दिया है।
2: फिर भी हमें जीवन का अभिशाप भोगना है गांधारी, एक अर्थहीन जीवन का अभिशाप। 100 पुत्रों की मृत्यु का आघात सहकर भी हमें अपने अस्तित्व का शव अपने कंधों पर धोना है। अपने ही पुत्रों के वधिकों को हमें दीर्घजीवी और यशस्वी होने का आशीर्वाद देना है। आंसू पोछो कांधरे, आंसुओं से भीगी पट्टी तुम्हें अधिक कष्ट देगी। उठो, उठो।
3: मैं वासुदेव कृष्ण माता गांधारी को प्रणाम करता हूँ।
0: वासुदेव कृष्ण, क्यों आए हो यहाँ? अब मेरा एक भी पुत्र नहीं बचा, किसे मारोगे?
3: शांत हो राजमाता।
0: राजमाता, श्री कृष्ण उपहास क्यों करते हो? तुमने कितनी माताओं से उनका मातृत्व छीन लिया, कितनी स्त्रियों से उनका पति छीन लिया। मैंने अपने इन कानों से सहसों स्त्रियों का आर्तनाद सुना है। अच्छा हुआ मैं कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पड़े शवों को नहीं देख सकी। पट्टी बांधने का उपयोग पहली बार समझ में आया।

0: देवी गांधारी, क्या मैंने युद्ध रोकने का प्रयत्न नहीं किया था? क्या मैं दूत बनकर आपकी राजसभा में नहीं आया था? किंतु आपके पुत्र ने सुनी ही कहा, राज्य लोभ द्वेष से पीड़ित उसकी आत्मा।
1: नहीं कृष्ण, नहीं, तुमने युद्ध रोकने का वास्तविक प्रयत्न किया ही नहीं। तुम चाहते तो ये युद्ध हो ही नहीं सकता था। तुम्हारा पराक्रम, तुम्हारी नीति और तुम्हारी हल्की सी धमकी इस युद्ध की महाज्वाला को रोक सकती थी।
0: देवी गांधारी,
1: कृष्ण, मैं तुम्हारा दर्शन समझती हूँ। तुमने देख लिया था कि वस्तु स्थिति सुधार से परे है। फटे आकाश को सीकर ठीक नहीं किया जा सकता। नए जीवन की भूमिका रचने के लिए विगत को क्रूर विदाई देनी ही पड़ती है। किंतु कृष्ण, जो बचे हैं उनके विषय में कभी सोचा तुमने? हम अब क्या करेंगे? किसका मुंह देख कर जिएंगे? बताओ।
0: मुझे क्षमा करो माता।
1: दुर्योधन बुरा होगा, दुशासन ने नारकीय कृत्य किए होंगे, पर मेरे 100 के 100 बेटे तो इतने बुरे नहीं थे। तुम चाहते तो उनमें से एक जीवित रह सकता था, एक। हम अंधों की लाठी तो नहीं छिनती।
0: माता, जो अवश्यम भावी है उसे कोई नहीं रोक सकता, न मैं और न आप।
1: नहीं, तुम रोक सकते थे कृष्ण, तुम रोक सकते थे, किंतु तुमने प्रयत्न नहीं किया। छल और प्रवंचना तुम्हारी सबसे बड़ी नीति रही है। वासुदेव, शापित जीवन की ज्वाला में झुलसी ये गांधारी तुम्हें शाप देती है। तुम्हारा समस्त वंश भी इसी प्रकार आपसी कलह में नष्ट हो जाए। जिस प्रकार छलकर तुमने मेरे पुत्रों को मारा है, उसी प्रकार किसी के भ्रम के कारण ही तुम्हारे भी प्राण निकले। जाओ, जाओ। मुझे किसी की सहानुभूति की आवश्यकता नहीं है। मेरी जड़ी भूत आत्मा और संवेदना से परे है।

0: मन करता है अब हस्तिनापुर से दूर कहीं अरण्य में चले।
1: क्या किसी ने कुछ कह दिया? कुंती ने, द्रौपदी ने?
0: नहीं, उनका व्यवहार इतना अच्छा है कि अपने पराश्रित होने की अनुभूति और गहरी हो जाती है। इससे मुझे अपने बच्चे अधिक याद आते हैं।
1: मैं समझ गया। ठीक है गांधारी, वंश परंपरा के अनुसार हमें वलकल धारण कर वन में जाना चाहिए।

0: अब निश्वास लेने से क्या लाभ गांधारी? हम लोगों की गृहस्थी जैसे चलनी थी चली, अब उसका स्मरण करके दुखी होने से क्या लाभ?
1: महाराज, मैं अपने दुखों के लिए उसास नहीं भर रही हूँ।
0: तब
1: यहाँ की खुली सुगंधित वाशु, पांव तले की असम धरती, उस पर वृक्षों की सूखी पत्तियों का स्पर्श, पास के वन से आ रही जंगली फूलों की गंध, कहीं पास ही कोई पहाड़ी झरना है, उसकी कल कल ध्वनि, न जाने क्यों सहसा गांधार की याद मन में उभर आई।
0: सत्य ही तो, एक ज्योतिहीन के गले बदने की यातना तुमने पूरे जीवन भर सही। कविता ही खो गई तुम्हारे मन की। मायके की याद आना कितना स्वाभाविक है।
1: मायके की याद? उसे तो मैं उसी दिन भूल गई थी जिस दिन गांधार की सीमा का त्याग किया था। मुझे तो स्मरण हो रहा है गांधार प्रदेश, उस भूमि का स्पर्श कितना सौम्य है।
0: गांधारी, हमने और तुम्हारे पितृ कुल ने तुम्हारे साथ कितनी बड़ी प्रवंचना की। विवाह से पहले मेरे अंधत्व की जानकारी तक नहीं थी तुम्हें। हमारे कुल ने तुम्हारे प्रति अक्षम्य अपराध किया।
1: महाराज, अब पुरानी बातों को दोहराने से क्या लाभ?
0: अब हमारे जीवन में मृत्यु के अतिरिक्त कोई नई बात तो होने से रही। पुरानी बातों की गश्ती को उलट पुलट कर ही समय के दबाव को कम किया जा सकता है। एक बात कहूं गांधारी, तुमने भी कम प्रतिशोध नहीं लिया। क्या आज भी पुरानी बातों को क्षमा नहीं करोगी?
1: महाराज,
0: सचमुच बहुत बड़ा दंड दिया तुमने। विवाह की पहली रात मुझे आज भी याद है। ओह, कितनी भयानक रात थी। मैंने तुमसे पट्टी हटाने के लिए कहा था और उत्तर में तुमने स्त्री धर्म, पातिव्रत्य, न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें कही थी ना?
1: हाँ, कही थी।
0: और उस समय मेरे मन में क्रोध उमड़ पड़ा था। इच्छा तो हुई थी कि उसी समय
1: आपने मेरी आंखों की पट्टी निकाल कर फेंक क्यों नहीं दी? आप केवल एक बार कह देते कि ये पति की आज्ञा है तो क्या मैं टाल सकती थी?
0: मैंने सोचा तुम धीरे धीरे मान जाओगी। जब दुर्योधन तुम्हारे सामने लाया गया, मुझे आशा थी कि तुम स्वयं पट्टी उतार फेंकोगी, किंतु तुमने अपना हठ नहीं छोड़ा।
1: आपने कभी कहा नहीं, आप राजा थे, उस अधिकार से ही।
0: तब तक बात सीमाएं पार कर चुकी थी, तुम महासती के रूप में विख्यात हो चुकी थी। तुम अपने ही बंधनों का दंड भोग रही थी।
1: महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं?
0: जो सत्य है वही कह रहा हूं। अब तो सब कुछ समाप्त हो चुका है। सुनो, एक प्रश्न का उत्तर बहुत प्रामाणिकता से देना। तुमने कभी मुझसे प्रेम किया? शरीर से परे एक अनिवार्य आवश्यकता के रूप में कभी तुमने मुझसे प्रेम किया? यदि शरीर धर्म का परिणाम ये बच्चे न होते तो क्या हम निकट आते?
1: महाराज, इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे पाऊंगी।
0: तुम्हारे उत्तर न देने में ही मुझे उत्तर मिल गया है गांधारी। जानती हो हम लोग कब सच्चे अर्थों में निकट आए? युद्ध में अपने पुत्रों के मारे जाने के बाद उस व्यथा ने हमें एक दूसरे के निकट पहुंचाया, एक दूसरे के अस्तित्व के लिए अनिवार्य बना दिया, और इसीलिए आज उस अनिवार्यता के बोध से
1: स्त्री मन की इतनी गहरी समझ रखते हुए भी आपने
0: कुरु वंश के पुरुषों ने स्त्रियों पर असंख्य अत्याचार किए हैं गांधारी, और उसका प्रायश्चित भी उन्होंने भोगा है। अंबा के शाप में भीष्म चलते रहे, तुम्हारे शाप में मैं जला, मेरी संतति जली। कुंती का विवाह भी एक पंगु से हुआ था, किंतु वो दूसरों से भिन्न थी। उसने अपना दुख निगल कर अपना प्रेम बच्चों पर उड़ेल दिया। इसी

0: लिए कांधारी, कुंती के पांच ही बेटे विश्व विजयी हुए। ओ प्यार की संतान है, मां का अमृत उन पर हरनिश बरसता रहा, और हमारे बच्चे केवल शरीर की उपज थे, केवल संख्या के पर्याय, इसीलिए वो सौ होकर भी नष्ट हो गए।
1: हमारे बच्चे संख्या के शिशु थे, उन्हें किसने प्यार दिया, किसने संस्कार दिए, किसने दिशा दी? हम अपराधी भी नहीं, हम है महाराज, हम है।
0: कांधारी देखो, मैं आज मैं ये सब इसलिए नहीं कह रहा हूं कि तुम्हारा मन व्यथित हो, किंतु किंतु जिस हठ धर्मी को लेकर तुम अपने आप से लड़ती रही हो, वो युद्ध संबंध हो। अपने से उठकर तुम सत्य का साक्षात्कार कर सको, मुझे नहीं तो कम से कम अपने आप को क्षमा कर सको, और कम से कम इस निष्कर्ष पर पहुंच सको कि एक अन्याय का प्रतिकार दूसरे अन्याय से नहीं होता।
1: महाराज, मेरे जीवन का प्रारंभ किसी राग के कोमल गांधार की तरह हुआ था, किंतु उसके वादी संवादी स्वरों का तालमेल कभी नहीं बैठा। पूरा राग बिखर गया और उनका स्थान ले लिया दिशाओं को बहरा करने वाले कोलाहल ने। किंतु महाराज, अब मन शांत है। आज मैं अपने सतीत्व को साक्षी रखकर कह सकती हूं, मैं आपसे प्रेम करती हूं।
0: कांधारी, लगता है पास का वन जल रहा है, उसमें आग लग गई।
1: आपको कैसे ज्ञात हुआ?
0: धुएं की गंध वायु के पंखों पर यहां तक आ रही है, मैं उसी ओर जा रहा हूं।
1: महाराज,
0: हाँ गंधारी, अभी तुमने अपने प्रेम की आत्म स्वीकृति थी, मन के सारे अभाव दूर हो गए। अब मन कैसा तृप्त है, इसी तृप्ति के साथ इस जीवन का भी अंत हो जाना चाहिए, एक तृप्तिमय अंत।
1: रुकिए रुकिए, मैं भी साथ चलूंगी।
0: तुम भी?
1: गांधार के स्वर भले विकृत हो गए, पर अब मन में नए राग के स्वर उभर रहे हैं। चलिए, इसी के सुर में, ताल लय में अपने जीवन को विसर्जित करते हैं।
0: चलो, तावानल बढ़ रहा है। आज प्रकृति ने ही हमारे लिए इतनी उदारता से चिता रचती है। जीने योग्य आदर्श स्थिति इस जीवन में कभी नहीं मिली। आज मृत्यु के योग्य आदर्श स्थिति मिली है, तो उसका परित्याग क्यों किया जाए? चलो गंधारी, थामो मेरा हाथ। इसी तरह चलो।
1: चलिए महाराज, इस ज्वाला में संकेत है परिवर्तन का, एक नए अध्याय के प्रारंभ का। समय हमारा बोझ उतार कर

अभी आपने सुना डॉक्टर शंकर शेष के लिखे नाटक अभिशप्त गांधार का दूसरा और अंतिम भाग। इसका निर्देशन किया सुदर्शन कुमार ने। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र की प्रस्तुति आपने सुनी। इसी के साथ आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से सुनिए फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश प्रत्येक गुरुवार और प्रत्येक शनिवार को रात 8 बजे। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक गुरुवार को दिन में 12 बजे से दिन के 1 बजे तक। हमारे फोन नंबर्स हैं 015-82-240-168। वैसे तो ये प्रोग्राम सभी श्रोताओं के लिए है, लेकिन हम स्थानीय नागौर जिले के श्रोताओं को प्राथमिकता देते हैं। तो हो जाइए तैयार अपनी फरमाइश हमें भेजने के लिए और कीजिए फोन हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है हेलो फरमाइश।
1: ऐतिहासिक कहानियां सुनाई देती हैं और स्वतंत्रता संग्राम की

0: छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव।
1: जी हाँ, अपने जमाने के सुप्रसिद्ध गीतकार और गायक कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप की मंदाकिनी जोशी से बातचीत हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज सुनिए इस बातचीत का तीसरा और अंतिम भाग।
2: दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ मंदाकिनी जोशी। आज उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में हम कवि और गीतकार प्रदीप जी को याद कर रहे हैं, इसीलिए आज विविध भारती के स्टूडियो में ठीक हमारे सामने बैठी हैं गीतकार और कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप। स्वागत है आपका मितुल जी विविध भारती के इस स्टूडियो में।
3: बहुत बहुत आभार जो आज आपने मुझे यहाँ बुलाया।
2: मितुल जी, हम उनके गीतों की बात कर रहे हैं, देशभक्ति गीतों की, साथ ही उन्होंने बहुत सारे भजन भी लिखे हैं प्रदीप जी ने, जिन्हें हम सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन सा भजन ज्यादा अच्छा है या कौन सा कम है, तो आप बताइए कि भजन लिखने की जो उनकी आदत थी वो कैसे पड़ी और किस तरह से भजन की दुनिया में भी उन्होंने बहुत ही खूबसूरत भजन लिखे।
3: उनकी माँ के द्वारा जो लोकगीत गाए जाते थे, भजन गाए जाते थे, वो भी उन्होंने बहुत आत्मसात किए बचपन से। तो भजन की आदत तो उनको भगवान के प्रति आस्था, भगवान के प्रति प्रेम। लेकिन आपको एक बात ये बताऊं कि भगवान उनके लिए कौन थे? अदृश्य शक्ति। ये नहीं है कि वो मंदिर जाएंगे या वहां जाके कुछ पूजा करेंगे, वो पूजा पाठ में बिल्कुल नहीं मानते थे, रिचुअल्स में नहीं। लेकिन उनके लिए आकाश में बैठा वो भगवान था जो उनकी बात सुनते हैं। अगर कभी आप सुनेंगे उनके गीत तो वो भगवान को भी ऐसे संबोधित करते हैं कि जो वो अपनापन से करते हैं। अगर आप ऊपर देख के ये कहे कि सूरज रे जलते रहना, रे हाँ, तो ये रे जो है ना वो एक प्रेम का संबोधन है। तो उन्होंने भगवान को भी ऐसे ही संबोधन किया और गाने भी और भजन भी बहुत पॉपुलर लिखे। उनकी शुरुआत का एक भजन था, मैं तो आरती उतारू राधे श्याम की रे, राधे श्याम की रे मुक्ति धाम की रे, ये उनका शुरुआत की पहला भजन था फिल्म के लिए। और उसके बाद में अगर आप आगे चले तो मैं तो आरती उतारू रे संतोषी माता की,
2: वो तो बहुत पॉपुलर था।
3: तो भजन लिखने में और मदद करो संतोषी माता, तो उनको भगवान के प्रति जो था ना वो भी आस्था मन से आती थी, ना कोई मंदिर में जाके। तो कई भजन ऐसे है और बैठ के लोग सुनते हैं तो वो भजन भगवान के भजन है। हरि दर्शन फिल्म आई थी उसमें बहुत सारे भजन थे, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, वो भी एक बहुत पॉपुलर गीत था।
2: बिल्कुल,
3: बहुत सारे हरि दर्शन फिल्म के गाने हैं जो भजन है।
2: तो घर का माहौल कभी ऐसा हुआ कि आप बहनों ने मिलकर भी उन भजनों को गाया अपनी माँ के साथ?
3: बहुत बार, माँ के साथ तो नहीं, माँ तो नहीं गाती थी।
2: अच्छा।
3: माँ तो कहे कि मैं तो इनके सामने कुछ नहीं गाऊंगी हम गाते थे
2: अच्छा।
3: तो जय जय नारायण नारायण हरि हरि, वो हमको बहुत अच्छा लगता था।
2: तो मितुल जी आप कहें तो ये गीत हम आपको सुनवा दें।
3: जरूर सुनवाइए।

0: मितुल जी, कभी पिता के साथ बैठकर बात करने का मौका मिला?
1: घर में तो हम लोग साथ में ही रहते थे ना, तो उसमें बातचीत तो रोज ही होती थी, और रोज बातचीत होने में जनरली मजाक भी बहुत करते थे।
0: अच्छा।
1: हाँ, उनको आप अगर देखें तो उनका जो स्वभाव था, खुलकर हंसते थे। हंसना उनका इतना खुलकर था, जो एक बच्चों की तरह हृदय जो साफ रहता है ना, वैसे ही इंसान ऐसे हंस सकता है। तो बैठ के बातचीत का तो बहुत मौका मिलता था, लेकिन जनरली बातचीत होती थी तो माँ के खिलाफ होती थी।
0: अच्छा।
1: आज तुम्हारी माँ ने जो दाल में हींग अच्छी नहीं डाली।
0: अच्छा जी।
1: और माँ वहां पर खड़े होके सुनते हैं, तो बेटा आज का जो खाना था वो थोड़ा सा हींग ठीक नहीं थी, फिर मजाक में हर एक बात में, तो वो चीज माँ को बहुत मन में खटका देती थी।
0: अच्छा।
1: हाँ ठीक है, मतलब
0: हाँ।
1: वो भी मजाक में, लेकिन वो बोलते ठीक है, आज हींग ठीक नहीं हुई ना, ठीक है, तो अब तुम ना आप एक काम करिए कि आप मालवा से ही हींग मंगा लो। तो वैसी ही बातचीत बैठ बैठ के हंसी मजाक चलती थी। और काफी कुछ बातचीत तो काफी होती थी, जैसे घर में परिवार में होती है।
0: कभी प्रदीप जी ने आप बच्चों से पूछा हो भी पढ़ाई कैसी चल रही है, पढ़ने में कैसे हो, कुछ लिखते हो पढ़ते हो? मेरी तरह कुछ कविताएं लिखने की आदत है तुम लोगों में, क्या कभी ऐसा भी कहा उन्होंने?
1: नहीं, उन्होंने कहा कभी लिखना नहीं,
0: अच्छा।
1: जो करना हो दूसरा कुछ करो, लिखना और फिल्म इंडस्ट्री के बारे में मत सोचना, और लिखना कभी तो कभी नहीं बनना, ऐसा उन्होंने कहा कि भाई आपको ठीक है, मैं बहुत हो गया, अगर पैसे कमाने हैं तो इसमें मत पड़ा, कुछ और काम करना। तो फिर मैंने और कुछ काम किया, और तब भी उनको थोड़ा सा बुरा लगा था जब मैंने अपना काम शुरू किया, पेंटिंग करना, लोगों को सिखाना, ड्राइंग सिखाना।
0: तो उन्हें बुरा क्यों लगा?
1: हाँ, तो यही बात है कि उनको बुरा क्यों लगा। बोलते कवि प्रदीप की बेटी है और वो बाहर जाके पैसे कमाएगी।
0: अच्छा।
1: हाँ, तो वो उनको जैसे तब एक ट्रेडिशनल पिता उनके मन में जागृत हुआ कि भाई ये काम आप क्यों करेंगी।
0: हाँ, लेकिन तब तक आप भी बड़ी हो गई थी,
1: मैं तो
0: आपकी भी
1: बड़ी
0: अपनी
1: हो
0: एक
1: गई थी।
0: दुनिया बन चुकी थी, आपके भी अपने सपने थे, अपने शौक थे।
1: हाँ, तो तब माँ ने कहा कि नहीं, हमें तो उसको अपने पैरों पे खड़ा करना है, उसको अगर ये अच्छा लगता है और वो उसमें आगे बढ़ना चाहती है तो क्या हुआ। तो ये कोई थोड़ी कहेगा कि ये प्रदीप जी की बेटी है तो क्यों पैसे बाहर जाके कमाएगी। जाएगी बाहर जाके, मैं बहुत सारी डेमोन्स्ट्रेशंस देती थी कॉलेजेस में, स्कूल्स में। उसके बाद में उनको लगा कि नहीं नहीं ये तो अच्छा कर रही है, तो फिर कोई भी आएगा उनके पास तो उनको लेके आएंगे कि देखो मेरी बेटी का ड्राइंग, देखो देखो मेरी बेटी ने आज ये पेंटिंग बनाया,
0: भीतर
1: वो फिर
0: होता है,
1: गर्व
0: वो
1: महसूस करने
0: महसूस
1: लगे।
0: किया। मितुल जी, कहते हैं कि महाकवि निराला भी उनकी कविताओं और उनकी आवाज की प्रशंसक थे, क्या ये बात सच है?
1: बहुत सच है, क्योंकि निराला जी ने उनमें एक स्पार्क देखा, मतलब एक ऐसा कवि देखा जो बहुत सालों के बाद एक ऐसी भाषा यूज कर रहा था, और छायावाद वगैरह जो है, तो निराला जी ने वो सुना उनकी कविता और उन्होंने उनके ऊपर पूरा एक आर्टिकल लिखा कि ये नवीन कवि प्रदीप जो आगे चल के बहुत आगे बढ़ेगा, ऐसा।
0: जी। तो जैसा कि हम कह रहे हैं कि उन्होंने देशभक्ति गीतों को बहुत लिखा, बहुत बड़ी तादाद में उनके भजन हम देखते हैं, क्या कभी उन्होंने रोमांटिक गीत भी लिखे प्रदीप जी
1: हाँ,
0: ने?
1: रोमांटिक गीत भी अच्छे अच्छे लिखे हैं, और वो भी इतनी अच्छी भाषा में लिखे हैं कि कोई भी कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता है कि ये कोई वल्गर बात आई। प्रेम की बात भी उन्होंने कितनी अच्छी की है
0: खूबसूरती
1: कि
0: के
1: मेरे
0: साथ।
1: जीवन में किरण बन के बिखरने वाले,
0: तो
1: बोलो तुम
0: तुम
1: कौन
0: कौन
1: हो,
0: हो?
1: बोलो तुम कौन हो।
0: क्या बात है,
1: हाँ,
0: क्या बात
1: तो
0: है
1: मेरे जीवन में किरण बन के बिखरने वाले, कितना
0: जी।
1: सुंदर से उन्होंने संबोधन किया है प्रेमी को। या फिर दूसरा है कि ना जाने कहाँ हम थे, ना जाने कहाँ
0: तुम
1: तुम।
0: थे।
1: हाँ, तो ये भी बहुत सुंदर सुंदर है। और एक हल्का फुल्का सा गाना भी है जो जगदीप के ऊपर फिल्माया गया था, ओ दिलदार बोलो एक बार
0: क्या मेरा
1: क्या
0: प्यार
1: मेरा
0: पसंद है
1: प्यार
0: तुम्हें?
1: पसंद है। तो ये भी कितना सुंदर सुंदर से
0: बहुत
1: गीत है,
0: बहुत स्वीट।
1: और कभी भी कोई भी इसको गा सकता है,
0: हर पल के गीत है
1: हर
0: ये, हर
1: पल के। तो
0: मौके
1: ये
0: के गीत है।
1: रोमांटिक गाने भी उन्होंने
0: जी
1: लिखे,
0: जी
1: और ज्यादातर युगल गीत थे ये।

0: आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि हम अभी रोमांटिक गाने उनके सुने भी सही और बात भी की हमने।
1: जी जी बिल्कुल।
0: उन्होंने कविता शुरू की थी रोमांटिक कविताओं से, और उसके बाद में जो है उनको देशभक्ति की कविता लिखने का मौका मिला और फिर उन्होंने उसी लाइन पे अपनी कविताएं लिखी। तो एक रोमांटिक उनकी कविता बहुत शुरू शुरू में थी और वो है, मेरे छंदों के बंद बंद में तुम हो प्रिय, तुम हो इन बरन बरन के विहंगों का कल कूजन, क्यों बरबस हर लेता है जन जन का मन, मैं खोज रहा था इस मिठास का कारण, हंस दिए तभी तुम, हुआ रहस्योद्घाटन।
1: क्या बात है।
0: और तुम मेरे काव्य स्वस्तिकों के कुमकुम हो, मेरे छंदों के बंद बंद में प्रिय
1: तुम हो। क्या बात है।
0: तो ये
1: रुमानियत,
0: रुमानियत
1: गहरी गहरी
0: कितनी गहरी। तो मतलब ये है कि तुम मेरे काव्य स्वस्तिकों के कुमकुम, मतलब काव्य का जो स्वस्तिक है
1: उसके
0: कुमकुम हो।
1: बहुत सुंदर, जिस तरह से उपाधियां दी हैं वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से प्रदीप
0: तो
1: जी ने।
0: ये भी उनकी एक कविता है जो रोमांस पे है
1: जी। और ये खासियत है कि इतना बड़ा कवि, जो कि जन जागृति जिन्होंने पैदा कर दी, जिन्होंने देश प्रेम लोगों के दिलों में पैदा कर दिया, वो कभी रुमानियत के उस माहौल में भी थे जहाँ रुमानी कविता उनकी कलम से निकली, रुमानी गीत निकले इतने शानदार तरीके से, जिन्हें हम आज भी गुनगुनाते हैं। तो हम बात करते हैं 1997 की, बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष था कवि प्रदीप जी के लिए, बताइए कैसे।
0: उनको 1998 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला, जो 1997 का दादा साहेब फाल्के गिना जाएगा
1: जी,
0: लेकिन जब मिला तो वो इसमें मिला 98 में
1: जी।
0: दादा साहेब फाल्के अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है फिल्म इंडस्ट्री के लिए, लेकिन तब भी वहां के जो आयोजक थे वो थोड़े चिंतित थे।
1: किस बात पे?
0: क्योंकि प्रदीप जी ने बीच में ये बोल दिया था कि मैं कोई अवार्ड नहीं लूंगा
1: जी,
0: तो उन्होंने कहा कि हमको चिंता है कि हम तो आपको दे रहे हैं लेकिन आप आएंगे कि नहीं आएंगे
1: जी।
0: फिर हम परिवार वालों ने उनसे बहुत विनती की कि नहीं बापू, आपके लिए नहीं, हमारे लिए आप ले लीजिए, क्योंकि ये हमारा भी गौरव बढ़ाएगा और आपको मिलेगा तो ये हमें अच्छा लगेगा। तब उनकी तबीयत ठीक नहीं थी
1: जी।
0: और उनको लगता था कि मैं उतने दिल्ली तक नहीं जा पाऊंगा, तो हम सब ने कहा कोशिश करेंगे, आपको अच्छे से ले जाएंगे, व्हील चेयर में ले जाएंगे। तो ये पहली बार हुआ कि स्टेज के ऊपर व्हील चेयर में लेकर के दादा साहेब फाल्के अवार्ड लेने के लिए कोई व्यक्ति को लेके गए, और आगे चल के प्रेसिडेंट आए। प्रेसिडेंट कभी भी आगे नहीं चलते हैं, वो वहीं खड़े रहते हैं।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन जैसे ही उनकी व्हीलचेयर लेके हम अंदर गए तो आगे चल के प्रेसिडेंट आए देश के, और उन्होंने उनको सम्मानित किया। और पहली बार हुआ कि जब स्टेज पे वो गए तो दूर हटो ये दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है पूरे उसमें गूंजा।
1: क्या बात है।
0: विज्ञान भवन में कार्यक्रम था और वो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि तब गाना बजाया जाता है, तो वो नियम को तोड़ा गया। उस स्टेज पे हम लेके गए उनको और वो गाना बजा, और आप नहीं मानेंगे उस वक्त भी खड़े खड़े खड़े लोग रोए हैं
1: जी।
0: और ये मुझे शत्रुघ्न सिन्हा जी ने भी बताया कि हम रोए, यश चोपड़ा जी वहां खड़े थे, वो बाद में दौड़ के आए कि प्रदीप जी आज आप

0: आपने हमको भी रुला दिया,
1: जी
0: वो भी ऑडियंस में थे।
1: जी, और कभी प्रदीप जी के चेहरे पर कहीं सुख और संतोष के चिन्ह नजर आए ना, कि वो संतुष्ट थे?
0: वो संतुष्ट थे और उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ तुम लोगों ने मुझे कहा, नहीं तो मैं इसको भी मना कर देता, लेकिन ये मेरी आखिरी जीवन की पड़ाव में ये मिलना मेरे लिए बहुत मेरा भाग्य है।
1: जी बिल्कुल, तो बताइए कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगी आप?
0: जो भी आपके पास हो, अगर मेरे जीवन में किरण है तो वो करवा दीजिए।
1: चलिए सुनते हैं, ये बेहद खूबसूरत,
0: बहुत सुंदर गीत है।

0: मितुल जी, जब बात चल रही है कवि प्रदीप जी की, तो कविता और लेखन तो खैर उनका मुख्य काम था जिसमें वो बह रहे थे, और कहें कि उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, लेकिन इसके अलावा जब वो कविता नहीं लिखते थे, लेखन नहीं करते थे, तो क्या करते थे? उनके और क्या क्या शौक थे जो आपको समझ आए?
1: उनको गार्डनिंग का बहुत शौक था।
0: हाँ,
1: तो हमारे ऊपर टेरेस है, तो उस पे वो चले जाते थे और कई चीजें, जैसे उनको लगा कि ये पत्ते ठीक नहीं है, वो काटते थे। दो दो तीन तीन घंटे तक ऊपर गार्डन में अपना बिताते थे, और नीचे भी हमारे पास जितने भी आज बड़े बड़े ट्रीज हैं, वृक्ष हैं, आम के चार हैं, दो नारियल के हैं, जांबू, जांबू समझते हैं आप, सफेद वाले, जिसको आप क्या बोलते हैं पता नहीं, सफेद जामुन।
0: हाँ,
1: काले नहीं, सफेद
0: सफेद।
1: खैर एनीवे, वाटर एप्पल ऐसे कुछ बोलते हैं, जो भी होगा। उसके जितने भी हमारे गार्डन में आज जो हमारे वृक्ष हैं, वो सब मेरे पिता ने लगाए हुए हैं।
0: क्या बात है।
1: जब हमारा घर बना, तब पूरा आसपास में ये बड़े बड़े वृक्ष आज खड़े हैं। तो गार्डनिंग का शौक, और वो जो देखते थे कि कहीं आम के पेड़ में कहीं कीड़े तो नहीं लग गए,
0: अच्छा,
1: तो वो उसको दवाई देना, ये करना, चाहे वो खुद ना दे, माली के पास करवाना। तो आज जो वृक्ष खड़े हैं वो मेरे पिता के कारण खड़े हैं।
0: क्या बात है।
1: और एक कड़ी पत्ता, उसका एक छोटा सा लाए थे वो प्लांट, और आज बहुत बड़ा हो गया है, और वो आज भी है उनका लगाया हुआ।
0: जी, उनकी याद दिलाता होगा।
1: हाँ, तो सभी मतलब वृक्ष जो है उनकी याद दिलाता है।
0: हाँ, तो जब हम आपसे बात कर रहे थे, आपने कहा कि आपका घर ऐतिहासिक है, और कवि प्रदीप जी ने बहुत ही शौक के साथ उस घर को बनाया, बहुत रुचि के साथ। तो बताइए, ये क्या है, किस तरह से उन्होंने अपने मकान को बनाया, क्या किया?
1: मकान को उन्होंने खड़े होकर के एक एक ईंट को देख के, उनको जैसे लगवा रहे थे तो वह खड़े रहते थे। ये नहीं कि उनको उन्होंने दे दिया कि आर्किटेक्ट को कि आप बना लो, नहीं। रोज सवेरे से शाम खड़े रहते थे कि ये यहाँ गलत हो रहा है, ये गलत है, ऐसे करो, ये मजबूत चाहिए, सीमेंट। आज भी हमारी जितनी भी दीवारें हैं उसमें कील भी नहीं ठोक सकते आप।
0: अच्छा,
1: इतनी मजबूत है।
0: क्या बात है,
1: इतने सालों के बाद। तो उनका मतलब ये है, हमारे लिए तो ये बहुत बड़ा मंदिर है, घर नहीं है, मंदिर है।
0: मंदिर है जी, जो उन्होंने बहुत ही आत्मीयता के साथ
1: जी
0: उसको खड़ा किया।
1: हाँ
0: जी, मितुल जी, आज हमने इस कार्यक्रम में आपके पिता पर एक लंबी बातचीत की है। अब हम आपकी जिंदगी पर भी आते हैं। आपने ये तो बताया कि आपने लेखन को क्यों नहीं अपनाया, आपने कविता को क्यों नहीं अपनाया, लेकिन हम ये जानते हैं कि आप एक जानी मानी चित्रकार हैं, और चित्रों के प्रति एक आपकी जो रुचि है उसका भी उदाहरण देखने को मिलता है। तो ये रुचि आपके मन में कैसे आई, ये रुचि कैसे पैदा हुई, और किस तरह की आर्ट आप बनाती हैं, हमारे श्रोता ये जानना भी चाहेंगे। जैसा आपने कहा कि आप घर से निकली थी, पिता ने एक बार विरोध भी किया था, लेकिन जब उन्हें पता चला कि आप बहुत अच्छी कलाकार हैं, तो उन्हें आप पर गर्व भी महसूस हुआ।
1: ऐसा है कि मैं करीब 44 साल से पेंटिंग सिखाती हूँ।
0: जी
1: जी, और मेरा आर्ट सेंटर है तुलिका आर्ट सेंटर, जिसमें बहुत सारे लोग सीखने के लिए अभी भी आते हैं। और जब मैंने शुरू किया 1982 में, तब भी लोग बहुत सारे आते थे, आज तक आते हैं। कैसे शुरू हुआ?
0: जी,
1: मैं जब छोटी थी, दो तीन साल की या चार साल की रही होगी, मेरी माँ ने मेरे हाथ में कलम थमा दी कि ये लो, इस पे तुम स्वस्तिक ड्रॉ करो। एक कागज दिया और एक पेंसिल दी और कहा कि स्वस्तिक निकालो। तो वो पहली बार था कि जो छोटे बच्चे ने लाइन कर करके स्वस्तिक ड्रॉ किया।
0: जी,
1: मेरी माँ खुद बहुत अच्छी कलाकार थी, बहुत बढ़िया, मतलब मैं कुछ भी नहीं हूं उनके सामने, इतना ब्यूटीफुल उनका आर्ट था, इतना अच्छे अच्छे से वो ड्राइंग्स बनाती थी। उनमें से मुझ में आया
0: जी,
1: तो पिता का लिखना या गाना नहीं आया, लेकिन माँ का जो, माँ की कला है वो मुझ में आई, तो वो जीन्स में आया। तो वहां से शुरू हुआ। फिर हर रंगोली निकालना, हर एक दिवाली के दिन या कोई भी अच्छा शुभ दिन हो तो लो बेटा ये लो, हाथ में पाउडर दे दिया, अब मोर करो, ओम लिखो, श्री लिखो, माता के पैर बनाओ, माता की जो होते हैं ना लक्ष्मी के,
0: नवरात्रा में मनाते हैं, दीपावली में,
1: दीपावली में, तो वो सबसे शुरुआत हुई मेरी। लेकिन जब मैं स्कूल में पढ़ती थी या कॉलेज में पढ़ती थी, तब मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं रहा, मुझे कुछ और करना था। मुझे
0: ये तो आपने बचपन की बात बताई, जब माँ आपको ऐसा कहा करती थी।
1: लेकिन बीच में मेरा वो बिल्कुल चला गया कि मुझे कुछ करना है, ड्राइंग नहीं, नहीं मुझे वो मजा नहीं आता है, मुझे लॉयर बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे कुछ और कुछ करना है। तो पढ़ाई चलती रही, लेकिन उस बीच में मुझे ऐसा हुआ कि एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कलर्स बनाती है, उनकी मालकिन मिली
0: जी,
1: बोलती है आपका ड्राइंग तो बहुत अच्छा है, सुना है। मैंने बोला हाँ वो तो है। तो कहा कि क्यों नहीं आप सिखाते हो, हमारे 40 महिलाएं हैं,
0: हाँ
1: उनको हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सिखाइए, हमारी टीचर नहीं है। मैंने बोला मैं सिखा तो नहीं सकती हूँ। बोलती नहीं सिखा पाओगे, कोशिश तो करिए। और वो तब की बात है जब पिताजी ने विरोध किया, उन्होंने कहा 40 महिलाएं हैं, आप देखिए कोशिश करिए सिखाइए। मैं बोला ठीक है कोशिश करते हैं। क्या करना था, कपड़े पे फैब्रिक पेंटिंग करना था, कपड़े के ऊपर पेंटिंग करना था। उन्होंने कहा ये रहा हमारे पास कलर्स हैं, हमारे पास तुलिका है, मतलब ब्रशेस हैं, आप आइए सिखाइए। कैसे सिखाना, हमने कोशिश की, सब खुश हो गए, मैं सक्सेसफुल हो गई सिखाने में।
0: जी जी
1: तो वो भी मेरे अनायास हुआ है, जैसे कहते हैं ना कि जो एक लिखा हुआ होता है आपके, क्या कर्म है आपके कर्मों में, मतलब जो लिखा हुआ है डेस्टिनी में वही हुआ। जब मैं पैदा हुई थी तो ज्योतिष ने कहा था कि ये टीचर बनेगी।
0: अच्छा।
1: तो वो टीचर तो नहीं बनी स्कूल की, लेकिन मैं दूसरी टीचर बन
0: जी
1: गई।
0: जी
1: तो वो पहली बार था, वो 40 महिलाएं खुश हो गई, वो जो कलर बनाने वाली कंपनी के वो लोग थे वो खुश हो गए, बहुत बढ़िया आपने बहुत अच्छा सिखाया, और हमारे पास लोग हैं उनको भी सिखाइए, हमारे वहां डेमोन्स्ट्रेशन दीजिए आप पेंटिंग के। तो ये ऐसे शुरू हो गया। तो मेरी पढ़ाई तो मैंने कंप्लीट की, मैंने लॉ भी कंप्लीट किया, मैंने ग्रेजुएशन भी किया।
2: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती FM बैंड 103.7 MHz पर, ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। शाम के 4:30 बजे हैं। श्रोताओं अब आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती बाड़ी।

खेतीबाड़ी कार्यक्रम सुनने सगळ्या किसान भाया ने बाया ने और उन्ने नाने ना टाबरा ने आपरा राकेश बहिरा घना हेतु कोडू राम राम भाया आ चौपाल कन्ने आयोजन बादला डेरा गल्योड़ा हा अगुण है जिको गेरी गेरी भीरका आयोड़ी हीर कल रात रा भी है जिको कई गांवा रे मायने तूफान भी आयो और सागे छांटा छिड़का भी हुआ हा और कटे कटे है जिको क रूखड़ा है अपन बिजली रा खंबा है बे भी पड़ गया और कटे कटे है जिको के टेण भी उड़ गया तो अपन है जिको के अपा का जिका ढाव डांडा बांधा बे टेण है जिको माथे छोको भार रखनो और या पछे है जिको ब्यान है जिको नटो है जिको छोको कसा देनो चाहिए ताकि बे है जिको आंधी तूफान है जिको मुकाबलो कर सके। पण अबार है जिको मारा किसान भाई है जिको बिजई में लाग्योड़ा है अबार चारू उमेर खेतार मायने ट्रेक्टरा रे चालन री आवाज आ रही है बरसात के मायने अपारे खेती रे सागे सागे वृक्षारोपण भी आपा कर सका। वृक्षारोपण है जिको चौमासा के मायने ही ज्यादा पनप्या करे वृक्षारोपण हुए काई आपा किसान भाइया ने तो सब ध्यान है पण आपा आज बातचीत भी कर ला। वृक्षारोपण को अर्थ है पेड़ ने लगावणो। आ एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिका पर्यावरण ने है जिको स्वस्थ राखण और विभिन्न प्रकार का आपा ने जिको फायदा प्रदान करण में मदद करया करे। वृक्षारोपण लाभ गणी है कि ज्ञान पहलो है पर्यावरण संरक्षण वायु ने आपा है जिको शुद्ध करे मिट्टी के कटाव ने रोके वन्य जीवा के आवास है जिको वो प्रदान करे कौन करे वृक्षारोपण यानी कि जटे ज़्यादा पेड़ हो बटे वन्य जीव जंतु भी घना हो। और दूसरो है जलवायु परिवर्तन को मुकाबला यानी कि पेड़ है जिको कार्बन डाइऑक्साइड ने अवशोषित कर और अपन ऑक्सीजन देवे और साथ ही ग्रीन हाउस गैस है और जलवायु परिवर्तन में भी आपा के जिको वृक्षारोपण योगदान देवे। और सामाजिक लाभ वृक्षारोपण समुदाय ने जिको एक साथ लावे और साथ लोगों के मायने पर्यावरण जुड़न में मदद भी करे। आर्थिक लाभ भी है वृक्षारोपण है जिको आपा के लकड़ी है फल है जड़ी बूटियां हैं और अन्य उत्पादा में उत्पादन कर सका जिको आपा ने जिको आर्थिक लाभ भी मिले। जैव विविधता भी बढ़ावे जल की गुणवत्ता में भी सुधार करे रोजगार में भी बढ़ोतरी हुए तापमान ने नियंत्रण करण में भी आपा के जिको वृक्षारोपण मदद करिया करे। वृक्षारोपण करण है जिको तनाव में कमी आवे और खुशी बढ़न में है जिको मदद करिया करे। आपा ने है जिको कि कणी भी टेंशन हुए ना बी टाइम आपा ने एक रूखड़ो पौधो लेनो और पौधो है जिको लगा और बिना आपा खोदर आपा पौधो लगावार पानी पावार थोड़ो ध्यान रखा तो आपा की बात टेंशन है जिकी तनाव है वो कम हो जाए। इरे अलावा है जिको ज़्यादा वृक्षारोपण हुए बट पर्यटन भी ज़्यादा हुए और पर्यटन ने बढ़ावा मिले जाने बट जिका स्थानीय लोग बयाने रोजगार भी मिले। प्राकृतिक आपदाओं ज्ञान बाढ़ है भूस्खलन ज्ञान की जोखिम ने भी है जिको वृक्षारोपण कम करया करे। सुंदरता भी बढ़ावे छाया भी मिले और आपा के सबू बढ़िया है कि भू जल स्तर ने बढ़ाने में है जिको वृक्षारोपण मदद क्रिया करे। इरे अलावा है जिको प्रदूषण में भी कमी करे वर्षा लाउण में भी मदद क्रिया करे और आपा को सबको भविष्य है जिको सुरक्षित कुण करी वृक्ष ही करी। वृक्षारोपण करण को तरीको भी हुए कि ज्ञान आपा है जिको नर्सरी पौधा प्राप्त कर सका या आपा बीज भार है जिको कम खर्चीला तरीकों भी आपा है जिको वृक्षारोपण कर सका लेकिन ए बीजू आपा जे भावा तो भी में टेम है जिको घणो लागे। इरे अलावा पौधा ने स्थानांतरित करना यानी कि पौधो एक जगह लागूड़ो तो भी ने दूसरी जगह माते आपा स्थानांतरित भी कर सका वो भी है जिको वृक्षारोपण को एक तरीको है। वृक्षारोपण आपा क्यान करा सब पहले तो आपा ने जिको खाडो खोदनो चाहिए वृक्षारोपण के आधार पर आपा ने के भाई पेड़ की

0: जड़ कित्ती है। बी रो दुगुणों तिगुणों या चार गुणों अपन उतलो है जिको खाडो खोद देना चाहिए, और तल के मायने है जिको मिट्टी ने है जिको ढीली कर देनी चाहिए। खाद या कंपोस्ट जान की है जिको कार्बनिक पदार्थ अपन ने डालना चाहिए। पेड़ ने जिको सावधानी हुए जिको पौधा ने और है जिको गड्ढा के मायने लगाना चाहिए, और गड्ढा के मायने जिको मिट्टी पौधा के आसपास है जिको समतल कर और धीरे धीरे है जिको दबावनो चाहिए। रोपण के बाद है जिको पेड़ ने अच्छी तरह हुए जिको पानी देना चाहिए, और साथ सुरक्षा के वास्ते जाली या कांटेदार बाड़ या कांटों है जिको बिना सुरक्षित करना चाहिए, और सारा वास्ते है पौधा ने या पेड़ ने है जिको एक लकड़ी लगा देनी चाहिए। खाली पेड़ लगाए की कोनी हुए टेमो टेम भी ने पानी भी आपने देवनो चाहिए। सावधानी आपने का करना चाहिए कि भाई पेड़ पौधा है जिको घर आप के घरों या इमारतों या रास्तों थोड़ा दूर लगाना चाहिए जिससे ए बयाने नुकसान नहीं हुए। जलवायु और मिट्टी के अनुसार ही पेड़ आपने लगाना चाहिए कि भाई आप के नागौर के मायने जहाँ लगाओ तो नागौर के मिट्टी मायने नागौर के पर्यावरण में या नागौर के जिकी जलवायु है बीरे अनुसार किसा पेड़ पौधा है जिका अट्ठे छोका पन्ना पी तो बीरे अनुसार आपने लगाना चाहिए। धीरे धीरे और गहराई के साथ आपने जिको पानी देवनो चाहिए। नियमित रूप है जिको पेड़ पौधा की कटाई छटाई और खाद डाल तो रहो चाहिए, और जट आप पेड़ लगाया बट है जिको जगह जरूर होनी चाहिए जिसू है वो पेड़ है जिको आपको फैलाव है जिको अच्छी तरह कर सके। तो इस वास्ते वृक्षारोपण है जिको एक बहुत बढ़िया पुण्य को काम भी है, क्योंकि देखो कि वृक्ष है जिको एक लगावा नहीं तो बीरो आनंद है जिको कितना जना उठावे। तो इरे सागे अपा बे किसान भाई उड़ीक राखे के भाई राकेश भाई आया है राज कई लाया है, तो भाई देखो मैं गांव जटेरा का पुखराज जी हूँ जिकी बंतल करी बात थाए तो ही करूँ पूगती लो सुनो।
1: आज देखो क्या लगे हाथ एक भाई मिलिया है को करा हतावड़ी राम राम सा
2: राम राम सा
1: काई नाम है सर किसो गांव है
2: गाँव जटेरा है 22 किलोमीटर पड़े
1: गांव। तो पुखराज जी आपांगे है जी को कितना बीघा जमीन है?
2: आपने 40 बीघा जमीन है।
1: एक टकी है के टुकड़ा का माइन है?
2: अलग अलग अलग भाग है।
1: अच्छा कितना टुकड़ा है?
2: अलग अलग चार भाग है।
1: अच्छा 10-10 का है के मोटा छोटा है?
2: अलग अलग कई बड़ा है कई छोटा है।
1: कितना बीघा का है थोड़ा बताओ ना।
2: 8 बीघा 9 बीघा 10 बीघा।
1: अच्छा अबार आपांगे ई माइन तैयारी कर ली के खेती भाई ली?
2: हाँ बिल्कुल खेती तैयारी तो बारिश हुई आपने तूफानी वर्षा हुई जकीर मायने सब शोर दौड़ कर लिया और अब जो बारिश हुई वीर मायने ज्यादातर बाजरे की खेतियाँ हुई है।
1: आप गेहूं की खेती करी?
2: आप बाजरे की खेती करी और अब मूंगानी कर रही अब मूंगानी करा खेती और कई मूंगानी खेतियां कर ली बाजरे भी कर ली मोट है मूंग है सब खेतियां कई कर ली और ज्यादातर बाजरे की खेती हुई है।
1: आपा बाजरी बयान कितना दिन हुआ आपने?
2: आपने तो बाजरी बयान 5 दिन हो गया।
1: 5 दिन हो गया तो रात सुनियो कि भाई मांगट नागौर में थोड़ी कम आई रटी ने गावा दी ने घनी आंधी तूफान रायो थोड़ो बताओ।
2: बहुत ज्यादा तूफान हो लहरों लारू बहुत तेज तूफान हो तूफान दर्शाते हल्की बारिश ही और यूं किसान खेतम की नुकसान हुए।
1: अच्छा रोकड़ा ही पड़िया गई?
2: हाँ खूब खेदड़ी वृक्ष ज्यादा पड़िया और भी काफी गाँव मायने कई
1: उड़िया
2: और
1: आप गाँव में कई नुकसान हुए?
2: अपर गांव में देखो ज्यादातर पेड़ है
1: थम्बा
2: है थम्बा भी गिरिया है बिजली रा और खेता में भी नुकसान ही है जान भाई खेतरी जगह नई फसल है जगह ऊपरी है आंधी आंधी बाद ऊपर छांटा पड़ने धान नीचे दबने के कारण उगाव कम ही है।
1: पुखराज जी एक बात पूछू आपने के आपा के है जिको खेती बाजरी भाई पहली काई तैयारी करी?
2: खेती पहली बाजरी खेती बढ़िया खेत सूड़ साफ सुथरो कर देसी गोबर है बीरो बढ़िया छिड़काव हुई है और बीर बहादुर माई ने तेईर द्वारा खेत ने बढ़िया जोतियो है और अब वर्षा हम बिन हड़ा द्वारा बढ़िया
1: बीज दी तो आपा के है जी को के भाई बीज पत कटू लाया बाजरी को घर को ही है के बाजार लाया।
2: हाँ बीज तो देखो बाजार में भी थैली का बीज आवे अलग अलग, और मेन तो आप देखो घरों बीज है, देसी बीज ज्यादातर वो ही काम मिलेगा।
1: अच्छा, और अबे दूजोड़ा खेत में काई भाव, मूंग मोठ
2: हाँ मूंग
1: गवार?
2: मूंग है, मोठ है, गवार है, तिल है।
1: तो पाछ यहाँ का बीज के घर का ही है यहाँ का?
2: और अभी घर ही बीज है, और
1: हाँ
2: बाजार में भी बीज कई जान खेतियां करे लावे,
1: हाँ
2: और आपा तो हम घर ही बीज है।
1: हाँ पाछ घर को बीज क्या टाड़ो थे छोको छोको?
2: घरों बीज आपा जगह टाइम खेती करा भी टाइम बढ़िया दोबड़ो बढ़िया बिना आपा कोई अलग रख ला मैंने सुरक्षा कर, और खेती बीजा जा की टाइम जीरो सब्जियों करा।
1: जान ए मूंग मोटर तो बेगा हुए पछे यान का बीज है जिको क्या सुरक्षित राखो थे?
2: अन्य तो जान कोई बड़ी माटी रो कोई बर्तन वे, और बीर माइन आपा ये धान रखा, और जकी राख राख वे बड़ी राख रे माइने जका दवाई आवे ये दवाई ने मिला रखा, तो इन कोई जीव जीव
1: गाठ
2: और कोई
1: रख दो
2: लागे।
1: है नी जन वो हुड़े को
2: हाँ
1: नी?
2: सुड़े को नहीं।
1: आप बताइयो कि भाई खेत में अपने भाइयों पहली गोबर खाद डाली तो अपन का ही ढाव डांडा रखा?
2: आपा घर में गाय है और बाकी मोल लेला
1: अच्छा।
2: गौशाला है, और भी देशिया है, और ऐसा कनु आपा मोल लेला
1: मोल ले ला
2: देशी
1: कुल
2: खाद।
1: मिला। हाँ,
2: हाँ
1: तो अपन कहे जी कि किसी नस्ल की गाय है?
2: आपा देशी नस्ल है, सफेद
1: देसी सफेद है ना?
2: देशी नस्ल। हाँ
1: कितनी है?
2: देशी नस्ल ही आपा ने छोटी मोटी दो गाया है।
1: अच्छा इम
2: हाँ दो तीन।
1: हाँ, तो ये मैं दूध देगी अबार?
2: हाँ एक दूजे
1: पचे एक टाइम को
2: और
1: कितो दूध हुए?
2: कोई 3 किला 4 किला, 3 किला 4 किला देसी,
1: पचे ब्याह ने कितो टाइम हो गया?
2: 4 महीना होगा।
1: 4 महीना हो गया। तो
2: हाँ
1: पचे हुआड़ में काई काई दियो?
2: हुआड में तो ही सबों पहले आपा गुड़ देवा, और कोई अजवाण है और है,
1: अजवाइन,
2: और
1: दाना मेथी,
2: हाँ
1: हिंदी हुओ।
2: गंवार है, और बाकी वहाँ खड़ देवा यहाँ।
1: पचे बंटा मायने खड़ देवो के और भी
2: हाँ
1: कोई
2: खड़
1: बाजरी को
2: खड़ है,
1: दलियार
2: चूरी
1: वगैरह?
2: है, खड़ है, चूरी है, बाजरी रे दलियो देता दे टाइम दियावड़ी रे वजह दे टाइम पतखड़ा है, चूरी है, और दे वहाँ
1: पचे रोजीना को कितो बंटो देवो? खुद के हिसाबु
2: बंटो
1: देवो के
2: तो
1: अंदाज?
2: ओ अंदाज ही देवा सुबह शाम।
1: अच्छा, दो दो तीन तीन किलो तो देवो ही हो।
2: हाँ वही 2 किला है,
1: और लारे टोकड़ो है? एक टोकड़ी है, टोकड़ी
2: टोकड़ी है।
1: है।
2: हाँ
1: पचे आई अपने सफेद है के दूजी है?
2: हाँ बिल्कुल नहीं सफेदी है,
1: और
2: सफेद है सर।
1: हाँ, एक पुखरा जी वो पूछनी चाहूँ के भाई आप बताइयो के भाई मायने अब भाई दी तो अब चारू मेर आपा के खेत के तारबंदी करियोड़ी है, जाली
2: हाँ
1: लगाड़ी है
2: बिल्कुल
1: के अपन कोट चुनियोड़ा है?
2: बिल्कुल देखो तार बंदी करूड़ी है, बिल्कुल
1: कितना
2: पाइपे
1: तार
2: तार
1: बांधे उड़ा?
2: तार तीन तीन तार है,
1: तीन तीन तार है। हाँ हाँ तो पचे
2: और
1: उजाड़ के को आपांग बटीन?
2: आपा उजाड़ अटे ये जगह रोजड़ा है आरो ज्यादा उजाड़ रहे, और ऐसा का आजकल है हमारे ये तलरा जगह है सांडा है बड़ा
1: गंसूल डार तो कोनी आपांग गांव दीना
2: आवे, बस उल्टा
1: आवे?
2: भी आवे।
1: हाँ, क्योंकि
2: हाँ
1: गंसूल डा घना काई खोदा खोदी घना
2: हाँ
1: करते हुए।
2: हाँ
1: अबे अपन के खेत में इन अबार थे को बाजरी भाई उड़ी है, एक मायने पेल का गाय भाई हो ये खेत में?
2: तेल के तापा ने मूंगा फसल ही।
1: अच्छा, तो
2: हाँ
1: फोर फोर भाव कुल मिला रहे नी?
2: हाँ बिल्कुल।

0: जय प्रसाद, जय बढ़िया। तो कहता ना फायदो ये है, 5-4 दिन बाद में
1: अच्छा।
0: आबार बरसात है, जैसे नुकसानदायी के ऊपर हो रहे तो आगे बता ब्रो।
1: और पुखराज जी, आपा को जिको कार्यक्रम सुने किसान भाई बहन बहन थे काई संदेश देनी चाहो कि आपा आ बात करा या आ चीज करा तो अपन फायदो हुए?
0: हाँ बिल्कुल, किसान भाई संदेश है कि खेतान में बढ़िया मेहनत करनी चाहिए। हाँ जो कि देसी खाद है जिनको
1: हाँ।
0: ज्यादा उपयोग करा, बीमारियां हैं जो कि नहीं हुए, और बढ़िया देसी चीज प्राप्त हुए अपन।
1: वाह साहब, वाह पुखराज जी, थे तो बड़ी ठावी ठावी बात करी, इतनी चौकी चौकी बात करी, थांको घणो मानो, धन्यवाद, राम राम सा।
0: राम राम सर।
2: तो पुखराज जी री सब जना ठावी ठावी बात सुनी। और आज तारीख है भाया 14 जून, 14 जून का है जिको विश्व रक्तदाता दिवस मनाया करा। आ हर साल है जिको 14 जून को मनाया करा। इस साल की यानी कि 2026 की जिकी 14 जून है, बीरो थीम है अपने मानवता की एक बूंद रक्तदान करें जीवन बचाएं। आ थीम है और लोगों ने है जिको नियमित और स्वैच्छिक रक्तदान वास्ते प्रेरित करनो छेजे। विश्व रक्तदाता दिवस क्यों मना ई दिवस माते यानी कि ई दिन माते है जिको स्वैच्छिक और निःशुल्क रक्तदाता योगदान सम्मानित करनो मनाया करे। और साथ ही है जिको अपांगे लोगों के मायने है जिको जागरूकता जिसो है जिको ज़्यादा ज़्यादा है जिको रक्तदान कर सके और रक्तदान करे हुए हैं जिको किरीर किरी अपा है जिको जान बचा सका। इरो इतिहास का ही है कि भाई विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटीज़ IFRC, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन ISBT और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लड डोनर ऑर्गेनाइजेशन ने है जिको मिलर ओ दिवस की शुरुआत करी। और ओ दिवस है जिको पहली बार है जिको 2004 के मायने मनाई जो गयो। और 14 जून का ही आप क्यों मनाया करा, क्योंकि 14 जून को है जिको ऑस्ट्रियाई वैज्ञानिक कार्ल लेडस्ट्रीनर को जन्मदिन हो। और ई दिन है जिको आप दिवस मनाया करा, क्योंकि बे है जिको AB और ओ ब्लड ग्रुप की है जिको सिस्टम की खोज करी, इर वास्ते भी आने नोबल पुरस्कार भी मिल्यो। इर वास्ते आपा है जिको रक्तदान जरूर करनो छाई जे। और मारा किसान भाई उड़ीक राखे कि भाई राकेश भाई आया है और कई लाया है, तो लो सुनो ओ लो भी गीत।

अभी आप सुन रहे थे खेती बाड़ी कार्यक्रम FM बैंड 103.7 MHz पर। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। शाम के 5 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

गिरने के डर से चलना नहीं छोड़ा करते, रास्ता मुश्किल हो तो क्या उद्देश्य नहीं बदला करते। हार या जीत दो ही तो ओहदे हैं, पराजय की डर से कोशिश नहीं छोड़ा करते, अवसर देर से ही सही मिलते जरूर हैं, निराश होके जिंदगी के कपाट बंद नहीं करते। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं विचारों के साथ 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर स्वागत है आपका। आप सुन रहे हैं युववाणी, मैं हूँ कंचन रोशन। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की बात से। दोस्तों आज है विश्व रक्तदाता दिवस। विश्व रक्तदाता दिवस हर वर्ष 14 जून को मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य है स्वैच्छिक और निस्वार्थ रक्तदाताओं का सम्मान करना, साथ ही लोगों को रक्तदान के माध्यम से जो अनमोल जीवन है उसको बचाने के प्रति संवेदनशील बनाना। फ्रेंड्स, रक्त का कोई कृत्रिम या फैक्ट्री निर्मित विकल्प मौजूद नहीं है, ये केवल एक स्वस्थ मानव शरीर द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, जो हम अच्छे से जानते भी हैं। जब अस्पताल के बिस्तर पर जिंदगी और मौत के बीच जूझते किसी दुर्घटना पीड़ित कैंसर मरीज या फिर प्रसव के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव का सामना कर रही माँ को समय पर रक्त मिलता है, तो वो एक अदृश्य रक्तदाता ही होता है, जो उस परिवार के लिए साक्षात फरिश्ता बनता है। निश्चित रूप से अगर हमें इस प्रकार का मौका मिलता है तो कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, आगे बढ़ चढ़ कर भाग लेते हुए इस प्रकार के पुण्यकर्म को करने में अपनी भागीदारी अदा करनी चाहिए। दोस्तों, रक्तदान से जुड़ी कुछ मार्मिक और महत्वपूर्ण बातें भी हैं। चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार आज भी कई बार मरीजों के परिजन रक्त की एक यूनिट के लिए भटकते नजर आते हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि दुनिया भर में हर 2 सेकंड में किसी न किसी को रक्त की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही अगर हम बात करें कई जन्मजात बीमारियां जैसे कि थैलेसीमिया और सिकल सेल से पीड़ित बच्चों को हर महीने कई बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन का भी सामना करना पड़ता है। इस प्रकार से एक बार किया गया रक्तदान इन बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लौटा सकता है। ये दिवस मानवता, संवेदनशीलता और जीवन रक्षा के संकल्प का प्रतीक है। स्वैच्छिक रूप से बिना किसी भेदभाव के किया गया दान किसी अनजान व्यक्ति को नया जीवन प्रदान कर सकता है। एक बार में केवल एक यूनिट लगभग 350 मिलीलीटर रक्तदान किया जाता है, जो मेडिकल प्रक्रिया के माध्यम से अलग अलग घटकों में बांटकर 3 जिंदगियों को बचा सकता है। वैज्ञानिकों और चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार रक्तदान करना केवल जरूरतमंदों के लिए जीवनदायी नहीं, बल्कि यह स्वयं रक्तदाता के लिए भी बेहद लाभकारी है, जिसे भी हम सुन चुके हैं, समझ चुके हैं और पढ़ते भी हैं। लेकिन बात जब आती है किसी कार्य को करने की, उसे शुरू करने की, उसे अंजाम तक पहुंचाने की, तब कहीं ना कहीं लोग पीछे हट जाते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति हर महीने में स्वेच्छा से सुरक्षित रक्तदान कर सकता है। ये शरीर में आयरन के स्तर को संतुलित रखता है, हृदय रोगों के जो जोखिम हैं उनको भी कम करता है और नई रक्त कोशिकाओं के निर्माण को भी प्रेरित करता है। दोस्तों, इस प्रकार से हम अगर समझें तो ये निश्चित रूप से एक आध्यात्मिक रूप से पुण्य का कार्य होने के साथ साथ हमारी जो शारीरिक संरचना है उसके अकॉर्डिंग मेडिकली भी बहुत ही, हम यूँ कहें कि हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो निश्चित रूप से हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, कुछ अलग अलग प्रकार की पहल के माध्यम से कुछ ग्रुप्स बना के अपने लेवल पर भी हमें रक्तदान की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि सरकारी स्तर पर अलग अलग NGOs के माध्यम से ये मुहिम चलती रही है और समय के साथ चलती भी रहेगी, लेकिन हमारे द्वारा प्रयास किया जाना निहायत ज़रूरी है। तो यहाँ सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत।

प्रत्येक सोमवार को रात्रि 8 बजे सुनिए सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम दिल से। इस कार्यक्रम में अपनी फरमाइश भेजने के लिए आपको लिखना है अपने पसंदीदा गीत के बोल, फिल्म का नाम, अपना नाम और अपने शहर या गांव का नाम, और भेज देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर 9649004762 पर। शाम 5 बजे तक प्राप्त आपकी फरमाइशों का प्रसारण किया जाएगा उसी रात 8 बजे आपके अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है दिल से।

दोस्तों, हम बात कर रहे थे विश्व रक्तदाता दिवस की। जी हाँ, हर साल 14 जून को दुनिया भर के अस्पताल, रक्त बैंक, गैर सरकारी संगठन और सरकारें एक साझा उद्देश्य के लिए एकजुट होते हैं, स्वेच्छा से रक्तदान करने वालों का सम्मान करना और लाखों अन्य लोगों से भी इसमें शामिल होने का आह्वान करना। ये विश्व रक्तदाता दिवस, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त 11 आधिकारिक वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियानों में से एक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों पर हम नज़र डालें तो भारत में सालाना रक्त संग्रह 2023 की बात करें तो 12.6 मिलियन यूनिट से बढ़कर 2024 में 14.6 मिलियन यूनिट हो गया, जो एक महत्वपूर्ण वृद्धि है। निश्चित रूप से फिर भी लगभग 1 मिलियन यूनिट रक्त की कमी अभी भी बनी हुई है। वैश्विक स्तर पर विकासशील देशों में विश्व की 82% आबादी रहती है। वहीं अगर हम रक्त की बात करें तो रक्त आपूर्ति में केवल 39% का योगदान ही है। हर 2 सेकंड में दुनिया में कहीं ना कहीं किसी मरीज को रक्त चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। निश्चित रूप से हमें इस रक्तदाता दिवस पर संकल्प लेते हुए आगे आना होगा और ये एक आह्वान है कि हम आगे आएं, जागरूकता फैलाएं किसी की जान को बचाने को लेकर। हालांकि WHO जागरूकता अभियानों और वैश्विक कार्यक्रमों को दिशा देने के लिए हर साल विश्व रक्तदाता दिवस की आधिकारिक थीम की घोषणा करता है, लेकिन हर थीम के पीछे की जो भावना है वो अपरिवर्तित ही रहती है। यानी कि वो भावना मूलतः एक ही और इशारा कर रही होती है, दाताओं को पहचानना, नए दाताओं को प्रेरित करना और सभी के लिए सुरक्षित रक्त के उद्देश्य का समर्थन करना। जी हाँ दोस्तों, इसी थीम को ध्यान में रखते हुए हमें भी आगे आना होगा। दोस्तों, यहाँ सुनते हैं कार्यक्रम का अगला सॉन्ग।

0: जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मिले आपके अमूल्य सहयोग के लिए जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता है। आपके सहयोग से प्रदेश की सही और समग्र जानकारी संकलित हो रही है।
1: अब फरवरी 2027 में जनगणना के अगले चरण में भी आपके इसी सहयोग और सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा है। जनगणना 2027 बेहतर भविष्य की मजबूत नींव। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: दोस्तों अब बात करते हैं स्किल इंडिया मिशन की। जी हाँ दोस्तों, इसका लाभ किस प्रकार से उठाया जा सकता है। स्किल इंडिया डिजिटल हब पोर्टल पर पंजीकरण यानी कि रजिस्टर करके इसका लाभ उठाया जा सकता है। सरकार द्वारा मुफ्त प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग दी जाती है। प्रमाण पत्र और प्लेसमेंट सहायता भी प्राप्त करने के लिए हम कौशल विकास कोर्स चुन सकते हैं। इस मिशन के अंतर्गत सबसे प्रमुख योजना है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। दोस्तों स्किल इंडिया मिशन के लाभों पर अगर हम नज़र डालें तो शॉर्ट टर्म और ऑन द जॉब ट्रेनिंग पूरी तरह से मुफ्त होती है इसके तहत, जिसका खर्च सरकार उठाती है। साथ ही ट्रेनिंग पूरी करने के बाद राष्ट्रीय स्तर पर मान्य प्रमाण पत्र भी मिलता है। इसके साथ सफल उम्मीदवार जो हैं उनको कोर्स के अंत में रोजगार मेलों के माध्यम से जॉब दिलाने में भी सहायता की जाती है। यदि हमारे पास पहले से कोई हुनर यानी कि बढ़ई, सिलाई, इलेक्ट्रीशियन जैसा हुनर कोई भी है तो निश्चित रूप से और भी फायदेमंद साबित होती है ये योजना। इसके साथ ही ट्रेनिंग पूरी करने के बाद राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र मिलने से काफ़ी हद तक हमारा जो लेवल है वो बढ़ जाता है। और यदि इस प्रकार से कौशल हम हासिल करके कामयाबी हासिल करते हैं तो आगे जाकर प्राइवेट सेक्टर्स या गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी काफ़ी हद तक हमारे लिए संभावनाएं खुल जाती है। अगर हम पात्रता पर नज़र डालें तो भारत के स्थायी निवासी होना

और जो आयु सीमा है वो 15 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके साथ ही आवेदन के पास जो आवेदक करता है उसके पास आधार कार्ड, उससे जुड़ा मोबाइल नंबर होना आवश्यक है, यानी कि ये अमूमन जो सामान्य पात्रताएं हैं वो आवेदक में मौजूद होना जरूरी है, जो अमूमन हम सब में आम हैं। इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन आवेदन प्रक्रिया की बात करें तो स्किल इंडिया डिजिटल जो पोर्टल है उसकी आधिकारिक वेबसाइट पर, इसके साथ होम पेज पर जो रजिस्टर या साइन अप करके जो विकल्प है उसको चुना जाएगा। इसके बाद आधार नंबर दर्ज करके मोबाइल नंबर ओटीपी के माध्यम से ईकेवाईसी पूर्ण करनी होगी और अपनी जो शैक्षणिक योग्यता है, रुचि है और स्थान है उसकी जानकारी भरनी होगी। इसके बाद फाइंड ए ट्रेनिंग सेंटर या फिर ब्राउज कोर्सेस के जरिए अपनी पसंद का कोर्स और नज़दीकी केंद्र खोजना होगा। दोस्तों इस प्रकार से हम रजिस्टर करके इसका लाभ उठा सकते हैं और इसके बाद उपलब्ध बैच को चुनकर शो इंटरेस्ट या फिर अप्लाई बटन पर क्लिक करना होगा। इसके जरिए हम इस प्रकार से रजिस्टर करके इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों ये तो हुई अपनी स्किल इंडिया मिशन की बात, अब हम यहाँ रुकते हैं ब्रेक के लिए।

श्रोताओं, प्रत्येक गुरुवार को युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत होता है ईमेल पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। अपनी फरमाइश भेजने के लिए हमें ईमेल कीजिए हमारी ईमेल आईडी youthexpressnagaur@gmail.com पर। इसमें आप लिखिए अपनी पसंद की फिल्म का नाम, गाने के बोल, आपका नाम, आपके शहर या गांव का नाम और भेज दीजिए हमारे ईमेल आईडी पर youthexpressnagaur@gmail.com पर। और सुनिए अपने पसंदीदा गीत।

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: दोस्तों, अब बात करते हैं सेविंग, जो हमारे बजट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, किस प्रकार से की जा सकती है। 50-30-20 का वित्तीय नियम किस प्रकार हमारे लिए बेहतर साबित हो सकता है सेविंग को लेकर। दोस्तों, ये एक लोकप्रिय और आसान बजटिंग फार्मूला है जो हमारी मासिक आय को 3 हिस्सों में बांटता है। 50% जरूरतों पर, 30% इच्छाओं पर और 20% बचत पर। फ्रेंड्स, ये तरीका आय के अनुसार संतुलित खर्च और सुरक्षित भविष्य की आदत बनाने में हमारी मदद करता है। इस हिस्से में अगर हम बात करें सबसे फर्स्ट पॉइंट 50% जरूरतों की, तो बुनियादी खर्चे शामिल किए जाते हैं जिनके बिना जो हमारा रोज़मर्रा का काम है और जीवन है वो बिताना मुश्किल हो, इस प्रकार के खर्चे, घर का किराया हो, लोन ईएमआई हो, ग्रोसरी यानी कि किराना आदि हो, बिजली पानी का बिल, बच्चों की स्कूल फीस, परिवहन आने जाने का खर्च और ज़रूरी हेल्थ इंश्योरेंस। इसके साथ ही अगर हम बात करें सेकंड पॉइंट की, तो वो आता है 30% इच्छाएं, यानी कि हमारी जो वांट्स होती है वो। ये हिस्सा हमारी जीवन शैली और व्यक्तिगत पसंद से जुड़े खर्चों के लिए है। उदाहरण के लिए बाहर जाना, फिल्में आदि देखना, वेकेशन आदि ट्रिप को ज्वाइन करना, जिम और मेंबरशिप हासिल करना और जो कपड़े आदि की खरीदारी यानी कि शॉपिंग और है वो सारी इसमें शामिल होती है। उसको 30% देते हुए हमें अपने बजट के संतुलन को बनाए रखना होगा। इसके साथ ही बात आती है थर्ड पॉइंट की, तो वो है 20% बचत यानी कि सेविंग, जो सबसे इम्पोर्टेंट भी है। ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होने के साथ हमारे भविष्य और आर्थिक रूप से सुरक्षित और मजबूत बनाने के लिए भी आज बहुत ही आवश्यक है। इमरजेंसी फंड हो यानी कि आपातकालीन जो कोष है उसको तैयार करना, रिटायरमेंट प्लानिंग करना हो या म्यूचुअल फंड, SIP और अलग अलग प्रकार के निवेश, जिसके माध्यम से हम अपनी बचत को बनाए रख सकते हैं और निरंतरता होना इसमें भी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अब हम सुनते हैं कार्यक्रम का ये सॉन्ग,

दोस्तों, निश्चित रूप से हमें स्वैच्छिक रक्तदान के संकल्प को लेते हुए अब कार्यक्रम का समय हो चला है समाप्ति की ओर। आपकी दोस्त को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युववाणी कार्यक्रम आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:30 हुए हैं। श्रोताओं लीजिए सुनिए कार्यक्रम बालवाड़ी।

सपने वो नहीं जो नींद में आए, सपने वो हैं जो नींद उड़ा जाएं। मंजिल मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। जी हाँ, जय हिंद बच्चों, मैं हूँ आपकी रईसा दीदी, लेकर आई हूँ रोचक जानकारियों से भरपूर आपका पसंदीदा कार्यक्रम बालवाड़ी। प्यारे बच्चों, आपने ए प्लस बी प्लस ओ ये सब सुना है ना, ये ब्लड ग्रुप किसने खोजे पता है? कार्ल लैंडस्टीनर ने। आज 14 जून को उनका बर्थडे है, उन्हीं की याद में वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी खोज ने करोड़ों की जान बचाई। बच्चों, विश्व रक्तदाता दिवस ये दिन उन गुमनाम हीरो को सलाम करता है जो बिना किसी स्वार्थ के रक्तदान करके जिंदगियां बचाते हैं। 14 जून को ही कार्ल लैंडस्टीनर का जन्म हुआ था, जिन्होंने रक्त समूह ए बी ओ सिस्टम खोजा। उन्हीं की याद में WHO ने 2004 से ये दिन मनाना शुरू किया। प्यारे बच्चों, आखिर रक्तदान क्यों ज़रूरी है? दरअसल बच्चों, रक्त का कोई विकल्प नहीं है, उसे फैक्ट्री में नहीं बनाया जा सकता। हर 2 सेकंड में भारत में किसी ना किसी को खून की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में हमारे द्वारा किया गया रक्तदान महादान कहलाता है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि बच्चों, आखिर रक्तदान कौन कर सकता है? तो बच्चों, 18 से लेकर के 65 साल का कोई भी स्वस्थ व्यक्ति जिसका वजन 45 किलो से ज़्यादा है, हीमोग्लोबिन 12.5 से ज़्यादा हो, तो वो रक्तदान कर सकता है। साल 2026 में विश्व रक्तदाता दिवस की थीम है गिव ब्लड गिव होप टुगेदर वी सेव लाइव्स, यानी रक्त दो आशा दो, साथ मिलकर जीवन बचाएं। तो बच्चों, ये थीम बताती है कि रक्तदान सिर्फ खून देना नहीं, किसी के परिवार को उम्मीद देना है। इसके अलावा बच्चों, रक्तदान को लेकर कई लोगों के मन में ये भ्रांतियाँ भी बनी रहती हैं कि इससे कमजोरी आती है, मगर सच ये है कि उल्टा नया खून बनता है और शरीर तंदुरुस्त रहता है। इस प्रकार बच्चों, रक्तदान एक परोपकार है, एक यूनिट खून से किसी का बेटा, किसी के बच्चे का पिता, किसी बहन का भाई बच सकता है। इसलिए बच्चों, अपने घर वालों से जिनकी उम्र 18 से 65 के बीच है, आप उन्हें याद दिलाएं कि आप समय समय पर रक्तदान जरूर करें ताकि किसी की जान बच सके। याद रखें, रक्तदान महादान है, इससे बड़ा कोई दान नहीं है। तो बच्चों, हम बातों को देते हैं विराम और सुनते हैं ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे हम हैं राही प्यार के फिल्म का गीत। प्यारे बच्चों, आजकल हम देखते हैं कि कंप्यूटर की मदद से हर काम बड़ी आसानी से हो जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है बच्चों कि ये कंप्यूटर एक दिन में नहीं बना, 5,000 साल की मेहनत का नतीजा है ये मशीन। बच्चों, कंप्यूटर शब्द लेटिन भाषा के कंप्यूटर से आया है, जिसका मतलब है गणना करना। बच्चों, सबसे पहला कंप्यूटर था अबेकस, जो चीन में 300 ईसा पूर्व में बना था। लकड़ी के फ्रेम में मोती खिसका कर जोड़ घटाव होता था। फिर 1642 में ब्लेज पास्कल ने पास्कलाइन बनाई, जो गियर वाली पहली जोड़ने वाली मशीन थी। फिर आता है यांत्रिक युग, तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहते हैं। उन्होंने 1833 में एनालिटिकल इंजन का डिज़ाइन बनाया। इसमें इनपुट, मेमोरी, प्रोसेसर सब था, बिल्कुल आज के कंप्यूटर के जैसा। पर पैसा कम पड़ गया, पूरा काम नहीं हो पाया। उनकी साथी एडा लवलेस ने दुनिया का पहला प्रोग्राम लिखा, इसलिए उन्हें पहली प्रोग्रामर मानते हैं। अब बात आती है बच्चों इलेक्ट्रॉनिक युग, पीढ़ियों की कहानी की। पहली पीढ़ी 1940 से 1956, वैक्यूम ट्यूब ENISC 1946 में बना, 30 टन वजनी, 18,000 ट्यूब वाला, बहुत ही जगह घेरने वाला ये कंप्यूटर था। दूसरी पीढ़ी 1956 से 1963, ट्रांजिस्टर, ट्यूब की जगह अब ट्रांजिस्टर आया, साइज छोटा, पहले वाले के मुख उससे कम था। तीसरी पीढ़ी 1964 से 1971, IC चिप यानी इंटीग्रेटेड सर्किट ने कमाल ही कर दिया। एक छोटे चिप ने हजारों ट्रांजिस्टर, एक छोटी चिप में थे हजारों ट्रांजिस्टर, कंप्यूटर टेबल पर ये आने लगा। चौथी पीढ़ी 1971 अब तक का माइक्रो प्रोसेसर इंटर 4004 पहली चिप थी जिसने पूरा CPU था। और अब है पांचवी पीढ़ी, AI का दौर। अब AI रोबोट सुपर कंप्यूटर का जमाना है, परम भारत का सुपर कंप्यूटर है। इस प्रकार बच्चों 1955 में पहला कंप्यूटर HEC-2M कोलकाता ISI में आया। 1966 में ISIJU फर्स्ट पहला भारतीय कंप्यूटर बना। डॉक्टर विजय भटकर ने परम 8000 बनाकर भारत को सुपर कंप्यूटर देशों में ला दिया। इस तरीके से बच्चों अबेकस से AI तक का सफर बताता है कि इंसान की जरूरत ने आविष्कार कराए, जो मशीन कभी कमरा भरती थी आज जेब में समा गई है। कल क्वांटम कंप्यूटर भी आएंगे जो सेकंडों में सालों का काम करेंगे। तो इस प्रकार से बच्चों ये चर्चा हुई कंप्यूटर के इतिहास के बारे में। प्यारे बच्चों, कभी आपने सोचा है कि राजा के महल में रहने वाला दुखी क्यों है और झोपड़ी में रहने वाला गरीब खुश क्यों सोता है? तो बच्चों आज की कहानी इसी राज पर है, संतोष का राज। बहुत पुरानी बात है, एक गांव में रामू और शामू दो भाई रहते थे। दोनों मेहनती थे पर सोच अलग अलग थी। रामू के पास 2 बीघा जमीन थी, वो रोज खेत जाता, मेहनत करता, शाम को घर आकर रोटी सब्जी खाकर चैन की नींद सो जाता। उसके चेहरे पर हमेशा संतोष की मुस्कान रहती। वो हमेशा कहता कि जितना है ऊपर वाले का दिया है, मेहनत मेरी फल उसका। शामू शहर में नौकरी करता था, तनख्वाह अच्छी थी पर हमेशा उदास ही लगता। पड़ोसी ने कार ले ली, मेरी कब आएगी? बॉस ने उसका प्रमोशन कर दिया, मुझे क्यों नहीं दिया? वो रात दिन दूसरों से तुलना करता रहता, जलता गुड़ता रहता था, नींद की गोली खाकर रात को सोता। एक दिन गांव में एक संत आए। शामू भाग कर गया, महाराज मुझे शांति नहीं मिलती, मैं क्या करूं? संत मुस्कुराए। संत उसे सुनार की दुकान पर ले गए। सुनार तराजू के एक पलड़े में 1 किलो का बाट रख कर सोना तोल रहा था। संत ने पूछा, शामू ये तराजू कब बराबर होगा? शामू बोला, जब दूसरे पलड़े में भी 1 किलो सोना आ जाएगा। तो संत बोले, बिल्कुल ठीक। अब सोचो, तुम्हारा मन भी तराजू है, एक पलड़े में तुम्हारी इच्छाएं हैं और दूसरे में तुम्हारे पास जो है वो। तुम इच्छाओं का बाट बढ़ाते जाते हो तो मन का पलड़ा कभी बराबर नहीं होगा।
हमेशा झुका ही रहेगा, अशांत रहेगा। तुम्हारे भाई रामू को देखो, उसने इच्छाओं का बाट कम रखा है, जो मिला है उसी में खुश है, इसलिए उसका मन संतुलित है, शांत है, यही संतोष है। श्यामू को संत की बात समझ आ गई। उस दिन से उसने तुलना करना छोड़ दिया, जो है उसका शुक्र करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिन में उसकी ज़िंदगी में भी खुशहाली लौट आई। तो इस प्रकार से बच्चों, संतोष यानी सब्र सुख की चाबी है। जिसके पास संतोष है वो झोपड़ी में भी राजा है, और जिसके पास नहीं है वो महल में भी भिखारी है। तुलना करना छोड़ें, तुलना जहर है। दूसरों की थाली में मत देखो, अपनी थाली में घी कितना है वो देखो। इस प्रकार बच्चों, हमें जीवन में हमेशा संतोष यानी सब्र के महत्व को समझना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा जीवन हमेशा खुशहाल रहता है। अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे संजू फिल्म का ये गीत। कद छोटा है तो क्या हुआ, इरादे आसमान छूते हैं। ये पंक्ति पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर पर बिल्कुल सटीक बैठती है। बच्चों, राजस्थान की मिट्टी में जन्मा ये खिलाड़ी आज पूरे भारत का गर्व बन चुका है। जिस समाज ने कभी उनके बौनेपन का मजाक उड़ाया, आज वही समाज उनके नाम पर गर्व से सिर उठाता है। बच्चों, कृष्णा नागर का जन्म 12 जनवरी 1999 को जयपुर राजस्थान में हुआ। उनके पिता सुनील नागर एक सामान्य परिवार से थे। मात्र 2 वर्ष की आयु में कृष्णा डेवार्फिज्म यानी बोनेपन का शिकार हो गए। लंबाई केवल 4 फीट 6 इंच तक रह गई। बचपन आसान नहीं था। स्कूल में बच्चे चिढ़ाते, रास्ते में लोग घूर कर देखते, पर कृष्णा ने कभी हार नहीं मानी। 2017 में उनके जीवन में एक नया मोड़ आया। चचेरे भाई उन्हें जबरदस्ती बैडमिंटन कोर्ट ले गए। पहली बार रैकेट पकड़ा और लगा, ये मेरी दुनिया है। कोच गौरव खन्ना और योजना शर्मा ने उनकी प्रतिभा पहचानी और SH6 कैटेगरी में ट्रेनिंग शुरू की। कृष्णा की मेहनत रंग लाई। 2019 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दस्तक दी। पर असली कमाल टोक्यो पैरालंपिक्स 2021 में दिखाया। मेंस सिंगल्स SH6 फाइनल में हांगकांग के खिलाड़ी को 21-17, 16-21 और 21-17 से हरा कर गोल्ड मेडल जीता। इसके बाद वे नहीं रुके। 2022 में एशियन पैरा गेम्स में एक गोल्ड, एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज पदक जीता। भारत सरकार ने उनके इस योगदान को सलाम करते हुए 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार से इन्हें नवाजा। इस प्रकार बच्चों, ये जानकारी हुई कृष्णा नागर के बारे में। अब कार्यक्रम की अंतिम कड़ी में सुनते हैं ये गीत।

इसी के साथ बच्चों समय हो गया है आपको गुड बाय कहने का, लेकिन जाते जाते इतना ज़रूर कहेंगे, गिरना भी ज़रूरी है, औकात पता चलती है, बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को तब दुनिया पता चलती है, जो गिर कर फिर उठ गया समझो वही सिकंदर है, वरना मिट्टी में मिल जाना तो आसान काम है। अब कहते हैं अलविदा बच्चों, रखिएगा अपना ख्याल, जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे बालवाड़ी कार्यक्रम FM बैंड 103.7 MHz पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले हिंदी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के नीस में इस समय शिष्टमंडल स्तर की वार्ता कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर खासतौर से चर्चा हो रही है, जिसमें रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इसमें भारत में तेजी से बढ़ते नवाचार और स्टार्टअप परितंत्र को दर्शाया गया है। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, नव प्रवर्तनकारी, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी स्तंभ भी शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत फ्रांस साझेदारी को एक ऐसा स्थायी संबंध बताया जो आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और भविष्य के लिए एक समान दृष्टिकोण पर आधारित है।
1: भारत और फ्रांस का रिश्ता, इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है, इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है, शेयर्ड वैल्यूज है, शेयर्ड विजन भी है। और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहलें शुरू की है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है।
0: फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि आज प्रश्न ये नहीं है कि भारत में नवाचार हो रहा है या नहीं, बल्कि प्रश्न ये है कि भारत के साथ मिलकर कौन नवाचार करे। उन्होंने सबसे लंबे समय तक भारत का प्रधानमंत्री रहने के लिए श्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी का वहां पारंपरिक स्लोवाक शैली में स्वागत किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज सागर जिले में आयोजित एक समारोह में लाडली बहना योजना की 37वीं किस्त जारी की। राज्य भर में 25 करोड़ से अधिक महिला लाभार्थियों के खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की गई है। मुख्यमंत्री ने देवरी विधानसभा क्षेत्र में लगभग 191 करोड़ रुपए की 53 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और उद्घाटन भी किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर्नाटक को यूपीए सरकार के समय की तुलना में केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में 5 गुना ज्यादा धनराशि मिली है। बेंगलुरु में विकसित भारत संकल्प समावेश कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक को केंद्र से लगभग 4 लाख करोड़ रुपए कर हिस्सेदारी के रूप में मिले हैं। उन्होंने राज्य सरकार के इस आरोप को खारिज किया कि कर्नाटक को केंद्र से पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने ओमान तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 के इंजिन में खराबी आने की जानकारी दी है। इसमें सवार 14 भारतीयों को बचा लिया गया है। दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि ओमान के अधिकारियों के साथ तालमेल से बचाव अभियान जारी है। अंताल्या में तीरंदाजी विश्व कप के तीसरे चरण में भारत के धीरज बोमा देवरा और किशोरी कुमकुम मोहद ने स्वर्ण पदक जीते। फाइनल में रिकर्व मिक्स्ड टीम स्पर्धा में भारतीय जोड़ी ने दक्षिण कोरिया की ओह ये जिन और किम जे दियोक को हराया। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत अपने पहले मैच में पाकिस्तान से खेलेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 बजे जर्मनी का मुकाबला कुरासाओ से होगा, वहीं रात 1:30 बजे नीदरलैंड्स और जापान होंगे आमने सामने। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

0: राइट ऑल राइट, इसमें झगड़ने की क्या बात है यार?
1: पहले, मैं तो पहले भवरे जैसे अरे? पास पास मंडरा है, फिर बिजी हूँ ये कहकर तुमको वो टर्न।
0: कम ऑन रिया,
1: समझा करो डार्लिंग, आज बहुत काम।
0: मेरी भी तो सुनो,
1: दूर हुआ तो क्या, दिल में तुम्हारा नाम है।
0: वाओ,
1: जिस चेहरे पर मरते हैं वो बोरिंग हो जाए।
0: आई एम नॉट लिसनिंग टू यू।
1: दिन में नजरें इनकी इधर उधर।
0: आई एम नॉट लिसनिंग टू यू।
1: प्यार से जिंदगी नहीं चलती।
0: ओके, आई एम नॉट विद हर।
1: इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती?
0: ओके, दैट्स इट।
2: अलका याग्निक और शान की आवाज़ों में हम तुम फिल्म का एक गीत अभी आपने सुना। अगला गीत सुनिए, हम तुम पे मरते हैं फिल्म से।

लता मंगेशकर, उदित नारायण और साथियों की आवाज़ों में हम तुम पे मरते हैं फिल्म का एक गीत अभी आपने सुना। अगला गीत सुनिए अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है हम तुम्हारे हैं सनम।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:20 हुए हैं। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे कार्यक्रम माटी के स्वर।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

कर नहीं जाओगी दो बिया दोए चाहे सारी उमरिया दो बिया दोए चाहे सारी उमरिया शाम

अभी आप सुन रहे थे माटी के स्वर FM बैंड 103.7 MHz पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले हिंदी में प्रादेशिक समाचार, तत्पश्चात राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष में आयोजित इस कार्यक्रम में अन्य देशों के शीर्ष नवाचार स्टार्टअप और उद्यम पूंजीदाता भी शामिल हुए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और फ्रांस के मजबूत संबंधों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और भारत के युवाओं की आकांक्षाएं देश के विकास को गति और भविष्य को आकार दे रही हैं। प्रधानमंत्री ने भारत फ्रांस साझेदारी को ऐसा स्थायी संबंध बताया जो आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और भविष्य के लिए एक समान दृष्टिकोण पर आधारित है।
1: दुनिया में अलग अलग देश एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं, अलग अलग देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी होती है, लेकिन कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जो शेयर्ड इंटरेस्ट के साथ साथ शेयर्ड विजन से भी ड्राइव होते हैं। भारत और फ्रांस का रिश्ता कुछ ऐसा ही है।
0: फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भारत के बाहर इस विशेष पहल की मेजबानी को फ्रांस के लिए सम्मान का विषय बताया। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत को न केवल अपार प्रतिभाओं से संपन्न देश के रूप में देख रही है, बल्कि नवाचार के देश और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी शक्ति के रूप में भी देख रही है। राष्ट्रपति मैक्रों ने स्वतंत्रता के बाद से भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर भी श्री नरेंद्र मोदी को थी। दोनों नेताओं के बीच शिष्टमंडल स्तर की वार्ता जारी है। दोनों पक्षों के बीच विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर खास तौर से चर्चा हो रही है, जिसमें रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार शामिल हैं। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इन दिनों राज्य भर में जागरूकता प्रदर्शनियां और प्रचार गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। 12 साल के विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के विषय पर आयोजित प्रदर्शनी में सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। सिरोही जिला मुख्यालय पर चल रही प्रदर्शनी का आज ग्रामीण विकास और पंचायती राज राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने अवलोकन किया। इस दौरान स्थानीय सांसद लुम्बाराम चौधरी भी मौजूद रहे। अलवर जिला मुख्यालय पर लगाई गई प्रदर्शनी का प्रभारी मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने अवलोकन किया। इस मौके पर प्रभारी मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राज्य सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और इसके लिए उनका संघर्ष जारी रहेगा।
2: देखो, जो मिलावट, गड़बड़, घोटाला रीड पेपर में, सब इंस्पेक्टर में, आरएस में प्लस बीज में अगर संपूर्ण संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई तो मैं बड़ा कदम उठाऊंगा। आरएस पेपर के बड़े आरोपी बचे हुए हैं, उनकी गिरफ्तारी की मांग करूंगा। रीड पेपर के मगरमच्छ बचे हुए हैं, उनकी भी गिरफ्तारी। कोई व्यक्ति माना बचा है पर कोई बचता है तो उसमें भी पुख्ता कार्रवाई होनी चाहिए।
0: विकसित भारत संकल्प सम्मेलन के तहत आज बीकानेर में भाजपा की ओर से प्रबुद्ध जन सम्मेलन रखा गया। सम्मेलन में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 सालों में भारत ने विकास, सुशासन, राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक न्याय और जन कल्याण के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ काम किया है।
3: नल से जल की बात करो, हर घर बिजली की बात करो, बिजली पहुंचने की बात हो और चाहे देश की रक्षा सुरक्षा की बात हो, इसी कालखंड में देश ने सर्जिकल स्ट्राइक देखा, एयर स्ट्राइक देखा, ऑपरेशन सिंदूर भी देखा और इसी कालखंड में धारा 370 समाप्त हुए भी देश ने देखा और जम्मू कश्मीर भी मुख्य धारा में जुड़ा, भारत का संविधान भी जम्मू कश्मीर में लागू।
0: आयुष मंत्रालय ने आज YouTube पर आयोजित एक लाइव योग सत्र के जरिए नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इस ऑनलाइन योग कार्यक्रम में 4,35,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि यह उपलब्धि दुनिया भर में योग की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाती है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने

की अपील की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम 21 जून को कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। राज्य सरकार ने प्रदेश में आयोजित किए जा रहे ग्रामीण सेवा शिविरों में संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टरों को तहसीलदारों तथा नायाब तहसीलदारों की पोस्टिंग का अधिकार दिया है। 12 जून से शुरू हुए इन शिविरों के प्रभावी और सफल क्रियान्वयन के लिए राजस्व विभाग ने प्रशासनिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया है। जनता से जुड़े कार्यों को समय पर पूरा करने और योजनाओं के लाभ को अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। अब संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर अपने क्षेत्राधिकार में नॉन फील्ड में कार्यरत तहसीलदारों तथा नायाब तहसीलदारों को तहसीलों या उप तहसीलों के खाली पदों पर पदस्थापित कर सकेंगे। इसके अलावा भू राजस्व अधिनियम के तहत आबादी विस्तार के लिए भूमि आरक्षित किए जाने की जिला कलेक्टर की शक्तियां भी शिविर प्रभारियों को दी गई हैं। खातेदारों की भूमि से संबंधित मामले और अभिलेखों में गलतियों को ठीक करने के प्रकरण से संबंधित शक्तियां भी प्रभारियों को सौंपी गई हैं। तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को भी भूमि बंटवारे और पंचायतों के सीमा ज्ञान की शक्तियां हस्तांतरित की गई हैं। सरकार ने भूमि आवंटन के लिए आवेदन की उद्घोषणा की समय अवधि भी घटाकर 7 दिन कर दी है। राज्य में नमक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नियमों में संशोधन किया गया है। नए नियमों के अनुसार अब नमक उद्योग के लिए भूखंड आवंटन ई ऑक्शन के माध्यम से किया जाएगा। पहले ये प्रक्रिया लॉटरी आधारित थी। जिन जिलों में नमक उत्पादन के लिए लवणीय भूमि उपलब्ध है उनमें अब सर्वे, सीमांकन और भूखंडों के मापन के बाद ही आवंटन की कार्यवाही की जा सकेगी। पूर्व के नियमों में लीज समाप्त होने के 4 साल बाद नवीनीकरण करने का कोई प्रावधान नहीं होने से राज्य की लगभग 300 नमक उत्पादक इकाइयां लीज नवीनीकरण से वंचित थी, जिसके कारण नमक उत्पादक काफी परेशान थे। राज्य सरकार द्वारा ऐसी इकाइयों को 6 महीने की एक मुश्त छूट प्रदान कर नमक उत्पादकों को राहत दी गई है। सरकार के इस फैसले से नमक क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। पाली में वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाए गए डे केयर सेंटर का आज सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने उद्घाटन किया। इस सेंटर में बुजुर्गों को उनके समय के सदुपयोग के लिए विभिन्न गतिविधियों के जरिए व्यस्त रखा जाएगा। इस अवसर पर श्री गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए समर्पित है।

0: सलुम्बर में किसानों को जैविक और प्राकृतिक खेती की ओर जागरूक करने के लिए कार्यशाला रखी गई। जावर माइंस के सामुदायिक भवन में आयोजित कार्यशाला में सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत और विधायक शांति देवी ने भाग लिया। इस अवसर पर किसानों को रासायनिक उर्वरकों के बिना खेती करने और नवाचार अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। और अब मौसम। प्रदेश में प्री मॉनसून गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पिछले 24 घंटों में राज्य के पूर्वी और पश्चिमी भाग में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। राज्य के पूर्वी और उत्तरी हिस्सों के साथ ही शेखावटी क्षेत्र के जिलों में आज कई स्थानों पर आंधी बारिश का दौर बना रहा। राजधानी जयपुर में दोपहर बाद मौसम ने पलटा खाया और कई जगह बारिश हुई। बारिश के कारण दिन और रात के तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 9 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं जैसलमेर को छोड़कर शेष सभी जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया गया है। इधर मौसम के सुहावना बने रहने से गर्मियों की छुट्टियों में प्रदेश के पर्यटक स्थलों पर रौनक देखी जा रही है। राजधानी जयपुर में पिछले कुछ दिनों से घरेलू पर्यटकों की बड़ी संख्या में आवक दर्ज की गई है। पर्वतीय पर्यटक स्थल आबूराज में इन दिनों राजस्थान के साथ ही पड़ोसी राज्य गुजरात से भी बड़ी संख्या में सैलानी पहुँच रहे हैं। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: माउंट आबू में इन दिनों पर्यटकों की अच्छी खासी चहल पहल देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में पर्यटक परिवार सहित माउंट आबू पहुंच रही है।

0: और यहाँ के सुहावने मौसम का आनंद ले रहे हैं। प्रदेश के अन्य जिलों की तुलना में यहाँ का मौसम काफी राहत भरा बना हुआ है। रविवार को आसमान में बादल छाए रहने से मौसम और भी खुशनुमा हो गया, जिससे पर्यटकों ने विभिन्न पर्यटन स्थलों पर घूमने के साथ प्राकृतिक सौंदर्य का भरपूर आनंद लिया। साकेत गोयल, आकाशवाणी समाचार, सिरोही।
1: आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत अपने पहले मैच में पाकिस्तान के साथ खेलेगा। ग्रुप ए का यह मैच बर्मिंगम के एजबेस्टन में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान को 16 में से 13 मुकाबलों में हरा चुका है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत फ्रांस साझेदारी को आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और भविष्य के लिए समान दृष्टिकोण पर आधारित बताया है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राज्य भर में जागरूकता प्रदर्शनियां आयोजित। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। राज्य में चल रहे शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों में लोगों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान हो रहा है। और प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां तेज, पूर्वी और उत्तरी जिलों के साथ कई स्थानों पर आंधी बारिश की गतिविधियां। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से टोंक जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख क्षेत्रीय समाचार एकांश जयपुर की ओर से तैयार किया गया है। राजस्थान के लखनऊ के नाम से मशहूर टोंक जिला नवाबों की विरासत और संस्कृति के लिए जाना जाता है। राज्य के उत्तर पूर्व में स्थित ये जिला राजधानी जयपुर से महज 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और एक प्रमुख ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक केंद्र है। यहाँ पर स्थित बीसलपुर बांध राज्य में पेयजल का एक बड़ा स्रोत है। टोंक जिले की चिट्ठी में आज हम बात करेंगे पिछले महीने टोंक में हुई विभिन्न गतिविधियों के बारे में। ऊर्जा और टोंक जिला प्रभारी मंत्री हीरालाल नागर पिछले दिनों जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान श्री नागर ने देवली में दिव्यांगों को स्कूटी की सौगात दी। स्कूटी मिलने पर दिव्यांग जन के चेहरे पर खुशी नजर आई। कार्यक्रम में कुल 59 स्कूटियों का वितरण किया गया। अपने संबोधन में ऊर्जा मंत्री ने कहा कि स्कूटी मिलने से दिव्यांग जन का जीवन सुगम होगा, उन्हें रोजमर्रा के कामों में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि डबल इंजन की सरकार प्रदेश में विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है। हाल ही में ग्राम विकास रथों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार की योजनाओं को लेकर आमजन को जागरूक करने का कार्य किया गया ताकि एक भी पात्र व्यक्ति अपने हक से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि सरकार अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए जनकल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने मालपुरा के नगर वन में जिला स्तरीय कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर गंगा दशहरा से शुरू हुआ वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान संपन्न हुआ। इसका समापन समारोह आयोजित किया गया। जलदाय मंत्री ने नगर वन में पौधरोपण कर अधिकाधिक पेड़ लगाने और विकसित होने तक उनकी देखभाल करने का आह्वान किया और कपड़े के थैले वितरित कर सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने का संदेश भी दिया। इसी दिन से हरियालो राजस्थान अभियान की शुरुआत हुई। श्री चौधरी ने पेड़ों पर परिंडे भी बांधे ताकि पक्षियों को गर्मी में पानी मिल सके। उन्होंने कहा कि प्रकृति हमें जल, मिट्टी, शुद्ध हवा, भोजन उपलब्ध कराती है, इसलिए ये हम सबका दायित्व है कि हम प्रकृति को संरक्षित रखें। श्री चौधरी ने बीते दिनों मालपुरा विधानसभा क्षेत्र के चैनपुरा गांव में ग्राम रथ अभियान के तहत रात्रि चौपाल में ग्रामीणों से संवाद किया। चौपाल में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लेकर अपनी समस्याएं और सुझाव उनके सामने रखे। श्री चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार गांव-गांव तक विकास पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है और ग्राम रथ अभियान इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। भीषण गर्मी के मद्देनजर पीएचईडी मंत्री ने जनसुनवाई के दौरान जलदाय विभाग के अधिकारियों को जलापूर्ति व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाए रखने पर जोर देने को कहा। इस अवसर पर जिला कलेक्टर टीना डाबी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी परशुराम धानका सहित अन्य आला अधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। जिले में जनगणना 2027 के तहत मकान सूचीकरण का काम सुचारू रूप से चल रहा है, इसके लिए प्रगणकों और पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। जिला कलेक्टर ने लोगों से सही जानकारी देकर इस राष्ट्रीय महत्व के काम में सहयोग करने की अपील की है। इससे पहले स्वगणना का दौर चला, लोगों ने स्वगणना पोर्टल पर खुद अपनी जानकारी भरी। 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम की जिले भर में तैयारियां की जा रही हैं। जगह जगह योग दिवस के काउंटडाउन कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। इसके तहत विद्यालयों, सार्वजनिक स्थानों, सरकारी संस्थानों में योग अभ्यास का सिलसिला चल रहा है। इन कार्यक्रमों में नियमित योग अभ्यास कराकर फिट रहने का संदेश दिया जा रहा है। अधिक मास के चलते इन दिनों जिले भर में धार्मिक कार्यक्रम भी हो रहे हैं। जिले के प्रमुख मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहता है। लोग कई तरह के धार्मिक अनुष्ठान करते नजर आ रहे हैं। वहीं ईद उल अजहा का पर्व भी परंपरागत रूप से मनाया गया। ईदगाह और मस्जिदों में लोगों ने सामूहिक रूप से नमाज अदा कर अमन चैन की दुआ मांगी। इस अवसर पर कुर्बानी की रस्म अदा कर दावतों के दौर भी चले। टोंक जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। पहली आजरी खास खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत फ्रांस साझेदारी ने आपसी विश्वास साझा मूल्य और भविष्य खातर समान दृष्टिकोण माथे आधारित बतायो। केंद्र री नरेंद्र मोदी सरकार रा 12 बरस पूरा हो बारे मौके राज्य भर में जागरूकता प्रदर्शनियां राखी गई। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सरकारी उपलब्धियां गिनाई। राज्य में चल रिया शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर माए लोगों री समस्यावारों मौका माथे समाधान वैरियो है। और प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां तेज, पूर्वी और उत्तरी जिला रेसा के कई थोड़ा माथे आंधी और बारिश। समाचार रे सागे मैं रचना पारिक और अबे समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस रा राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो आज नींस माए भारत इनोवेट्स कार्यक्रम रो भेला तौरू उद्घाटन करियो। भारत फ्रांस नवाचार बरस माए राख्या इन कार्यक्रम माए दूजा देशा रा शीर्ष नवाचार स्टार्टअप और उद्यम पूंजीदाता भी भेला विया। इन मौके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत और फ्रांस रा मजबूत संबंधा रो जिक्र करियो। वणा कया के नवाचार प्रौद्योगिकी और भारत रा नौजवाना री आकांक्षावां देश रा विकास ने गति और भविष्य ने आकार दे री है।
2: दुनिया में अलग अलग देश एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं, अलग अलग देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी होती हैं, लेकिन कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जो शेयर्ड इंटरेस्ट के साथ साथ शेयर्ड विजन से भी ड्राइव होते हैं। भारत और फ्रांस का रिश्ता कुछ ऐसा ही है।
1: फ्रांस रा राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो भारत रे बारे इन विशेष पहल री मेजबानी ने फ्रांस खातर सम्मान रो विषय बतायो। वणा कया के दुनिया भारत ने अपार प्रतिभावां सु संपन्न नवाचार और प्रौद्योगिकी रा हलका माए एक क्रांतिकारी शक्ति रा रूप माए देख री है। राष्ट्रपति मैक्रो आजादी रे पछे भारत रा सबू लंबा टेम तय निर्वाचित प्रधानमंत्री बनबा माथे भी श्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी। दोनों नेतावारे बीच शिष्टमंडल स्तरीय वार्ता जारी है। दोनों पक्षों के बीच विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ावा माथे चर्चा चल रही है, जिनमें रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार भेलो है। केंद्रीय नरेंद्र मोदी सरकार 12 बरस पूरा हो बारे मौके आदिना राज्य भर में जागरूकता प्रदर्शनियां और प्रचार गतिविधियां चल रही है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के विषय माथे राखी प्रदर्शनी माए सरकारी उपलब्धियां और जनकल्याणकारी योजनाओं रो प्रचार प्रसार करियो जा रियो है। सिरोही जिला मुख्यालय माथे चल रही प्रदर्शनी रो आज ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री ओटाराम देवासी जायजो लीनो। इन दौरान स्थानीय सांसद लुम्बाराम चौधरी भी मौजूद रिया। अलवर जिला मुख्यालय माथे लगाई जी प्रदर्शनी रो प्रभारी मंत्री डॉक्टर

0: किरोड़ीलाल मीणा जायजोलिनो इन मौके प्रभारी मंत्री कया के राज्य सरकारी भ्रष्टाचार खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति रे चालता किणी दोषी ने बख्शियो नीजा वेला। खबर नवी सौ बातचीत में वणा कयो के कास्तकारा ने नकली खाद बीज बेच पावाला माथे कड़ी कार्यवाही जारी रह वेला।
1: देखो जो मिलावट गड़बड़ घोटाला रीड पेपर में सब इंस्पेक्टर में आरएस में प्लस बीज में अगर संपूर्ण संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई तो मैं बड़ा कदम उठाऊंगा। आरएस पेपर के बड़े आरोपी बचे हुए हैं उनकी गिरफ्तारी की मांग करूंगा। रीड पेपर के मगरमच्छ बचे हुए हैं उनकी भी गिरफ्तारी। कोई व्यक्ति माना बचा है पर कोई बचता है तो उसमें भी पुख्ता कार्रवाई होनी चाहिए।
0: इन कड़ी माए विकसित भारत संकल्प सम्मेलन रे तहत आज बीकानेर माए भाजपा री कानून प्रबुद्ध जन सम्मेलन राख्यो गयो। सम्मेलन माए केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अगुवाई माए लारला 12 बरस माए भारत विकास सुशासन राष्ट्रीय सुरक्षा सामाजिक न्याय और जन कल्याण हल्का माए घनी तरक्की करी है। वे कया के मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास राम मंत्र रे सागे काम करियो है।
2: नल से जल की बात करो, हर घर बिजली की बात करो, बिजली पहुंचने की बात हो और चाहे देश की रक्षा सुरक्षा की बात हो, इसी कालखंड में देश ने सर्जिकल स्ट्राइक देखा, एयर स्ट्राइक देखा, ऑपरेशन सिंदूर भी देखा और इसी कालखंड में धारा 370 समाप्त हुए भी देश ने देखा और जम्मू कश्मीर भी मुख्य धारा में जुड़ा, भारत का संविधान भी जम्मू कश्मीर में लागू।
0: आयुष मंत्रालय आज यूट्यूब माथे राख्या एक लाइव योग सत्र रे मार्फत नयो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनायो। इन ऑनलाइन योग कार्यक्रम में 435,072 लोग भाग लेना। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव कया के ओ उपलब्धि दुनिया भर में योग री बढ़ती लोकप्रियता ने दर्शावे है। बना लोगों योग ने आपरा रोजमर्रा रा जीवन रो हिस्सो बनावारी अरज करी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस रो खास कार्यक्रम 21 जून ने कोल वेला। ये समाचार आप आकाशवाणी राज जयपुर अजमेर केंद्रों सुन रिया हो। राज्य सरकार प्रदेश में राख्या जा रिया ग्रामीण सेवा शिविरा माए संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर ने तहसीलदार और नायब तहसीलदार आरी पोस्टिंग रो अधिकार दियो है। 12 जून सु सरुविया इन शिविरा ने असरदार और चौकी तरीकाओं करबा खातर राजस्व महकमो प्रशासनिक शक्तियां बांट दीनो है। जनता सो जुड़िया कामा ने टेम माथे पूरो करबा और योजनावारो फायदो हरेक जना ताई पुगाबा खातर सरकार यो कदम उठायो है। अब संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर आपरा अधिकार खेतर माए नॉन फील्ड माए काम कर रिया तहसीलदार और नायब तहसीलदारा ने तहसीला या उप तहसीला माए खाली पद माथे नियुक्ति कर सकेला। इनरे इतर भू राजस्व अधिनियम रे तहत आबादी विस्तार खातर जमी आरक्षित करिया जाबारी जिला कलेक्टर आरी शक्तियां भी शिविर प्रभारिया ने दी गई है। खातेदारारा जमीन सु जुड़िया मामला और अभिलेखा माए गलतियां ने ठीक करवारा प्रकरण सु जुड़ी शक्तियां भी प्रभारिया ने सौंपी गई है। तहसीलदार और नायब तहसीलदारा ने भी भूमि बंटवारा और पंचायतारा सीमा ज्ञान दी शक्तियां भी हस्तांतरित करी गई है। सरकार भूमि आवंटन खातर आवेदन री उद्घोषणा री मियाद भी घटार 7 दिन कर दी है। राज्य माए नमक उत्पादन ने बढ़ावो देबा खातर नियमा माए फेर बदल करियो गयो है। नया नियमा रे मुजब अबे नमक उद्योग खातर भूखंड आवेदन ई ऑक्शन रे मार्फत करिया जावेला। पहली आ प्रक्रिया लॉटरी आधारित ही जिन जिला माए नमक उत्पादन खातर लवणीय भूमि मुहैया है उन माए अबे सर्वे सीमांकन और भूखंडारा मापन रे पछे ही आवंटन री कार्यवाही करी जावेला। पहली रा नियमा माए लीज खत्म हो बारे 4 बरस रे पछे नवीनीकरण करबा कोई प्रावधान नहीं हो बासु राज्य की करीब 300 नमक उत्पादक इकाइयां लीज नवीनीकरण नहीं हो जिन वजह सु नमक उत्पादक घना परेशान हा। राज्य सरकार कानियों इन भातरी इकाइयां ने 6 महीना री एक मुश्त छूट देर नमक उत्पादका ने राहत दी गई है। सरकार इन फैसलाओं नमक हल्का माए निवेश बढ़ेला और रोजगार रा नया मौका वेला। पाली माए वरिष्ठ नागरिका खातर बनाया गया डे केयर सेंटर आरो आज सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत उद्घाटन किया। इन सेंटर माए बुजुर्गों खातर कई गतिविधियां चलाई जा रही है। इन मौके श्री गहलोत कया के राज्य सरकार ठावा नागरिका रा कल्याण खातर समर्पित है। सलुम्बर माए कास्तकारा ने जैविक और प्राकृतिक खेती री कानू जागरूक करबा खातर कार्यशाला राखी गई। जावर माइसा सामुदायिक भवन माए राखी जी इन कार्यशाला माए सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत और विधायक शांति देवी भाग लेना। इन मौके कास्तकारा ने रासायनिक खाद रे बिना खेती और नवाचार करबाने प्रेरित करियो गयो। प्रदेश में प्री मानसून रो सिलसिलो तेज बह रियो है। पश्चिमी विक्षोभ रा असर उलारला 24 घंटा माए राज्य पूर्वी और पश्चिमी हल्का माए कुछ एक थोड़ा माथे बादल गरज बारे साके कटे कटे छितरायो में बरसियो। राज्य रा पूर्वी और उत्तरी हल्का रे सा गई शेखावाटी के तरह जिला माए कई थोड़ा माथे आंधी बारिश रो दौर चाल रियो है। राजधानी जयपुर माए दोपहर पछे मौसम पलट बसु कई थोड़ा माथे हल्को में बरस बसु दिन और रात रात तापमान माए गिरावट आई है। मौसम महकमो आज प्रदेश रा 9 जिला ऑरेंज अलर्ट जारी करियो है। वठीने जैसलमेर रे अलावा सगला जिला में येलो अलर्ट ऐलान करियो गयो है। अठीने मौसम सुहावनो वेवासु गर्मियारी छुट्टियां रे चालता प्रदेश री से सपाटारी थोड़ा माथे रौनक देखी जा रही है। राजधानी जयपुर में लाड़ला कुछ एक दिनाओं घरेली सैलानिया री तादाद बढ़ी है। पर्वतीय पर्यटन थौड़ आबूराज माए आदिना राजस्थान रे सागे ही पड़ोसी राज्य गुजरात भी बड़ी संख्या में सैलानी पुगरिया है। बत्ती जानकारी महाका सिरोही खबर नबी सु।
3: माउंट आबू में इन दिनों पर्यटकों की अच्छी खासी चहल पहल देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में पर्यटक परिवार सहित माउंट आबू पहुंच रहे हैं और यहां के सुहावने मौसम का आनंद ले रहे हैं। प्रदेश के अन्य जिलों की तुलना में यहां का मौसम काफी राहत भरा बना हुआ है। रविवार को आसमान में बादल छाए रहने से मौसम और भी खुशनुमा हो गया, जिससे पर्यटकों ने विभिन्न पर्यटन स्थलों पर घूमने के साथ प्राकृतिक सौंदर्य का भरपूर आनंद लिया। साकेत गोयल, आकाशवाणी समाचार, सिरोही।
0: आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में आज भारत आपरा पहला मैच में पाकिस्तान रे सागे खेलेला। ग्रुप ए रो बकिंगम में एज वेस्टर्न माए भारतीय टीम रे मुजब सिंजा 7 बजे शुरू वेला। महिला टीम 20 अंतरराष्ट्रीय मैचा माए भारत हाल ताई पाकिस्तान ने 16 मई सू 13 मुकाबला माए हरा चुकियो है। विश्व रक्तदाता दिवस माथे आज प्रदेश भर में एक एक विधि राखी गई। सुरक्षित रक्तदान रा महत्व बारा माए जागरूकता लियाबा और स्वैच्छिक रक्तदान खातर प्रेरित कर बारा लगसू न्यारा न्यारा संगठन और संस्थानारी कानियो कार्यक्रम राखिया गया। अजमेरा जवाहरलाल नेहरू सफाखाना माए सम्मान समारोह राख्यो गयो। रक्तदाता जीवनदान विषय माथे वक्ता आपरा विचार राख्या। भीलवाड़ा माए रेड क्रॉस सोसायटी री कानियो राख्या कार्यक्रम माए जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधु रक्तदाता वारो सम्मान करियो। और अब है आखिर माए खास खबरां एक कर फेरूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत फ्रांस साझेदारी ने आपसी विश्वास साझा मूल्य और भविष्य खातर समान दृष्टिकोण माथे आधारित बतायो। केंद्रीय री नरेंद्र मोदी सरकार 12 बरस पूरा होबारे मौके राज्य भर में जागरूकता प्रदर्शनियां रखी गई। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सरकारी उपलब्धियां गिनाई। राज्य में चल रहे शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर में लोगारी समस्यावारो मौका माथे समाधान वैरियो है। और प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां तेज पूर्वी और उत्तरी जिला रे सागे कई थोड़ा माथे आंधी और बारिश। इन सागे ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन अठे पूरो भी मां को आगलो समाचार बुलेटिन कल सुमारे 9 बजे हिंदी में प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।
4: FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। शाम के 7 बजे हैं। श्रोताओं लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ों में मिलन फिल्म का एक गीत अभी आपने सुना। अगला गीत सुनिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में दोस्ती फिल्म से।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले केंद्र सरकार के 12 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में समाचार सेवा एकांश द्वारा विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत सशक्त भारत विषय पर कार्यक्रम। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे हैं गौरव श्रीवास्तव।
1: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूँ गौरव श्रीवास्तव। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जब भी बात होती है तो हमने देखा है कि बीते एक दशक में, या यूं कहें कि जब से मोदी सरकार आई है, बीते 12 वर्षों में लगातार इसमें प्रगति देखने को मिल रही है। और ये प्रगति इसलिए भी है क्योंकि लगातार जो अलग अलग तरीके से इसमें इनिशिएटिव्स लिए गए और लगातार जो इस पर फोकस किया गया, उससे आज जो क्रांति आई है वो बदलते दौर की एक नई तस्वीर पेश कर रही है। इन तमाम अहम पहलुओं पर हम बात करेंगे और जानेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या इसके अलावा स्पेस सेक्टर हो, इसके अलावा अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं या क्वांटम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, ये सब कुछ इतना बड़ा हुआ है बीते 12 वर्षों में, अभी हाल में कहां पे है और किस तरह से जो फ्यूचरिस्टिक प्लान है वो क्या कुछ कहता है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र सिंह हमारे

0: जुड़ रहे हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं सर, बहुत स्वागत आपका।
1: धन्यवाद।
0: पहला सवाल सर यही है, 12 साल और उसके बाद जो लगातार इनिशिएटिव्स लिए गए, बहुत बड़ी गति मिलती हुई नजर आई है साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, कैसे इस सफर को देखते हैं और क्या बड़ा होने वाला है जिससे भविष्य और ज्यादा बेहतर भारत का नजर आता है?
1: जैसे कि आपने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद जहां तक विज्ञान को लेकर के अगर हम बात करें या साइंस टेक्नोलॉजी की, तो एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ
0: जी।
1: उसका प्रमुख बिंदु एक तो ये था कि इसको बहुत ज्यादा प्राथमिकता हासिल हुई। पहले साइंस टेक्नोलॉजी संबंधित विषयों को बहुत ज्यादा प्राथमिकताएं नहीं मिलती थी पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स की तरफ से, और प्रधानमंत्री जी स्वयं इसमें रुचि लेने लगे। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया गया, ये समझते हुए कि अगर आज की दुनिया में हमें इससे आगे बढ़ना है तो हम साइलोज में नहीं चल सकते
0: जी।
1: और तीसरा, विज्ञान में जहां ईज ऑफ रिसर्च वो तो लाजिम अनिवार्य है, उसके साथ साथ अंततः उसका लक्ष्य है ईज ऑफ लिविंग फॉर अ सिटीजन, तो उसको सिटीजन सेंट्रिक भी बनाया गया
0: जी।
1: हमारे बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव गत 12 वर्षों में ऐसे रहे हैं जिनका सीधा सीधा ताल्लुक नागरिक के साथ है या नागरिक के जीवन के साथ है, और जिसका परिणाम यह हुआ है कि आज मेन स्ट्रीम मीडिया जो पहले विज्ञान संबंधी समाचारों को या गतिविधियों को बहुत ज्यादा प्राथमिकता नहीं देता था, उसमें भी जिस तरह से हमारा स्पेस की अचीवमेंट्स हुई, तो मैंने उस दिन भी कहा था कि स्पेस हैज गिवन अस स्पेस इन मेन स्ट्रीम मीडिया चंद्रयान के माध्यम से। अरोमा में जब लेवेंडर आया, अभी हाल ही में तीन चार या दो या तीन दिन का कैंप था मुंबई में
0: जी,
1: तो हमारे युवा लगभग 30-40 या 50 लाख का लेवेंडर तेल फरोख्त करके आए हैं, तो एक नया एवेन्यू रोजगार का आ गया। इसी प्रकार यदि हम बात करते हैं क्वांटम की, तो मीडिया का भी उससे ताल्लुक है
0: जी,
1: डिफेंस का भी ताल्लुक है, और इसलिए सबको रुचि भी आई। हमने अपने लिए 8 साल का टारगेट रखा था, उसमें से आधा हिस्सा जो हमें 4 साल तक तवक्को थी कि हम पूरा कर लेंगे, वो 3 साल में ही मुकम्मल हो गया। तो अनेकों ऐसे स्काई कास्ट जो भी इंस्टॉल किया गया है, जिसके माध्यम से जब कोहरे का मौसम होता है तो बहुत दिक्कत आती है फ्लाइट्स में
0: जी,
1: पायलट को भी दिक्कत आती है, यात्रियों को भी असुविधा होती है, तो उसमें बहुत सारी बेहतरी हो कि इस प्रकार से फॉग की प्रेडिक्शन और ज्यादा एक्यूरेट प्रिसाइज हो टाइमिंग, तो ये चूंकि नागरिकों के साथ प्रेडिक्शन और ज्यादा एक्यूरेट प्रिसाइज हो टाइमिंग, तो ये चूंकि नागरिकों के साथ संबंधित ये विषय है। इसी प्रकार चाहे आप हमारा गवर्नेंस का ले लीजिए, तो हमारा सीपी ग्राम मॉडल है जिसको हमने AI चैटबॉट के साथ जोड़ दिया, अभी 2 ही दिन पहले की बात है, तो उससे भी आम नागरिक, जहां एक जमाने में 2014 से पहले कुल मिला करके हमारे यहाँ सरकार में 2 लाख शिकायतें आती थी पूरे हिंदुस्तान में साल भर में, आज वही संख्या बढ़कर के 25-30 लाख हो गई, क्योंकि लोगों की रुचि बढ़ी, क्योंकि वी वर प्रॉम्प्ट, वी वर रिस्पॉन्सिव, वी आर फॉलोइंग टाइम लाइन। हमारे 95-97% जहाँ पुराने जमाने में 2-2.5 महीने लगते थे अगर जवाब आए, जवाब कई बार आता ही नहीं था, वहाँ हमने ये सुनिश्चित किया कि हर ग्रीवेंस का जवाब भी आएगा, AI ड्रिवन भी होगा, और कोई ह्यूमन बात भी करेगा उससे, और उसकी टाइम लाइन घटा करके 12-13 दिन कर दी गई और बहुत जल्दी 1 हफ्ता हो जाएगी।
0: बिल्कुल सर, इसके अलावा भी हमने देखा है कि जब फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो भी हमें हाल ही में देखा कि बहुत बड़ा कीर्तिमान और उपलब्धि हासिल करते हुए नजर आया, कितना बड़ा चैलेंज था, क्योंकि होमी बाबा ने इसकी नींव बहुत पहले रखी थी कि इसको अलग अलग फेजेस में किया जाएगा, पहला दूसरा फेज और उसके बाद तीसरे की ओर आगे बढ़ना, थोरियम क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा है, ये मात्राएं किस तरह से दिखाती हैं कि भारत का जो बढ़ता हुआ कदम है वो और ज्यादा सशक्त होता हुआ नजर आ रहा है?
1: बहुत अच्छी बात कही, बल्कि मैंने उस दिन जिस दिन हमारा ये टारगेट अचीव हुआ तो मैंने ये कहा था कि होमी बाबा ने जो स्वप्न देखा था उसकी पूर्ति मोदी जी के हाथों से हुई है, द विंडिकेशन ऑफ होमी बाबाज ड्रीम हैज हैपेंड थ्रू प्राइम मिनिस्टर मोदी। और अगर आप जरा गंभीरता से गहराई से सोचे तो समझ में आएगा कि होमी बाबा कितने दूरअंदेश व्यक्ति थे, हिंदुस्तान की परिस्थितियों को समझते हुए,
0: बिल्कुल
1: हमारे साधनों की लिमिटेशंस को समझते हुए उन्होंने हमें एक 3-स्टेज प्रोग्राम दिया, जो 3 स्टेजेस उन्होंने दी थी उसमें धीरे धीरे प्रगति हो, उस तरह से कैसे उन्होंने तय किया कि पहले स्टेज में हम प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर का इस्तेमाल करेंगे। हैवी वाटर होता है थोड़ा सा अलग किस्म का, जैसे आम पानी को आप H2O कहते हैं, हाइड्रोजन ऑक्साइड, ये होता है D2O ब्यूट्रोस ऑक्साइड, लेकिन उसमें लाभ ये रहता है कि उसमें आम यूरेनियम इस्तेमाल होता है जो आपको पहाड़ों से या कोस्टल एरिया से मिलता है, उसमें कुछ एनरिचमेंट नहीं करनी ट्रीटमेंट, तो उसको इस्तेमाल से वो यूरेनियम 239 इस तरह से,
0: उसकी मात्रा भी सर कम है,
1: मात्रा भी कम है, और उसका जो स्पेंट फ्यूल निकलता है प्लूटोनियम, तो होमी बाबा का ये तसव्वुर था, ये कल्पना थी कि जब हम उसमें थोड़ी सी महारत हासिल कर लेंगे तो उस प्लूटोनियम जो वहां का स्पेंट फ्यूल निकलेगा उसी को हम दूसरी स्टेज में इस्तेमाल करेंगे, कैसे उसको यूरेनियम 239 के साथ जोड़ के जो थोड़ा सा एनरिच्ड है
0: जी,
1: तो एनरिच्ड यूरेनियम को जब हम प्लूटोनियम के साथ जोड़ेंगे, जिसे विज्ञान की भाषा में मिक्स्ड ऑक्साइड फ्यूल भी कहा जाता है
0: जी,
1: तो उससे एक रिएक्टर के लिए एनर्जी भी इजाद होगी और साथ ही साथ

0: लेकिन है वो ईंधन ही, फ्यूल ही है। और इस तरह से थोरियम से प्राप्त हुआ, सोडियम से पैदा किया गया, यूरेनियम हमें मिलेगा जो हम तीसरी स्टेज में इस्तेमाल करेंगे। और जब हम उस स्टेज पे पहुंच जाएंगे तो दूसरों पर हमारी निर्भरता कम हो जाएगी, क्योंकि ये थोरियम तो हमारे घर में मौजूद है। तो इस तरह से किया था। और ये जो आपने कहा अप्रैल मास में हम दूसरी स्टेज पर पहुंच गया, जहां प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इजाद किया गया और इसकी धूम सारी दुनिया में है। साथ ही साथ चूंकि शांति एक्ट भी आया, वो भी प्रधानमंत्री जी के ही हस्तक्षेप से हुआ, बिकॉज पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स के लिए जरूरत बात होती है कि न्यूक्लियर सेक्टर को खोल देना प्राइवेट प्लेयर्स के लिए, और किसी ने इसकी
1: प्राइवेट सेक्टर के लिए जब खोला गया, न्यूक्लियर का सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के लिए जब मर्ज होता हुआ नजर आ रहा है और खोला गया, ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मानते हैं उन लोगों के लिए जिनके बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं जो इसमें कुछ करना चाहते हैं?
0: बिल्कुल, ये आपने अच्छा किया पूछा। पहली बात तो ये है कि एक बहुत क्रांतिकारी निर्णय था। बहुत कम देश ऐसे हैं दुनिया में जिन्होंने अपने न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर के लिए खोला है
1: जी।
0: तो इसके लिए भी जैसे मैंने कहा, इट रिक्वायर्स पॉलिटिकल विल, पॉलिटिकल करेज, पॉलिटिकल कन्विक्शन, वो मोदी जी के कारण संभव हुआ। अब जब खुल गया तो कई लोग जो शायद सिनिसिज्म की वजह से कहते हैं या आलोचना की दृष्टि से कहते हैं कि साहब अब बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज के लिए खोला गया, ऐसा नहीं है। बल्कि जो हमने शांति एक्ट लाया है उसमें अलग अलग स्लैब्स रखी हैं। अगर आप 1000 मेगावाट का लगाना चाहे तो आपकी स्लैब कम है, बड़ा लगाना चाहे ज्यादा 100 मेगावाट का लगाएं। अब तो स्मॉल रिएक्टर्स हैं, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स भी हैं, दूसरे स्मॉल रिएक्टर्स हैं जो 200 मेगावाट से भी कम कैपेसिटी के होते। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक बड़ा इकोसिस्टम बनाया गया है पिछले 12 साल में, जिसको आप कंबाइन करके कुछ एक लोग अगर युवा मिल जाएं, एक ग्रुप बनाए स्टार्टअप का एंड देन मैच्योर इनटू एंटरप्रेन्योरशिप। तो जैसे हमारा RDI फंड भी है, 50% सरकार की ओर से मिलता है बहुत कम इंटरेस्ट पर, तो आप एक छोटा रिएक्टर भी लगा सकते हैं। यानी दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि शांति एक्ट के आने के बाद और प्राइवेट सेक्टर खोलने के बाद, बड़े हाउसेस तो अलग बात है, लेकिन जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं स्टार्टअप्स के, एंटरप्रेन्योर्स के, उनके लिए भी लाइवलीहुड, रोजगार का एक नया साधन और बड़ा ल्यूक्रेटिव साधन होगा। और आने वाले जमाने में इसकी मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये युग है, उसमें न्यूक्लियर एनर्जी का होना लाजिम रहेगा ही रहेगा।
1: बिल्कुल सर, एक सवाल और, एक बड़ी उपलब्धि जो लगातार हम देख रहे हैं कि आपके नेतृत्व में भी आगे बढ़ती हुई नजर आई है, क्वांटम टेक्नोलॉजी को लेकर, उसके नेटवर्क को लेकर। कहा तो 8 साल का एक रोड मैप तैयार किया गया था 2000 किलोमीटर का, 1000 किलोमीटर 2 साल के अंदर अंदर पूरा हो गया। क्या चैलेंजेस इसके पीछे और कैसी उपलब्धि इतनी जल्दी हासिल की गई?
0: क्वांटम मिशन हमने लॉन्च किया था सन 2023 में और 8 साल के लिए एक प्लान बनाया था। उस समय भी मैंने ये कहा था कि क्वांटम मिशन की लॉन्चिंग मात्र फिजिकल लॉन्चिंग नहीं है, इसमें एक बड़ा सिंबॉलिक मैसेज भी गया है। वो ये कि हम उन चंद एक 4-5 देशों में हैं जिनका क्वांटम मिशन है। यानी वो जमाना जाता रहा, एक दुनिया भर में ये पैगाम गया कि वो जमाना जाता रहा जब कोई इनिशिएटिव कोई और देश लेता था और फिर 10-15 बरस के बाद हम उसका अनुसरण करते, चाहे वो टेलीविजन था, चाहे वो इंटरनेट था, चाहे वो मोबाइल थे जो अमरीका में 1950 के दशक में, यहाँ पे 1970 के दशक में पहुंचे या सीखे। अब हम बराबर चल रहे हैं तो क्वांटम में। और फिर हमने जब 8 साल का टारगेट बनाया, क्योंकि उसके 4 verticals हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेंसिंग, क्वांटम मटेरियल्स, तो उसके लिए 8 साल के अलग अलग टारगेट्स बनाए गए। और जैसे आपने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण रहता है कम्युनिकेशन, क्योंकि एनक्रिप्टेड सिक्योर, हालांकि अभी भी आपके व्हाट्सएप इनक्रिप्टेड है लेकिन वहां ऐसा होगा कि वो संभव ही नहीं होगा उसको अनक्रिप्ट करना। डिफेंस की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, मीडिया की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण। उसमें हमने टारगेट रखा था कि हम 2000 किलोमीटर तक क्षमता विकसित करेंगे 8 वर्षों में क्वांटम कम्युनिकेशन करने की, लेकिन उसमें से आधी जो 1000 है हमने 2 या 3 सालों में कर ली
1: जी।
0: यानी हम 8 साल का टारगेट हो सकता है 8 साल से पहले ही कर लें और हम उससे आगे बढ़ जाएं।
1: बिल्कुल सर, एक सवाल और आता है कि जैसे हम बायोटेक्नोलॉजी की जब बात करते हैं, क्योंकि हमने तमाम क्षेत्रों को देखा कि किस तरह से उनमें प्रगति नजर आई, बायोटेक्नोलॉजी में जब हम उम्मीद प्रोग्राम की बात करते हैं, किस तरह से ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा किफायती होगा, उनको सुविधा पहुंचाता हुआ नजर आएगा जो जेनेटिक डिजीजेस से कहीं ना कहीं 2-4 हो रहे हैं और कई बार टेस्ट भी कराते हैं लेकिन पता नहीं चलता, क्या है सर ये उम्मीद प्रोग्राम और कैसे लोगों को फायदा होगा?
0: ये बात करने से पहले मैं ये थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं कि ये इसलिए संभव हुआ कि वहां पर भी अभी कोई 2-3 साल पहले हमने बायो E3 पॉलिसी लाई, उसमें भी हमारी पहल है। बहुत चंद एक देशों में जिनकी एक डेडिकेटेड बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी है, बायो E3, अर्थात बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, बायोटेक्नोलॉजी फॉर एनवायरमेंट, बायोटेक्नोलॉजी फॉर एम्प्लॉयमेंट। और वो भी तभी संभव हुआ जब प्रेजेंटेशन प्रधानमंत्री जी के आगे रखी गई तो उन्होंने अपने बाकी साथियों को भी ये समझाया कि आज शायद इसका महत्व ना समझ आए लेकिन कल हम किसी देश से पीछे नहीं रहेंगे, क्योंकि ये भी दुनिया भर में अर्थशास्त्रियों का भी मानना है कि आने वाली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बायोटेक्नोलॉजी ड्रिवन होगी, जेनेटिक ड्रिवन होगी, रीसाइक्लिंग होगा, सिंथेटिक प्रोडक्ट्स का होगा, यानी इकोनॉमी का शिफ्ट मैन्युफैक्चरिंग से हट करके सर्कुलर की तरफ चला जाएगा, जेनेटिक्स की

0: और उसमें अभी हमने पहल कर ली है और हमारा हिंदुस्तान ऐसा है कि यहाँ पर जीन्स को ले तो बड़ी डाइवर्सिटी है
1: जी।
0: हमने उसमें भी सीक्वेंसिंग 10,000 देशवासियों की करने में हम अभी तक सफल हो चुके हैं। हमारा इनिशियल टारगेट है अबाउट 1 मिलियन। इसी प्रकार रेयर डिजीजेस, वो जेनेटिक डिजीजेस जो पैदाइश से होती हैं, कभी कभी उनके सिम्टम्स हो सकता है पैदाइश के समय या जन्म के समय जाहिर ना हो, थोड़ा आगे चल करके हो, क्योंकि इन बीमारियों की संख्या बहुत कम हो रहती है, बहुत कम, चाहे वो सिकल सेल एनीमिया है, चाहे वो नीवन पिक डिजीज है, इस तरह के, इसलिए इसको प्राथमिकता भी कम मिलती थी, इसलिए इसके डायग्नोसिस की सुविधाएं भी दुर्लभ थी, इसलिए इसकी दवाई भी बहुत महंगी थी। लेकिन कोई छूट ना जाए कोई भी नागरिक हमारे शोध से, हमारी सेवाओं से, तो इसलिए उम्मीद का कार्यक्रम शुरू किया, जिसके तहत लगभग अभी भी 3 लाख ऐसे लोग हैं जिनको इसका लाभ पहुंचा है
1: जी।
0: और उसमें हम अलग अलग चरणों में, उसमें जो रेयर जेनेटिक डिजीज है उनमें किस तरह से सहयोग दिया जा सके मरीज को, डायग्नोसिस कैसा हो, अर्ली डिटेक्शन हो, उसके बाद टेस्ट की क्या फैसिलिटी रहे, औषधियों की क्या रहे, उसको लेकर के
1: जी।
0: और इसी तरह से हमने बायोटेक्नोलॉजी का अगर आप देखें तो बायो E3 पॉलिसी के ही तहत हिंदुस्तान का सबसे पहला एंटीबायोटिक भी हमने याद किया है। अभी तक जितने एंटीबायोटिक थे, जब पहला एंटीबायोटिक आया था सन 1948 के लगभग, पेंसिलिन, उस समय पाउडर का था, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उसका पाउडर थोड़ा इस्तेमाल किया गया था वुंड्स पे, तो वहां से पता चला कि सभी इन्फेक्शन के लिए फायदेमंद रहता है। उसके बाद इसके इंजेक्शन बने, बाद में टेबलेट बनी, तो उसको इस समय क्वीन ऑफ ड्रग्स कहा जाता था। लेकिन तब से लेकर के जितनी भी सक्सेसिव जनरेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स हुई है, चाहे वो पेंसिलिन के बाद क्लोरोफेनिकॉल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, जेटा, वो सारी बाहर से सॉल्ट आते हैं। पहली बार हमने यहाँ ट्रायल किया, यहाँ सॉल्ट ट्रायल किया और प्राइवेट पार्टनर के साथ उसकी हम मार्केटिंग कर रहे हैं।
1: सर अब बात करेंगे स्पेस की, क्योंकि स्पेस में बहुत सारा काम हुआ है, गगनयान मिशन पर सबसे ज्यादा नजर है, क्या तैयारियां उसको लेकर, और बीते दिनों में जो हमने देखा चाहे चंद्रयान मिशन हो या इसके अलावा अलग अलग जो मिशन लॉन्च किए जा रहे हैं उसमें कितनी प्रगति मिलती हुई नजर आ रही है जो गगनयान मिशन को बहुत सक्सेसफुल बनाए।
0: मुझे लगता है कि स्पेस सेक्टर में सबसे पहला क्रांतिकारी मोड़, जैसे एटॉमिक को लेकर के आपने शांति की बात की, वो था 5 बरस पहले, जबकि जैसे मीडिया ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज अनलॉक्ड स्पेस सेक्टर, पहली बार स्पेस को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल दिया गया, क्योंकि हमारा ये मानना है कि विज्ञान, शोध, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, कमर्शलाइजेशन तभी संभव है कि आप प्राइवेट सेक्टर को पहले दिन से ही साथ लेके चले।
1: सर ये इससे भी कनेक्टेड है जो प्राइवेट रॉकेट्स भी लोग जो बना रहे हैं अलग-अलग कंपनी।
0: निश्चय, अब देखिए आज से 5 साल पहले हमारा स्पेस इकोनॉमी हिंदुस्तान की कोई बहुत ज्यादा उल्लेखनीय नहीं थी, आज हमारी स्पेस इकोनॉमी लगभग $9 बिलियन और इतनी तेज रफ्तार से बढ़ रहा है कि आंकलन ये लगाया जाता है, हमारी जो प्रोजेक्शंस इंडिकेट करती हैं कि अगले 8-10 सालों में हम 5-6 गुना बढ़ करके $40-45 बिलियन हो जाएंगे, जिसका अर्थ ये हुआ कि स्पेस इकोनॉमी विल बी एन इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी एज वी मूव टूवर्ड्स 2047। और हमारा स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप सिंगल डिजिट हुआ करते थे, आज 400 से बढ़ गए, और एक हाल ही में शुरू हुआ स्टार्टअप हमारा यूनिकॉर्न भी हो गया पिछले ही कुछ दिन पहले। अब प्राइवेट सेक्टर में रॉकेट्स भी बनाए जा रहे हैं, लॉन्चिंग्स भी हो रही हैं, और वो इसलिए संभव हुआ है कि प्राइवेट सेक्टर का सहयोग पब्लिक सेक्टर के द्वारा हो रहा है और दोनों एक समन्वय बना करके कोलैबोरेटेड अप्रोच के साथ चल रहे हैं। और आने वाले समय में हिंदुस्तान की ये भी खासियत है, हमारे रॉकेट्स तो जा ही रहे हैं, रॉकेट से खबर हमारी बड़ी ज्यादा बनती है, जैसे चंद्रयान के लेकर के, इट्स अ वेरी फैसिनेटिंग साइट, लेकिन हिंदुस्तान की ये विशेषता है कि हमने स्पेस सेक्टर को जितना स्पेस मिशन के लिए इस्तेमाल किया है उससे अधिक नागरिक जीवन में सुविधा लाने के लिए, ईज ऑफ लिविंग, उदाहरण के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी जी के इस सुझाव पर गति शक्ति शुरू किया। गति शक्ति इज अ ग्लोबल मॉडल जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन में काम आता है, उसकी मॉनिटरिंग में, उसकी टाइमलाइंस को निर्धारित तरीके से संभालने में, उसकी जो बाधाएं हैं, तो ये गति शक्ति इज अ स्टोरी। हमारा लैंड फार्म्स को लेकर के जो कार्यक्रम है, ड्रोन्स और स्पेस को लेकर के, उसमें भी हमारा स्पेस का ही काम आ रहा है, हमारे मीडिया और टेलीविजन चैनल्स तो ही हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि हमारा स्पेस सेक्टर इज वर्चुअली इन एवरी हाउसहोल्ड, एवरी इंडियन हाउसहोल्ड टुडे। और वॉरफेयर आपने देख ही लिया ऑपरेशन सिंदूर में, उसमें दो ही विभाग थे मुख्य तौर पर, एक स्पेस सेक्टर और दूसरा न्यूक्लियर सेक्टर, तो ये सारा वॉरफेयर उससे हमारी क्षमताएं। और आज ये स्थिति है कि हमारी ब्रह्मोस मिसाइल्स हम ना केवल इंडिजिनस बना रहे हैं बल्कि इंडिजिनस को एक्सपोर्ट कर रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: हमारा डिफेंस सेक्टर अधिकतर इंपोर्ट्स पर डिपेंड करता था 2014 से पहले, 2025 में हमारा डिफेंस प्रोडक्शन 1.5 लाख करोड़ से अधिक है और हमारा एक्सपोर्ट हुआ है लगभग 23,000 करोड़ दूसरे देशों के। हमारी ब्रह्मोस मिसाइल वियतनाम में जा रही है, इंडोनेशिया जा रही है, और बहुत सारे है हमारे डिफेंस इक्विपमेंट्स यूरोपियन देशों में, फ्रांस इत्यादि में जा रहे हैं। इसी तरह से आप देखेंगे स्टार्टअप्स में।

0: जब शुरू हुए तो 350-400 थे, आज हम तीसरे दर्जे पहुंच गए लगभग 226,000 से अधिक
1: जी।
0: और उनके माध्यम से जो जॉब्स जनरेट हुए उनकी संख्या लगभग 24 लाख है। इसी प्रकार हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हम नंबर ऑलमोस्ट 90-80 थे, अभी हम के 38 आ गए। पेटेंट्स में हम नंबर 6 हैं दुनिया में, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और उसमें से 55% ऐसे हैं जो रिजाइडिंग इंडियन है, बाहर जाके शोध करते थे। ये बच्चे वो हैं जिन्होंने यहीं शोध किया, यहीं पले बले और यहीं से उन्होंने पेटेंट फाइल किए
1: जी।
0: और यही कारण है कि आज विश्व हमें निगाह उठाकर देखता है, बड़ी तवक्को के साथ देखता है कि अब वो नहीं रहा कि वी आर नॉट देयर टू बी लेड, द वर्ल्ड लुक्स अप टू अस टू लीड। तो ये एक बहुत बड़ा हमारा भी माइंडसेट बदला है और दुनिया का नजरिया बदला हमारे प्रति।
1: भारत टेक्नोलॉजी क्योंकि क्रिएटर बन रहा है, ऐसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आप कितना बड़ा योगदान मानते हैं, और तमाम क्षेत्र, चाहे हम क्वांटम की बात करें वो भी, और इसके अलावा रक्षा की हम बात कर रहे हैं वहां पर भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किस तरह से जो नई गति है वो देते हुए नजर आ रही है, अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें?
0: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो एक ऐसा टूल है
1: जी
0: जो अभी इट्स नो लॉन्गर एन ऑप्शन, इट्स अ नेसेसिटी, ये तो इस्तेमाल में होगा ही, चाहे कोई भी क्षेत्र होगा, हेल्थ होगा, कम्युनिकेशन होगा, रिसर्च होगा, लेकिन वन हैज टू बी इंटेलिजेंट इनफ टू यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और हमने जो कई ऐसे प्रयोग किए हैं जहां हाइब्रिड मॉडल बड़े कामयाब साबित हुए, यानी जैसे हमारा सीपी ग्राम्स है, ग्रीवेंस रिड्रेसल, उसमें हम एआई के द्वारा चैटबॉट भी रखा है, एआई के द्वारा डिस्पोजल भी होता है, लेकिन डिस्पोजल के बाद शिकायतकर्ता से बातचीत वार्तालाप एक व्यक्ति करता है, उससे उसको थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन लेवल होता है। इसी तरह से हमने टेलीमेडिसिन में भी कुछ प्रयोग किए हैं जहां हम एक फिजिकल डॉक्टर बिठाते हैं साथ में एआई डॉक्टर। एआई का लाभ ये है कि अगर आप चिकित्सा जगत को ले लें, या जीन्स की बात कर रहे हैं, तो इतने सारे जीन्स को स्क्रीन करने में हमें कई दशक लग जाएंगे, यहाँ मिनटों में बात हो जाती है। ईज ऑफ वर्किंग बहुत ज्यादा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, और जो लैंग्वेज मॉडल्स हैं, चाहे लार्ज लैंग्वेज मॉडल, स्मॉल लैंग्वेज, उसका हमने इस्तेमाल किया है, एग्रीकल्चर के लिए अलग बनाए हैं, मौसम विभाग के लिए अलग मॉडल्स बनाए हैं, वो भी चूंकि मौसम विभाग भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है, उसमें हमने अब नव कास्ट का रखा है। नव कास्ट यानी आप घड़ी देख के 3 घंटे का प्लानिंग कर सकते हैं, अगर आपने कहीं मीटिंग पर जाना कि छतरी लेके जाएं कि ना जाएं, और हमने शुरू उसको किया जो ज्यादा रेन प्रोन एरियाज थे, जैसे मुंबई है, चेन्नई है। इसी प्रकार अब नव कास्ट के ही तर्ज पर स्काई कास्ट शुरू किया, जो फॉग डिटेक्शन कर सकता है, जो एयरक्राफ्ट है उनके लिए। तो हर क्षेत्र में इस तरह से टारगेट्स रखे गए कि हम दुनिया के दूसरे देशों की बराबरी कर सके। और इस वक्त अगर दुनिया में हिंदुस्तान की साख बड़ी है, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान भारत की टेक्नोलॉजी इनोवेशंस में तरक्की का है।
1: सर, ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ से किस तरह से आप इसको देखते हैं, और ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ से क्या कदम उसकी ओर बढ़ाए जा रहे हैं?
0: ग्रीन हाइड्रोजन में भी हमारा मिशन है, इस सरकार ने 2023 में हमने नेशनल क्वांटम मिशन शुरू किया, 2024 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन, उसमें भी हमारे 4 अलग अलग हैं, एआई कंप्यूटिंग, एआई डेटा, AI इनोवेशन सेंटर्स, AI फ्यूचर स्किलिंग, और इसी तरह से ग्रीन हाइड्रोजन भी लगभग उसी समय में लॉन्च हुआ है। ग्रीन हाइड्रोजन में हम धीरे धीरे तरक्की कर रहे हैं, हमने बजट में भी जो घोषणा की गई थी कि हमारे 5 स्मॉल रिएक्टर्स होंगे
1: जी,
0: तो स्मॉल और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स टिल 2033, उनमें से हमारे 3 पर काम शुरू हो चुका है, 3 में से 1 है जो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है। हाइड्रोजन में हमें थोड़ी सी दिक्कत यह है कि उसको स्केल अप करने में, अगर फ्रैंकली स्पीकिंग, इलेक्ट्रोलाइजर्स वगैरह जो हमारे हैं उनका शायद अभी कैपेसिटी कम है, लेकिन धीरे धीरे जैसे हम स्केल अप करेंगे तो उसकी कीमत भी घटेगी और उसकी मात्रा भी बढ़ेगी, और ये सारा एक पूल बनेगा, हाइड्रोजन सोर्स, न्यूक्लियर सोर्स, रिन्यूएबल, और रिन्यूएबल में भी विंड सोर्स, सोलर सोर्स के हम नए नए एरियाज तलाश कर रहे हैं। जैसे हमने ओशन, क्योंकि डीप ओशन मिशन भी इसी सरकार ने शुरू किया, वहां पर एक और कंपोनेंट हमने ओशन एनर्जी का रखा है, यानी समुद्र के पानी के ऊपर, समुद्र के तट के ऊपर आप अगर सोलर शीट्स बिछा दे तो आपको रिन्यूएबल एनर्जी, समुद्र में चलती हुई तेज हवाओं का आप इस्तेमाल करें तो उसमें भी एनर्जी, समुद्र में जब नदी जाकर के तेज रफ्तार से जुड़ती है तो उसके बीच जो फ्रिक्शन पैदा होती है उससे भी एनर्जी, समुद्र में जब टाइड आता है खतरे का बायस तो ही है, लेकिन साथ में जैसे कहते हैं कि एवरी एडवर्सिटी इज अकंपनीड विद अ वर्च्यू, उससे भी बिजली याद होती है, तो समुद्र से भी अलग अलग रिन्यूएबल एनर्जीज। और मुझे लगता है कि सन 2047 जो हमने कहा, वहां 100 गीगावाट तो न्यूक्लियर एनर्जी होगी, जो लगभग 10-15% पूरे हमारी जरूरत का हिस्सा बनेगी, लगभग 60-70% हमारा न्यूक्लियर एनर्जी होगी।
1: बिल्कुल सर, हमें कोई फाइनल मैसेज 12 साल और उसके बाद जो लगातार साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काम हुआ है उसको लेकर दर्शकों तक?
0: मुझे लगता है कि 12 साल और इसके आगे हम कैसे जाएंगे, 2047 का हम लक्ष्य कैसे प्राप्त करेंगे, अक्सर चर्चा की जाती है लेकिन इसको साइंटिफिक ढंग से नहीं सोचा जाता
1: जी।
0: वो उन सेक्टर से जो पहले ना तलाशेंगे ना तराशेंगे, इधर अनएक्सप्लोर्ड और अंडर एक्सप्लोर्ड, जैसे हमारा ओशन है, भारत एक ऐसा देश है जिसका 11-12 हजार लंबा समुद्री तट है, 12-13 प्रदेश इसके तट पर बसते हैं, उसके अंदर संपत्ति ही संपत्ति है, माइंस मिनरल किसी ने नहीं देखा, अगर हम उसको तराश सके। हमारा दूसरा सरमाया हिमालयास, आज वहां से लेवेंडर निकल रहा है, पर्पल रेवोल्यूशन आया है, फ्लोरी कल्चर जो प्राण प्रतिष्ठा जब अयोध्या में हुआ तो उसमें जो ऑफरिंग की गई थी उसमें ट्यूलिप हमारे पालमपुर के इंस्टीट्यूट से आया, तो फ्लोरी कल्चर। तो ये जो सेक्टर्स थे जो पहले पूरी तरह स्पेस सेक्टर जिनको पूरी तरह से एक्सप्लॉयट नहीं किया गया था, अगर हम इनको पूरी तरह से एक्सप्लोर करने में कामयाब हो गए तो मुझे लगता है हमें 2047 से पहले ही उस स्तर पर पहुंच जाएंगे कि हम बड़े कॉन्फिडेंस के साथ 2047 का शताब्दी वर्ष मना सकें।
1: बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े इसमें और तमाम बातचीत हमसे यहाँ पर की साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर। तो ये भारत के बढ़ते हुए कदम है जो लगातार और ज्यादा सशक्त होते हुए नजर आ रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर, और जो नई नई तकनीकी जो चीजें निकल कर सामने आ रही है, बात चाहे क्वांटम एनर्जी को लेकर हो, टेक्नोलॉजी को लेकर हो, इसके अलावा जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में देख रहे हैं उसमें हो, तो ये सब कुछ दिखा रहा है कि किस तरह से भारत और ज्यादा प्रगति की ओर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और यही वो तस्वीर है जो भारत को और ज्यादा सशक्त करती हुई नजर आ रही है। नमस्कार।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ विशेष साक्षात्कार, साक्षात्कार गौरव श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन EIR और यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन EIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है।
3: We now bring you an interview with Ashish Dhawan, founder and CEO of Convergence Foundation. The interviewer is Anil Padmanabhan, journalist.
4: On 26th May 2014, the National Democratic Alliance, led by Prime Minister Narendra Modi, took the oath of office. It marked the beginning of a new political chapter in India. What followed over the next 12 years was not just a change in government, but an attempt to reshape the Indian state, economy and society at a staggering scale. Bharat Reloaded, a special series to mark the 12th anniversary of the NDA, will look back at these momentous years through conversations with policymakers, economists, entrepreneurs and investors. It will take stock of a decade that sought to reimagine India. I am your host, Anil Padmanabhan. Much of the conversation around development focuses on policies, budgets and reforms. But the real test of governance is the ability of institutions to deliver outcomes at scale. This, in turn, shines the light on state capacity. In the last 12 years, India has banked 50 crore people, conducted seamless vaccination of 100 crore people to combat the COVID-19 pandemic, and lifted more than 30 crore people out of abject poverty. Has India then cracked the code on execution? Developed the administrative capacity it lacked? To answer all this and more, we have with us today Ashish Dhawan. As founder and CEO of the Convergence Foundation, Ashish is someone who has spent years working at the intersection of philanthropy, public policy, institution building, and helping develop state capacity, and hence a perfect person for this conversation. Ashish, thank you so much for speaking.
5: Thank you for having me.
4: Ashish, I wanted to begin with your work, which is basically at the intersection of philanthropy, public policy, institution building, and strengthening state capacity. Based on this experience, has India finally begun to crack the code on execution, or what you often say, acquire the transnational muscle?
5: I think we have. As you pointed out, I think India is admired in the global south for the scale at which we have managed to achieve things. As you mentioned, with, say, something like Jan Dhan, what we've done is amazing. Or even if you look at our capital markets, when we changed the architecture to bring in SIP, no other emerging market, you know, has the scale at which. And of course, rolling out our, whether it's roads, rural roads, Saubhagya for electricity, Jal Jeevan. So I think in mission mode, we have achieved a lot with our hard infrastructure. I do think soft infrastructure is more challenging and we need to be more patient. But I believe that there has been a step up with the use of technology, with the use of mission mode, with the focus on KPIs, with the state generally developing certain muscle, this translational muscle, that I do think that it's been a game changer in the last decade.
4: Ashish, you know, you mentioned SIPs is so true, because now almost every PIN code is covered by the State Bank of India Mutual Fund. So yes, that tells you how big the footprint has become. Based on all these examples that we discussed, what is your sense about how India has grown capacity of the state or the administrative capacity?
5: Yeah, so obviously when people look at state, they tend to think of the elite services. And I think that's fine. But really what we need to look at, in my mind, is the people at mid-level and lower levels in state capacity. So if we take something like education, it has the largest base of government employees because school system is very large. We have 10.5 lakh government schools. And the reason why it's harder than, say, doing rural roads or rural electricity, at the front line, we have almost 60 lakh government school teachers. And nothing will really change in terms of outcomes unless the classroom transaction changes. So I think the hard part of this soft infrastructure is that you have to work through people. And we don't recruit that many more teachers anymore because we have achieved a fairly good pupil-teacher ratio. With our demographics now, you know, yes, we are growing a little bit in secondary school as enrollment increases. But in primary school, actually, enrollment peaked a while back. It's actually declining now as the number of births has come down over the last few years. So I think we will have to do whatever we would do with the current stock of people. The churn rate is only about 3-4%. So it's not like you can get a new breed of people. With the current set of people, how do we achieve better outcomes? That is the challenge. And I think that's a slow process. So unlike building a road, which can happen faster, I think we have to realize that this is a slow moving indicator. It'll take 10 years, 15 years to achieve the outcomes. But with a mission like Nipun Bharat, I have seen that this has already started to lead to changes on the ground in terms of teaching, teachers realizing the importance of foundational learning, teachers starting to use daily lesson plans, teachers starting to do a weekly formative assessment, teachers starting to identify the bottom half of children and see what remediation can be done to help them improve, teachers understanding the goals very clearly. I think these are big changes we have seen in the last 5 years. But even as we rolled them out in states like Uttar Pradesh, we did a great job. You found even after 5 years, there's only about 60-70% compliance because not every teacher will come on board. You know, it's a bell curve. You get the early adopters, then the others do it, then some don't. So it's hard work and you have to be patient. And so I'm very glad the government now is looking at Nipun Bharat 2.0 because government has realized that, you know, in 5 years, it's not like we're going to solve the problem. It'll need 15 years of hard work to actually make this happen at scale. So because human beings are involved at the last mile, education, health, livelihood, these are much more complicated than the hard infrastructure.
4: In fact, your foundation has worked very closely on this Nipun policy. So tell me, based on that experience, is this replicable across the country? Uttar Pradesh is the first test case for this.
5: Yeah. So actually in Uttar Pradesh, when we went meet the chief minister, he immediately said Bunyadi Shiksha is important. They already had something called Kayakalp, which was to improve the school infrastructure. So they were doing a good job. But then they started something called Mission Prerna. This is pre-COVID. And Chief Minister himself agreed to certain goals, very clear goals on oral reading fluency. Children need to read 35 words per minute in class 2 and 60 words per minute in class 3. Very clear goal was communicated to all teachers. Chief Minister took this document and made him line up all the officials. And unhone kaha ki hum shapath lete hain, you know, we will achieve these goals. So he got the whole system aligned, put a very good officer for Mission Prerna, who was there for 4 years, so there was stability. And, you know, they have seen dramatic improvement. If you look at Parakh, which is government-runs National Achievement Survey, or you look at even ASAR, which is a third-party survey, Uttar Pradesh is the most improved state and at very large scale. So they started earlier. Then Madhya Pradesh launched Mission Ankur, Haryana launched, and then after NEP, the Honorable Prime Minister decided to make it a national mission and launched Nipun Bharat. We then started to support 11 states with this mission. And as I said, we've seen the changes, we've seen real change on the ground in Nipun Bharat and the improvement. Our foundational literacy was so bad, you know, if you look at it 6 years ago. World Bank publishes this learning poverty report in terms of percentage of children at the end of class 5 who can't read class 3 text. And basically, if you've missed the bus, you missed it permanent because the curriculum by then assumes that you have to read. So 55%. And sub-Saharan Africa is much worse. But if you looked at countries like China, they were at 15%. Developed single digits. So India has a long journey, and normally countries are improving at the rate of 0.7 percentage points per year. So if we had to follow the normal trajectory, even in a decade, we would get from 55 to 48% of children. I think because we started Nipun Bharat, we are attempting to bend the curve. It's called bending the Preston curve. And I think we can do it faster. I believe we'll go from 55 down to 25. It may take 15 years, but it'll be much faster than any other country has done it before.
4: The final thought that based on the last 12 years, based on your own experiences, very short response as to how do you, is it half full or half?
5: I'm half full. I think that we are poised to do great things as a country, both economically and also on the development side. I can tell you that when I travel across the world, I mean, some countries already have done a much better job. They started earlier, like China on human development has, and economically also better. Vietnam, I think, really prioritized human development early on, much before India did. So we may have started doing it more recently, but they have been doing it for 50 years. I think the communist system brought this focus on basic health, basic education very early on. So I think that we've started on the journey. As I said, the infrastructure part, we have the formula. On the soft infrastructure part, we are developing the formula, and we need the patience. With slow-moving indicators, nobody has taken an education system from poor to fair, good to great, and lagaud a chalang and done it even in one decade. It's a journey. Even from poor to fair is a decade, 15-year journey. Then you get to the fair level and you go to good. That's another 10, 15-year journey. Even in Singapore, when they went from good to great, was a 20-year journey. So I think in this, the problem is political cycles are shorter. So you need leaders who have the confidence to back something for a longer period of time, because you may not see immediate wins like you see when a road is constructed or when water comes to a home. You do see certain, so what we also realize, because obviously politicians want to show a win, like say with reading, reading is a very hard task. So to improve reading at scale where every child can read with meaning will be impossible in 5 years. But we see that, look, about 30% of children couldn't even read letters. Can't we solve that problem in 5 years? Of course we can. We can do that. Can we at least show that the child can start to read basic text in front of their parent a little bit better than they were doing before? Of course we can. So I think we have to pick a ladder of metrics, I call it. The eventual goal may be hard, but then there are these things behind, you know, which are easier to achieve and you can show. And they are, it's part of the ladder of progress. So I think that's very important in order to keep the political salience high behind these issues.
4: Unfortunately, we are out of time. Thank you so much for speaking to us, Ashish.
5: My pleasure. Thank you for having me.
3: In the special series, 12 Saal Vishwas Ke, Vikas Ke, Jan Kalyan Ke, you are listening to an interview with Ashish Dhawan, founder and CEO of Convergence Foundation. The interviewer was Anil Padmanabhan, journalist. This program is also available on our YouTube channel, News on AIR Official.

अभी आप सुन रहे थे केंद्र सरकार के 12 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में समाचार सेवा एकांश का विशेष कार्यक्रम FM बैंड 103.7 MHz पर। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले ICC वेमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत एजबेस्टन स्टेडियम बर्मिंगम में भारत और पाकिस्तान

मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर के गाए दिल एक मंदिर फिल्म के इस गाने के साथ ही इंद्रधनुष में साज और आवाज कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: आज के हवा महल कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं अभिलाष के लिखी नाटिका कागज के जेवर।
1: पटवारी जी, ओ पटवारी जी।
2: कौन है?
1: ओ, मैं हूँ मंगरू।
2: आती हूँ, ठहरो ठहरो।
1: पायला की पटवारी ताई।
2: जीते रहो मंगरू।
1: पटवारी जी घर में है क्या?
2: वो तो सवेरे ही मुखिया के संग जगबंदी को गए, अभी आते ही होंगे। तुम कहो आज कैसे राव भूले, बहू कैसी है?
1: अरे सब कुशल मंगल है ताई, आपका आशीर्वाद है।
2: अरे हाँ, तुझे बधाई देना तो मैं भूल ही गई। रोज इनसे कहती हूँ चलो मंगरू के घर हो आए, बहू से मिलाए, लेकिन इन्हें तो फुर्सत ही नहीं मिलती।
1: कोई बात नहीं ताई, अब कल आ जाना।
2: लो वो आ गए।
1: राम राम पटवारी जी, राम राम।
3: आओ आओ मंगरू, आओ भाई, बहुत दिनों में आए अब।
1: जी हाँ, यूं ही समय नहीं मिला पटवारी जी।
3: अच्छा आओ, आओ बैठ, बैठ, यहाँ बैठो ना। भाई मंगरू, तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो भाई, सुना है घर में लक्ष्मी आई है।
1: जी पटवारी जी, अब भगवान ने कृपा की है, लड़की की शकल में बुढ़ाती आंखों को रोशनी दे दी है।
3: भाई मंगरू, लड़का हो या लड़की हो, है तो माँ बाप की खुशी का कारण दोनों ना।
1: इसी कारण तो मैं आपको अपनी खुशी में शामिल होने का न्योता देने आया हूँ। कल मेरी बच्ची का नामकरण है, आप उसे आशीर्वाद देने जरूर आए हैं, और खाना भी मेरे यही।
3: नहीं नहीं भाई मंगरू, नहीं इतनी तकलीफ मत करो तुम। हाँ, समय निकाल कर मैं आ जरूर
1: जाऊंगा। ऐसे कैसे हो सकता है पटवारी जी, अरे पूरा गांव दावत में शामिल हो और आप वहाँ नहीं हैं।
3: तो क्या तुमने पूरे गांव को दावत दी है?
1: अरे पटवारी जी, मेरा बस चलता है ना, तो आस पड़ोस के दो चार गांव वालों को भी दावत में बुलाता। कितनी दुआओं, कितनी मन्नतों के बाद भगवान ने मुझे औलाद दी है।
3: हाँ मंगरू, समझ सकता हूँ भाई, समझ सकता हूँ। तुम्हारे लिए ये खुशी यूं भी बहुत बड़ी है, क्योंकि शादी के 12 साल बाद तुम्हारे यहाँ पहली संतान हुई है। लेकिन
1: लेकिन लेकिन क्या पटवारी जी?
3: भाई अभी कुछ ही महीने पहले भी तो करीब करीब पूरे ही गांव को तुमने दावत दी थी ना।
1: आप तो बहुत जल्दी भूल जाते हैं पटवारी जी, और वो तो मेरे पिताजी की। छी छी छी छी, अरे किस कमबख्त का नाम ले लिया आपने पटवारी जी है? अरे उस चोटे को तो अब कोरट ही जेल की दावत देगी।
3: तो अभी तक मुकदमा चल ही रहा
1: है? बस अब फैसले की तारीख पड़ने वाली है, समझो।
3: मेरा ख्याल है मंगरू कि इस मुकदमेबाजी में तुम अपनी 3-4 एकड़ जमीन तो गिरवी डाल ही चुके होगे।
1: तो क्या हुआ पटवारी जी, बाकी 2 एकड़ भी गिरवी डाल दूंगा। अरे मैं खुद भी बिक जाऊंगा, लेकिन बच्चू को नाकों चने चबवा दूंगा।
3: अरे तुम लोग सुलह क्यों नहीं कर लेते?
1: सुलह? अरे सुलह का टाइम गया पटवारी जी, अब तो बात इज्जत की है, इज्जत की।
3: देखो मंगरू, छोटी सी बात को इज्जत का सवाल बना लेना जायज नहीं।
1: अरे सब जायज है पटवारी जी, प्यार और लड़ाई में कहते सब कुछ जायज है। बस आप तमाशा भर देखते जाओ।
3: वो तो मैं देख ही रहा हूँ मंगरू, तमाशा ही देख रहा हूँ।
1: अरे ओ ओ हो पटवारी जी, अब मैं तो यहाँ बैठा ही रह गया। ओहो हो, अभी तो बहुत से लोगों को न्योता देना है। अच्छा पटवारी जी, ए राम राम।
3: अच्छा,
1: ए राम राम।
3: अच्छा राम राम, राम राम।
1: ओ कल शाम को दावत में जरूर आना।
3: अच्छा अच्छा, जरूर आएंगे।

0: आवाज़ उठी कर बुझा दे पूरे गांव को। अरे पता तो चले मंगरू क्या खुशी हुई है खुशी।
1: तुम भी कमाल के हो भाई मंगरू, जरा जरा देर में चले आते हो। लौड़ स्पीकर में जितना दम है चिल्ला तो रहा है, और क्या उसका पेट फाड़ दूं।
0: अरे अरे अरे तुम बिगड़ता क्यों है भाई, चलने दे दूसरे को अपनी चाल से, चलने दे।
1: अरे हो पुलवा,
2: अरे तुम यहाँ खड़े हो, मैं जहाँ था तुम्हें ढूंढती फिरती हूँ।
3: काहे क्या हुआ भगवान?
2: पंडित जी अभी तक नहीं आए, उन्हें कह तो आए थे ना।
3: हाँ भाई के आया था, आते ही होंगे, अभी आ जाएंगे।
2: मैं समझी कहीं तुम भूल तो नहीं गई, मुझे तो फिक्र सा हो रहा है।
3: ओहो तू अब कोई चिंता फिक्र मत किया कर फूलवा, अरे अब तो हमारे दिन फिर गए हैं।
2: अच्छा, तो हमारे दिन फिर गए हैं। लली बहुत भागवान
3: है, क्यों नहीं?
2: देखो ना क्या लंबरदार, क्या पटवारी और क्या मुखिया, सारा गाँव आशीर्वाद देने आ रहा है। मैं तो उसका नाम भाग दे रखूं।
3: अरे बावली मैंने तो पहले ही उसका नाम लक्ष्मी सोचा है।
2: अच्छी लक्ष्मी भी तो भाग से ही आती है। हाँ? भाग देना बहुत अच्छा। लेकिन पंडित जी तो अभी भी नहीं आए।
3: ओहो तुम लल्ली को तैयार करो, जाओ अभी आ जाएंगे पंडित जी भी।
2: हाँ? जाओ, जाओ,
4: मौसी,
1: मंगरू,
3: मंगरू, तो क्या बात है माधो?
1: अरे चौधरी जी आ गए।
3: चौधरी जी? हाँ ओ, ओ, ओ, देख मैं तो तू जरा उन्हें रोकियो, तू रोकियो जरा।
1: अच्छा मैं आता हूँ, मैं अभी आता हूँ।
3: हाँ,
1: मैं भी आता हूँ।
5: कष्ट करने की जरूरत नहीं मंगरू, मैं खुद ही आ गया हूँ।
3: बड़ी कृपा की आपसे चौधरी जी, बड़ी कृपा की, बड़े सही वक्त में आया। आइए आइए बिना जी।
5: बड़े जोर की दावत कर रहे हो मंगरू।
3: सब आपका आशीर्वाद है मालिक। मैं कल हवेली गया था न्योता देने, पता चला आप
5: मेरी रकम दे रहे हो ना।
3: जी जी वो
5: क्यों खामोश क्यों हो गए मंगरू, जवाब दो।
3: मैं माफी चाहता हूँ चौधरी।

0: जी, कैसे के वो रुपए तो सब
1: तुमने दावत के ढकोसले में खर्च कर दिए हैं, यही ना? तुम्हें लज्जा आनी चाहिए मगरू, मैंने जरूरत के वक्त तुम्हारी मदद की और तुम मुझे ही बेवकूफ बनाते आ रहे हो।
0: विश्वास कीजिए चौधरी जी, विश्वास कीजिए, मैं आपकी रकम जल्दी लौटा दूंगा।
1: कब लौटा दोगे? पिछली बार देने का वादा किया तो तुम्हारे पिताजी का तेरवा आ गया, फिर तुम कोर्ट कचहरी में धंसते गए और अब तुम्हारी बच्ची।
0: ओ चौधरी जी, मुझे थोड़ी मदद और दे दीजिए मालिक, मैं आपकी पाई चुका दूंगा। धर्म से धर्म,
1: बिल्कुल नहीं, आज मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं।
0: चौधरी जी, मालिक मालिक,
1: तुम्हारे घर पर पूरा गांव जमा है, आज अगर तुमने रुपए न दिए तो तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला
0: दूंगा। नहीं नहीं चौधरी जी, नहीं, मुझ पे दया कीजिए, दया कीजिए।
1: उस पर की जाती है जो उसके काबिल हो, तुम्हें तो जितना बेइज्जत किया जाए कम है।
0: मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ मालिक, मैं पाँव पड़ता हूँ आपके। पटवारी जी, पटवारी जी,
2: भैया अपनी सीमा से ऊंचा उड़ने वाला पक्षी इसी तरह धरती पर गिरता है, समझे? चादर जितने ही पांव पसारते तो नंगे तो ना होते। कितने रुपए हैं आपके चौधरी जी?
1: जी 3000।
2: ठीक है, मैं कल आपको इतने रुपए भिजवा दूंगा।
1: जी आप?
2: हाँ मैं, मुझ पर विश्वास नहीं है क्या?
1: ये आप क्या कह रहे हैं पटवारी जी, आपने कह दिया, समझिए मुझे रुपए मिल गए। अच्छा मैं चलूं, राम राम, मैं चलता हूँ, जय राम जी की।
2: अच्छा भैया, जय राम जी।
0: पटवारी जी, आपने पूरे गांव के सामने बेइज्जत होने से मुझे बचा लिया। पटवारी जी, भगवान आपका भला करे, भगवान आपको।
2: तुम्हारा भला कैसे होगा, तुम तो खुद ही अपना बुरा करने पर तुले हुए हो। अपना भला चाहते तो पूरे गांव की दावत का बोझ ढोने से पहले तुम कर्ज का बोझ उतारते हैं?
0: मैं बह गया था पटवारी जी, बिटिया की खुशी में।
2: अरे खुशी आदमी को कभी नहीं बहकाती मंगरू, खुशी नहीं बहकाती कभी भी आदमी को। हाँ, आदमी में इतना हौसला होना चाहिए कि वो उसे बर्दाश्त कर सके। खुशी तो मन का एक भाव है भैया, जिसमें जीवन समरता है, बिगड़ता कभी नहीं।
0: मैंने सचमुच बहुत बड़ी भूल की पटवारी जी, बहुत बड़ी।
2: और एक भूल तुमने और भी की है? जिस पर तुम अभी तक अपनी जिद से अड़े हुए हो।
0: वो क्या पटवारी जी?
2: देखो, रूप सिंह पर किया तुम्हारा मुकदमा, क्या
0: पर गलती उसी की पटवारी जी।
2: लेकिन इसमें नुकसान तो तुम्हारा है ना भाई, नुकसान तुम्हारा है, गलती चाहे जिसकी है। अभी तक तुम 4 एकड़ जमीन उसी चक्कर में खो चुके हो, और अब मैं समझता हूँ कि फैसला होने तक बाकी की जमीन भी उसी में चली जाएगी।
0: तो मैं क्या करूँ, क्या करूँ पटवारी जी?
2: देखो
0: क्या करूँ,
2: रूप सिंह से समझौता करो भैया।
0: लेकिन
2: कुछ नहीं, कोर्ट कचहरी में कभी किसी का भला नहीं होता मंगरू, कभी किसी का भला नहीं होता कोर्ट कचहरी में। जीतने वाला भी रोता है, हारने वाला भी रोता है। देखो तुम इरादा कर लो, रूप सिंह को मैं समझा लूंगा। है
0: ठीक, ठीक है, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूंगा पटवारी जी, और भगवान जानता है जल्दी से जल्दी आपके रुपए भी लौटा दूंगा।
2: कौन से रुपए भाई?
0: वही जो कल आप मेरी तरफ से चौधरी जी को देंगे।
2: उन रुपयों को मुझे लौटाने की जरूरत नहीं है मंगरू।
0: काहे?
2: वो इसलिए कि रुपए उन्हें मैं नहीं दूंगा, तुम खुद ही दोगे।
0: मैं कहां से दूंगा, मेरे पास तो।
2: अच्छा ये लो मंगरू,
0: ये क्या कागज? ये कैसे कागज है, कैसे कागज है?
2: मंगरू, अरे ये कागज नहीं, कागज के जेवर हैं मंगरू, कागज के जेवर, जो तुम्हारे स्वर्गीय पिता की ओर से आज मैं तुम्हारी बेटी को देना चाहता हूँ।
0: मैं समझा नहीं पटवारी जी, समझा नहीं मैं।
2: अरे ये राष्ट्रीय बचत पत्र है। क्या है? राष्ट्रीय बचत पत्र है। ये तुम्हारे पिता हर साल मुझसे खरीद कर मेरे ही पास रख दिया करते थे।
0: लेकिन ये राष्ट्रीय पत्र वो क्यों लेते थे पटवारी जी?
2: क्योंकि वो छोटे आदमी के लिए बचत का महत्व समझते थे, और वो ये भी जानते थे कि छोटों का जीवन स्तर उठाने की दिशा में सरकार कई कदम उठा रही है, जिनमें से एक ये भी है।
0: अच्छा, वो किस तरह?

0: पूरा हो जाने पर इन बचत पत्रों पर खर्च की गई रकम सरकार ब्याज सहित वापस लौटा देती है।
1: अच्छा।
0: हाँ, अब देखो तुम्हारे पिता के इन 7 बचत पत्रों का समय पूरा हो गया है।
1: अच्छा।
0: कल ही तुम्हें डाकघर से 11,000 रुपए मिल सकते हैं।
1: 11,000?
0: हाँ भाई,
1: सच सच कह रहे पटवारी जी।
0: हाँ भाई, तुम कल ही इन बचत पत्रों को लेकर डाकघर चले जाओ। हाँ। और रुपया मिल जाने के बाद।
1: हाँ, अरे सबसे पहले तो मैं चौधरी का कर चुकाऊंगा, उसके मुंह पे दे मारूंगा, अरे जमीन छुड़वाऊंगा। और
0: लेकिन अब फजूल खर्च मत।
1: अरे अरे मेरी तौबा पटवारी जी, अरे अब तो हर बरस मैं बिना भूले राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदूंगा। हाँ, जब मेरी बिटिया सयानी हो जाएगी तो उसकी शादी में ये कागज के जेवर दूंगा।
0: इन्हीं जेवरों से उसका जीवन, उसका भविष्य संवरेगा। तुम्हें तुम्हारे इरादों में भगवान सफलता दे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद पटवारी जी। कागज के जेवर।
2: अजी मैंने कहा, अजी देखिए तो पंडित जी आ गए हैं, जल्दी से चलिए।
1: आ गए पंडित जी। हाँ, चलिए, आइए पटवारी जी, आइए आइए।
0: चलो चलो।
3: कागज के जेवर, हवा महल के अंतर्गत अभी आपने अभिलाष द्वारा लिखित ये नाटिका सुनी। प्रस्तुतकर्ता पुरुषोत्तम दारभेकर।

0: अभी आपने श्री राम और शिल्पा राव की आवाजों में ये जवानी है दीवानी फिल्म का गाना सुना। इसे लिखा था अमिताभ भट्टाचार्य ने, संगीत प्रीतम का था।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पर मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: चित्रलोक कार्यक्रम का शेष भाग आप सुनेंगे ब्रेक के बाद।

0: ब्रेक के बाद कार्यक्रम चित्रलोक में आपका फिर से स्वागत है। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा,

कार्यक्रम के अंत में सुनिए अरिजीत सिंह की आवाज में हमारी अधूरी कहानी फिल्म का ये गाना। गीत रश्मि विराग ने लिखा है, संगीत जीत गांगुली का है।

0: इस गाने के साथ ही चित्रलोक कार्यक्रम अब समाप्त होता है। यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। थोड़ी ही देर में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस के ऐतिहासिक विला कैरिलॉस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच प्रमुख क्षेत्रों में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर खास तौर से चर्चा। दोनों नेताओं ने भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले दशक में 9 अरब डॉलर से बढ़कर 45 अरब डॉलर होने की संभावना। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक वाहन के कुएं में गिरने से 8 श्रद्धालुओं की मौत। ओमान तट के पास एक जहाज के इंजन में खराबी आने के बाद भारतीय चालक दल के सभी 14 सदस्यों को बचाया गया और भारत ने ब्रिटेन के बर्मिंघम में आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप मैच में पाकिस्तान को 171 रन का लक्ष्य दिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जॉन नोएल बैरोट और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के नीस में इस समय शिष्टमंडल स्तर की वार्ता कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी को बढ़ाने पर खास तौर से चर्चा जारी है, जिसमें रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार शामिल हैं। दोनों ही नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इसमें भारत में तेजी से बढ़ते नवाचार और स्टार्टअप परितंत्र को दर्शाया गया है। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, नव प्रवर्तक, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक भी शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी स्तंभ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इसमें दुनिया भर के 350 से ज्यादा निवेशक और पूंजीपति भी शामिल हो रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर पैदा हो रहे हैं।
2: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
1: भारत और फ्रांस के संबंधों की मजबूती का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यापार और रणनीतिक सहयोग कई देशों के बीच होता है, लेकिन कुछ ही संबंध साझा दृष्टिकोण और समान हितों से संचालित होते हैं। उन्होंने कहा कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और भारत के युवाओं की आकांक्षाएं देश के विकास को गति दे रही हैं और भविष्य को भी आकार दे रही हैं।
2: भारत और फ्रांस का रिश्ता, इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है, इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है, शेयर्ड वैल्यूज है, शेयर्ड विजन भी है और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहले शुरू की है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है।
1: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की।
3: 140 करोड़ लोगों की शक्ति, प्रतिभा और ज्ञान का भंडार भारत हर वर्ष 10 लाख से अधिक अभियंता तैयार करता है। अनुसंधान, नवाचार और नई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत आज विश्व को नई दिशा दे रहा है।
4: फ्रंटियर मॉडल्स इज स्पीयरहेडिंग ग्लोबल इनोवेशन।
1: श्री मैक्रों ने भारत में बड़ी संख्या में इंजीनियरों की मौजूदगी की प्रशंसा की और चंद्रयान मिशन सहित भारत की अन्य असाधारण तकनीकी उपलब्धियों की भी प्रशंसा की। उन्होंने सबसे लंबे समय तक भारत का प्रधानमंत्री रहने के लिए श्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि वैश्विक भू राजनीतिक और तकनीकी परिवर्तन के दौर में भारत एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभर रहा है।
5: The world seeks trusted and reliable partners.
6: भारत दुनिया के लिए एक भरोसेमंद साझेदार है। हमारे पास युवा शक्ति, उत्कृष्ट प्रतिभा और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की अद्वितीय क्षमता है।
5: And a scale that few can match.
1: विदेश मंत्रालय इस समय संवाददाताओं को द्विपक्षीय बैठक में फैसले पर जानकारी दे रहा है।
7: जो भारत का परिप्रेक्ष्य है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा आगे जाते हुए, मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट को आगे ले जाते हुए, हम को डेवलपमेंट, को डिजाइन, को प्रोडक्शन और को मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में जाना चाहते हैं। और इसके चलते जितना ज्यादा प्रोडक्शन, जितना ज्यादा डिजाइन, जितनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो सके उतना अच्छा है और वो हमारी प्रेफरेंस रहेगी। तो आज की बातचीत में भी रफाल को छोड़ के और भी विषयों पे बातचीत हुई, लेकिन मैं कहूँगा एक तरह से जो अंडरलाइंग थीम था वो यही था कि जिस भी डिफेंस प्लेटफॉर्म की हम बात करें, इस एक बात को हमें बेसिस लेके आगे बढ़ना होगा कि
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। दो दिन की इस यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात

0: बात करेंगे और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो से ब्रातिस्लावा में वार्ता करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के बाद आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। कल सुबह उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको से मुलाकात करेंगे। स्लोवाक गणराज्य में भारतीय समुदाय भी प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर उत्साहित है। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। स्लोवाकिया से एम पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 सालों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि यह वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ती निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार परितंत्र को दर्शाती है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: श्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि लोगों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बढ़ती भागीदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच का परिणाम है, जिसके अंतर्गत विज्ञान आधारित पहलों को राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, डिजिटल स्वास्थ्य, गहन समुद्र मिशन और गगनयान जैसी योजनाओं ने विज्ञान तथा नवाचार को भारत की विकास यात्रा के केंद्र में ला दिया है। चंद्रयान 3 जैसे अभियान ने अंतरिक्ष विज्ञान को जन जन की रुचि का बना दिया है। श्री सिंह ने कहा कि इन उपलब्धियों से स्वदेशी प्रौद्योगिकियों पर भरोसा बढ़ा है और भारत एक विश्वसनीय प्रौद्योगिकी साझेदार के रूप में उभरा है। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों की जानकारी आपको देंगे।
3: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई पीढ़ी के जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है और लोगों का जीवन आसान किया है। कर ढांचा अब मुख्य रूप से 5% और 18% की दरों पर आधारित है, जिससे करदाताओं का दायरा और बढ़ा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में फिल्म निर्माता और वितरक समीर दीक्षित ने कहा कि जीएसटी नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे बड़े नीतिगत फैसलों में से एक है।
4: जीएसटी को हमारे देश में लागू हुए अब 10 साल के आसपास हो गए हैं और हमने एक बहुत बड़ा इस दिशा में प्रगति की है। पहले 17 से ज्यादा टैक्स थे, एंट्री टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट और उन सबको मिला के फिर अभी एक मेन जीएसटी बनाया है सरकार ने।
3: नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन और नीतियों में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लक्ष्य है कि 6G से जुड़े वैश्विक पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% हो। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में महेंद्र तिवारी ने कहा कि डिजिटल इंडिया दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।
5: डिजिटल इंडिया इज नो मोर अ कॉन्सेप्ट।
6: डिजिटल इंडिया अब सिर्फ एक सोच नहीं रह गया है, बल्कि ये एक यात्रा है। हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को ये साबित कर रहे हैं कि भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डिजिटल हाईवे किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, खासकर हमारे जैसे देशों के लिए।
3: पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में आज दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। यह हादसा मालचीरस तालुका में महासवाड़ा पंढरपुर मार्ग पर तालुवांडी के पास हुआ। श्रद्धालु सिद्धनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर लौट रहे थे, इस दौरान चालक के नियंत्रण खोने से वाहन कुएं में गिर गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट वन का इंजन खराब होने से वो डूब गई। इस पर 14 भारतीय सवार थे, जिनमें से 11 भारतीयों को बचा लिया गया है, जबकि 3 अन्य को बचाने के प्रयास जारी हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इन्हें NTA की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से होगी। ब्रिटेन के बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 171 रन का लक्ष्य दिया है। स्मृति मंधाना ने 68 रन की पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 36 और ऋचा घोष ने बनाए 34 रन। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में रोगों से बचाव और स्वस्थ जीवन के लिए योग के लाभ विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस के ऐतिहासिक विला कैरिलोस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच प्रमुख क्षेत्रों में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर खास तौर से चर्चा। दोनों नेताओं ने भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक वाहन के कुएं में गिरने से 8 श्रद्धालुओं की मौत। ओमान तट के पास एक जहाज के इंजन में खराबी आने के बाद भारतीय चालक दल के सभी 14 सदस्यों को बचाया गया। और भारत ने ब्रिटेन के बर्मिंघम में ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप मैच में पाकिस्तान को दिया 171 रन का लक्ष्य। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं बॉबी फिल्म के इस गाने के साथ। इसे गाया है शैलेंद्र सिंह ने, गीत आनंद बख्शी का है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में आंधी फिल्म का गाना। गीत गुलजार ने लिखा है, संगीत आरडी बर्मन का है।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: आइए अब सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में जॉनी मेरा नाम फिल्म का गाना, गीत इंदिवर ने लिखा, संगीत कल्याण जी आनंद जी का है।
3: नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं,

आप क्या हैं? हैं? आखिर तो आप फूल हैं, औलाद नहीं है, अजी बुलबुल हैं किसी बाग के, सयाद नहीं है।

न छोड़ेंगे, थामेंगे अगर हाथ तो फिर हाथ न छोड़ेंगे।

आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और मनहर उदास की आवाज में अभिमान फिल्म का गाना। गीत मजरू सुल्तानपुरी ने लिखा है, संगीत से सवारा है एस डी बर्मन ने।

इस गाने के साथ ही प्रीति शर्मा को कार्यक्रम आपके लिए समाप्त करने की अनुमति दीजिए और आप सुनते रहिए विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती हैं। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

बरसात की रात फिल्म की ये कव्वाली सुनकर याद आ जाता है वो जमाना, जब फिल्में तो ब्लैक एंड व्हाइट होती थीं, मगर उनकी कहानियां जीवन के जज्बाती रंगों से भरपूर। और याद आता है वो कलाकार जो अपने सुदर्शन व्यक्तित्व और सीधे सरल परंतु प्रभावी अभिनय से दर्शकों के दिलों पर छा जाता था।

सन 1920 के जून महीने की 14 तारीख को मेरठ में जन्म हुआ भारत भूषण का। पिता राय बहादुर मोतीलाल सरकारी वकील थे। भारत भूषण बस 2 ही वर्ष के थे जब उनकी माता का देहावसान हुआ। मां के गुजरने के बाद बड़े भाई आर चंद्रा के साथ भारत भूषण अपने दादाजी के यहाँ अलीगढ़ चले आए।

अलीगढ़ में स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के पश्चात भारत भूषण पिता की मर्जी के खिलाफ एक्टिंग में करियर बनाने के लिए पहले कोलकाता और बाद में मुंबई आकर बस गए। किदार शर्मा निर्देशित 1941 की फिल्म चित्रलेखा में भारत भूषण को अभिनय का पहला अवसर मिला। भारत भूषण को अभिनय का पहला अवसर तो मिला, मगर उसके बाद संघर्ष का एक लंबा दौर शुरू।

वर्षमय जीवन का एक दशक बीता और 1952 में भारत भूषण को फिल्म मिली बैजू बावरा। इस फिल्म ने उन्हें आनन फानन सुप्रसिद्ध फिल्म सितारों की श्रेणी में लाकर रख दिया। इस फिल्म के संगीतकार नौशाद, नायिका मीना कुमारी और पार्श्व गायक मोहम्मद रफी को जितनी तारीफें मिली, उतनी ही तारीफ और शोहरत भारत भूषण को भी नसीब हुई। मानो प्रतिभा की गंगा और किस्मत की जमुना का मिलन होना था, हो गया।

बैजू बावरा की अपार सफलता के बाद सिलसिला चल पड़ा। एक के बाद एक फिल्में आती गईं। भारत भूषण अपने अभिनय से किरदार सजाते गए और कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते गए। 1952 से 1954 तक रिलीज हुई ये

फिल्में हैं आनंद मठ, माँ, मिर्जा गालिब, शबाब और श्री चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु इस फिल्म के लिए भारत भूषण को सर्वोत्कृष्ट अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार प्रदान किया गया। उनके समकालीन अभिनेता और निर्माता चंद्रशेखर कहा करते थे, हिंदी फिल्मों में यदि पौराणिक या ऐतिहासिक पात्र कोई सबसे अच्छा निभाते हैं तो वो है अभिनेता भारत।

विभूषण केवल अभिनेता नहीं थे, उन्हें किताबों का बहुत शौक था। विभिन्न विषयों की किताबें वो पढ़ते रहते थे और शायद यही वजह थी कि वो बहुत अच्छे लेखक भी थे। बरसात की रात, नई उम्र की नई फसल, बसंत बहार और दूज का चांद आदि फिल्मों की कहानियां उन्हीं की लिखी हुई थीं।

0: लिखते रहे।
1: बसंत बहार, कवि कालिदास, परदेसी, रानी रूपमती, चंपा कली, गेटवे ऑफ इंडिया, फागुन, सम्राट चंद्रगुप्त, सोहनी महिवाल, सावन, अंगुलीमाल, बरसात की रात, मुड़मुड़ के न देख, घूंघट, संगीत सम्राट तानसेन, 11,000 लड़कियां, जहां आरा, तकदीर, 1950 और 1960 के दशक की इन फिल्मों में नायक की भूमिका निभाने वाले भारत भूषण उन गिने चुने अभिनेताओं में से थे जिन्हें संगीत की बहुत अच्छी समझ थी, और इसीलिए अधिकतर संगीत प्रधान फिल्मों के नायक के रूप में उनका चुनाव किया जाता। दूज का चांद, इस फिल्म के वो निर्माता भी थे। उस जमाने के मशहूर गायक कलाकार मोहम्मद रफी, मन्ना डे, मुकेश और तलत महमूद के गाए ज्यादातर गीत भारत भूषण पर फिल्माए गए।

बढ़ती उम्र में भी चरित्र अभिनेता के रूप में भारत भूषण पूरे उत्साह और उमंग के साथ सक्रिय थे। 1970, 1980 और 90 के दशक की ये फिल्में जयतिमा, मीरा, उमराव जान, हीरो, रहगुजर, काला धंधा, गोरे लोग और अव्वल नंबर।

0: आज के फनकार अभिनेता भारत भूषण पर केंद्रित ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। प्रस्तुति सहायक आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए इजाजत जयंत पात्रीकर को।
1: आज के फनकार।

के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। जब थामा था तुम्हारा हाथ तो हमने तुम्हारी खुशियों को टांक लिया था अपने दामन में सितारों की तरह, और तुम्हारी उलझनों को अपना लिया था हमने, माथे की सिलवटों और होंठों की मुस्कानों को अपना बनाया था। उसके बाद से ये साझेदारी है सांसों की, ये सफर है एक साथ चलने का, फिर क्यों उदास हो तुम।

सोचा नहीं था कि आएंगे ऐसे भी मरहले कि हम नहीं रहेंगे, हम खुद के बस में नहीं रहेंगे, कि अचानक रोशन हो जाएंगे रास्ते, अचानक चमकीले हो जाएंगे सितारे, अचानक दिल में उठा करेंगी हिलोरें। ये कौन सा मकाम है, ये हमें क्या हो गया है।

एक ऐसी कैफियत है दर्द और सुकून का, ये कैसा मिला जुला एहसास। अब बदलते हुए मौसम और भी सुहाने बन गए हैं, अब जिंदगी और भी सुकून भरी बन गई है।

बदलते मौसमों के साथ अचानक बदल गया दिल की दुनिया का मौसम। जहां पहले बहारें थीं, वहां अचानक वीराने हैं। मुस्कानों को झांक लिया है उदासी के कोहरे ने। अपनी खिड़की पर खड़े हम अपनी सोच में गुम हैं और गूंज रहा है सुरैया का ये नगमा।

संदिल है वक्त, एक शातिर बाजीगर। वक्त मजमा लगाता है, खेल दिखाता है और फिर समेट कर अपना सरो सामा चल पड़ता है अगली मंजिल की तरफ। हम भोले भाले हैं जो सोचते हैं कि ये मजमा जारी रहेगा हमेशा, हमेशा गूंजते रहेंगे तराने।

0: मिर्जा गालिब, गुलाम मोहम्मद, फिल्म अफसर, पंडित नरेंद्र शर्मा, सचिन देव बर्मन।
1: चले दिल की दुनिया जो बर्बाद करके बहुत रोएंगे उनको हम याद करके।
0: फिल्म दर्द, शकील बदायूनी, नौशाद। आज का छाया गीत इतना ही, इजाजत दीजिए यूनुस खान को।